सुप्रभातम। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2025। सुबह के 5:52 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की हमारी ये प्रसारण सभा।

0: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम। आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर कल्याण वर्मन की वार्ता संवर्धन से केला के पौधे का उत्पादन।
1: केले की खेती के लिए अधिक

0: वर्षा तथा हवा में अधिक नमी जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है। अधिक पाला फसल को हानि पहुंचाता है। इसी प्रकार गर्म हवा तथा जल जमाव इसकी खेती के लिए हानिकारक होती है। इसी परिस्थितियों का प्रबंधन करके केले की अच्छी खेती की जा सकती है। गहरी दोमट जीवांशयुक्त जिसमें पानी ठहरता हो उत्तम है। हल्की दोमट एवं बालुई दोमट मिट्टी भी केले की खेती के लिए काम लाई जा सकती है। खेत समतल तथा जल निकास का अच्छा प्रबंध हो। सामान्यतः हल्की अम्लीय मृदा 6 से 6.5 pH उत्तम होती है, परंतु हल्की क्षारीय मृदा में भी पैदावार अच्छी होती है। उत्तक संवर्धन द्वारा उत्पन्न केले की खेती दिसंबर, जनवरी और अप्रैल, मई को छोड़कर सालों भर किया जा सकता है। केले की खेती के लिए सिंचाई की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। केले की रोपण की प्रमुख मौसम जून जुलाई है, लेकिन जहां सिंचाई की सुविधा हो वहां फरवरी में भी केले की रोपण की जा सकती है। केले की अच्छी वृद्धि और उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, इसलिए रोपण से पहले मिट्टी के पोषक तत्व का जांच बहुत ज़रूरी है। खेतों को कम से कम एक बार 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई अवश्य करें। खरपतवार निकालें एवं समतल करें। रोपण के लिए मई के महीने में 1.8 × 1.5 meters की दूरी पर 60 सेंटीमीटर की लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई के गड्ढे खोदने के 20 से 30 दिनों के बाद गोबर की खाद प्रति गड्ढा 5 से 6 kg, नीम की खली 250 ग्राम, SSP 300 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 500 ग्राम और थाइमेट 10 ग्राम मिट्टी में मिलाकर सभी गड्ढों में डालना चाहिए। गड्ढा भरने के 15 से 20 दिन बाद जून जुलाई में रोपण करते हैं। रोपण के लिए प्लास्टिक के थैली से केले के पौधा को सावधानी पूर्वक निकालते हैं, जिससे जड़ों की कोई क्षति ना पहुँचे, और उसे गड्ढों के बीचों बीच रखते हुए लगाते हैं। रोपण के तुरंत बाद सिंचाई करना चाहिए। एक निश्चित समय के अंतराल पर खरपतवार को हटाते रहना चाहिए और खेत को साफ रखना चाहिए। अक्टूबर के महीने में सभी पौधे में 125 ग्राम नाइट्रोजन डालना चाहिए। इस समय पौधे को चारों तरफ से मिट्टी लेकर पौधे के सतह पर चढ़ाना चाहिए। पुनः फरवरी मार्च के महीने में 125 ग्राम नाइट्रोजन सभी पौधे को डालना चाहिए। मिट्टी में उचित नमी का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सामान्यतः ठंड के मौसम में 15 दिन के अंतराल और गर्मी के मौसम में 5 से 7 दिन के अंतराल में पौधे की सिंचाई करना चाहिए। अगर पौधे का उचित ध्यान रखा जाए तो ये 9 महीनों में फल देना शुरू कर देता है और रोपण के 11 से 12 महीने के बाद फल परिपक्व हो जाता है। फूल निकलते समय बांस या बल्ली की कांची लगाकर पौधे को दोनों तरफ सहारा देना चाहिए, जिससे कि पौधा तेज हवा में ना गिरे। जब फलों त्रिकोणी ना रहकर गोलाई ले ले, रंग हल्का हो, तो इनके पूर्ण विकसित समझना चाहिए एवं गोंद को तेज धारदार चाकू से काटना चाहिए। उत्तक संवर्धित केले की खेती से केले की गुणवत्ता एवं उत्पादन अच्छा होता है। प्रति पौधा 40 से 7 kg की गोंद प्राप्त होती है।
1: उत्तक संवर्धन से केले की खेती। खेत खलिहान में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कल्याण वर्मन की ये वार्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे।

0: कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद डिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज का चिंतन मनन।
2: धनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या सभी धनों में बड़ा धन है। विद्या की महत्ता जितनी ही बताई जाए कम होगी। आज के समय में शिक्षा का महत्व तो और भी अधिक हो गया है। सारी दुनिया सिमट कर एक गांव की तरह हो गई है और इसमें ज्ञान का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य को अंधों के बराबर माना जाता है। विद्या सबसे ऊपर है। विद्या मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव और व्यक्तित्व का विकास करती है। प्रतिभा को समुन्नत, सुसंस्कृत बनाती है। कुरी शिक्षा तो भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण के द्वारा मनुष्य को और खतरनाक बना देती है। आज की शिक्षा में हो क्या रहा है। व्यक्तित्व निखारने वाले, व्यवहारिक सभ्यता के सांचे में ढालने वाले और प्रतिभा को प्रखर बनाने वाले लक्ष्यों का समावेश नहीं हो पा रहा है। लोग बहुज्ञ हो जाते हैं लेकिन अहम मान्यता से संबंधित दुर्गुण उनके भीतर चले आते हैं। तो ऐसे स्वभाव वाले लोग हर किसी का हित करेंगे, ऐसा कभी सोचा जा सकता है? आज की जो शिक्षा है उसमें विद्या के समुचित समावेश की आवश्यकता है। अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि हमारे देश में बहुत सारे कॉलेज खुले हैं, तकनीकी गैर तकनीकी दोनों ही क्षेत्रों में भारत की शिक्षा का डंका बज रहा है। हम प्रबंधक बना रहे हैं, इंजीनियरिंग के ज्ञानी तैयार कर रहे हैं, आईटी स्नातक बना रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें हम जीवन मूल्य दे पा रहे हैं जिनसे वे स्वकेंद्रित दृष्टि से अलग हटकर राष्ट्रोन्मुखी तनाव युक्त जीवन से हटकर आध्यात्मिक बोधियों से भरा मस्ती भरा जीवन जी सके। शिक्षा के इतने संसाधनों के बावजूद बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। आज के विश्वविद्यालय राजनीति के केंद्र हो गए हैं। मनुष्य की शिक्षा सभ्यता और सुसंस्कारिता सिखाए तभी वो सच्ची शिक्षा होगी। सभ्यता शरीर को और सुसंस्कारिता मन को प्रभावित करती है। ये पक्ष आज उपेक्षित हो रहा है। पढ़ना करना और सोचना एक छोटी परिधि में सीमाबद्ध है। आत्मा कोई चीज है, इस दिशा में सोच कौन रहा है? जबकि सर्वाधिक जरूरत इसी की है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान यानी हम अपने आत्मस्वरूप में जैसे हैं उसमें और अच्छे और श्रेष्ठ हो सके, इसकी जरूरत पर बल नहीं दे पा रहे हैं। आज की शिक्षा में हमें विद्या के तत्वों को शामिल करने की जरूरत है। कहने का आशय यह है, भारत का एक औसत नागरिक, एक आम नागरिक बचपन से ही ऐसा कुछ सीखे जिससे उसमें नैतिक मूल्य, सुसंस्कार, सादगी, सभ्यता, राष्ट्रभक्ति आदि के गुण विकसित होकर उभर सकें। धन और ऐश्वर्य जीवन के लिए जरूरी हैं। आज के युग में उनका भी महत्व कम करके आका नहीं जा सकता। बिना धन के हम एक कदम चलने की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन क्या शिक्षा का अंतिम उद्देश्य यही होगा कि हम सिर्फ धन कमाएं? आज इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है। और जितने भी मनीषी विचारक चिंतक हैं उन सब लोगों को सोचकर कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे शिक्षा में विद्या के गुणों का समावेश किया जा सके। आने वाले समय में विद्या के और भी महत्व को देखते हुए हमें इस दिशा में चिंतन करने की जरूरत है।
1: ये था आज का चिंतन मनन। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। वंदना में निवेदित हैं कुछ भक्ति रचनाएं। आरंभ में ये देश वंदना।

नमन तुझे ऐ देश हमारा, तुझ पर अर्पण तन मन धन, और करूँ अर्पण तुझ पर अपना ये तुच्छ जीवन धन।

जी हाँ दोस्तों, ये प्रकृति, भौतिक प्रकृति के दोनों रूप, स्थूल तथा सूक्ष्म, अपराशक्ति के ही प्रतिफल हैं। हम अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्तियों का विदोहन करते हैं। स्वयं परमेश्वर ही पराशक्ति हैं और यह वही शक्ति हैं जिसके कारण यह संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति हमें प्राप्त नहीं होती जब तक पराशक्ति अर्थात उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा वह गतिशील नहीं बनाई जा सकती, यानी नहीं बनाई जाती। शक्ति का नियंत्रण सदैव उस परमपिता परमेश्वर के हाथ में रहे। जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो सकते।

जी हाँ दोस्तों, जब तक हम माया के बंधन से मुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक हमें मुक्ति पद नहीं प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में अहंकार सोचता है कि मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब हम सारे भौतिक विचारों से मुक्त हो जाते हैं तब हमें वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है और वही वास्तविक आनंद ईश्वर की प्राप्ति के समान है।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। वंदना में आज आपने जिन कलाकारों को सुना वे थे ओम व्यास, हरिओम शरण, जगजीत सिंह और साथी। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। स्वास्थ्य चर्चा, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक भेंट वार्ता। विषय है अपेंडिक्स फटना, कारण बचाव और लक्षण। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर विनय कृष्ण, फिर से सुन लीजिए, डॉक्टर विनय शरण, और आपसे बात कर रहे हैं सचिन कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बातें कर रहे हैं अपेंडिक्स फटने के कारण, लक्षण और इसके बचाव के बारे में। और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर विनय शरण। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपेंडिक्स जो हमारे शरीर का एक हिस्सा है, इसमें ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिसके कारण ये फट जाता है और इतनी भयावह स्थिति उत्पन्न करता है?
2: सबसे पहले तो मैं इस पर समझाना चाहता हूँ कि अपेंडिक्स होता क्या है। अपेंडिक्स मानव शरीर में एक अंग दाहिने तरफ में होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, पतला सा, 1.5-2 इंच का होता है। यह पाचन क्रिया में कोई भाग नहीं लेता है। वैसे एनिमल्स में जो शाकाहारी होते हैं, जिसे खारा हो, उसमें यह काम करता है, परंतु मानव शरीर में यह बिल्कुल ही बेकार अंग है। इसमें जब इन्फेक्शन या

0: संक्रमण होता है तो सबसे पहले पेट में दर्द होता है। उस व्यक्ति को पेट में दर्द के अलावा उल्टी की शिकायत होने लगती है, और यह दर्द जो है पेट में शुरू में या बीच में रहता है, बाद में यह दाहिने तरफ में होने लगता है। उसके बाद में उसका बुखार भी हो सकता है। बुखार के अलावा यह दर्द बढ़ते जाता है। अगर डॉक्टर से नहीं इलाज कराया गया तो यही बढ़ के फिर बाद में एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो जाता है, और इसमें कॉम्प्लिकेशन के स्टेज में यह फटता है। अगर इलाज अगर शुरू में किया जाए 24 से 48 घंटा में, तो इलाज से यह या तो ठीक हो जाता है या नहीं तो फिर सर्जरी कराना पड़ता है।
1: जी, तो आपने बताया कि संक्रमण के कारण अपेंडिसाइटिस हो जाता है, अपेंडिक्स में सूजन हो सकता है। तो संक्रमण किस प्रकार होता है, किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनसे कि संक्रमण ना हो?
0: अपेंडिक्स में संक्रमण होने का मुख्य कारण होता है कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और कोई भी पाचन क्रिया के अंतर्गत कोई भी पचे हुए अवशिष्ट जो होते हैं उसके मुंह पर अगर बंद हो जाता है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, बंद हो जाता है उसका मुंह, और उसके अंदर में संक्रमण हो जाता है। उस संक्रमण होने से धीरे धीरे वो फूल जाता है और काफ़ी इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सूजन हो जाता है, और उसके चलते यह बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है। अगर उस समय उचित इलाज नहीं किया गया तो यह फट सकता है।
1: जी, ये तो हुई कारणों और लक्षणों की बात। अब डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या दवाइयों के द्वारा शुरुआती दौर में इसका इलाज नहीं किया जा सकता है?
0: शुरुआती दौर में इसका इलाज सबसे पहले तो इसका हम लोग जांच करवाते हैं जो वास्तव में अपेंडिक्स है कि नहीं है, और इसके लिए अल्ट्रासोनोग्राम, ब्लड का जांच है, TCDC इत्यादि, ये सब जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस है, जो जांच है, इसके द्वारा यह कायम किया जाता है कि वास्तव में यह अपेंडिसाइटिस के कारण दर्द है। और उसके बाद में इसको खाना पीना बंद करके एंटीबायोटिक्स दे के शुरू करते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर में इसका इलाज शुरू हो जाता है तो यह हो सकता है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, लेकिन अगर इलाज में कोताही हो गया या ठीक से नहीं इलाज हो तो यह कॉम्प्लिकेशन स्टेज में चला जाता
1: ऑपरेशन के द्वारा ही इसका इलाज संभव है?
0: है। हाँ, इसका इलाज ऑपरेशन ही है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपेंडिक्स फटने के कारण, लक्षण और इसके बचाव पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विनय शरण की वार्ता। विषय था, डॉक्टर विनय शरण से ली गई ये भेंट वार्ता आप सुन रहे थे। विषय था अपेंडिक्स फटना, कारण और बचाव। आपसे बात कर रहे थे सचिन कुमार। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी। गायक कलाकार हैं ए हरिहरण, सुरेश वाडकर और साथी।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गई। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं,

जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान की अगली कड़ी। गायन स्वर था ए हरिहरन, सुरेश वाडकर और साथियों का। संगीत रचनाकार थे सतीश भाटिया। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया।

कार्यक्रम विवरण। इसमें सुनिए हमारे केंद्र से आज यानी 10 मई दिन रविवार को प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। दोपहर बाद 3:25 से शाम के 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण। रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

प्रातः 7 बजे रोज की तरह पेश होगा मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसी कार्यक्रम के चंक रसरंग में

ये कलाकार होंगे अभय कुमार सुमन। दिन के 12:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरसंगम में आज आप सुनेंगे गिरिजा देवी का ख्याल गायन

0: कर 20 मिनट पर लोकरंग के आज के कलाकार होंगे उदय कुमार। संध्या 7:10 पर लोकगीत की आज की कलाकार होंगी वीणा देवी। और साथियों फिल्म गाने हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ इस तरह, प्रातः 7:30 पर, संध्या 5:30 पर और रात्रि 9:30 पर पेश होंगे फिल्म संगीत। प्रातः 9:06 पर पेशा खदमत होगा नगमे नए पुराने, ये कार्यक्रम 11:00 लुत्फ उठाइए नई फिल्मों से। और 11:30 पर विशेष फिल्मी गानों का गुलदस्ता सजेगा। दिन के 2:30 आपके मेल और फोन कॉल्स पर, आपके मेल और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम होगा। और रात्रि 8:00 अपनी खुशबू लेकर आएगी रजनीगंधा। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। 6:55 होने ही वाले हैं, अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: प्रतिवार्ता श्रूयंताम, प्रवाचक दिव्यानंद झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रार्थं प्रतिष्ठते। सः बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम्, एतस्य संस्थापकस्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरस्य 70वीं जन्मदिवसं च उपलक्ष्य प्रकल्पिते एकस्मिन् समारोहे सहभागं करिष्यति। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसरे नव निर्मितस्य ध्यान मंदिरस्य ध्यान कक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां संबोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमंत्री हैदराबादे प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां 67-100 संख्याके राष्ट्रीय राजमार्गे चतुर्भाग परक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलां अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमंत्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरं एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरम् अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृत महोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमंत्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृहमंत्री, रक्षामंत्री, भाजपादलाध्यक्षः, अनेके मुख्यमंत्रिणः, मंत्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडु राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्रित्वेन अद्य प्रातः 10 शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नव मंत्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रांतरे ह्यः नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20+100 विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुंता स्थले अद्य रजत जयंती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय ऋतु विभागेन आगामीषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्नाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचंड वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 1:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रो जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्र रक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30+200 धावनांकानां विजय लक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
0: श्रोताओं, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है इस समय आकाशवाणी भागलपुर, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातः के 7 बजे हैं और 31 सेकेंड हुए हैं। पेश है मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार विक्रमशिला, जोहार भागलपुर। दोस्तों, इस खूबसूरत से प्रोग्राम को लेकर, इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त संगीता। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के दिन की महत्ता बहुत अधिक है, क्योंकि आज के दिन है सिपाही विद्रोह। आज ही के दिन हुआ था दोस्तों 1857 की क्रांति का शुभारंभ, आज ही के दिन हुआ था। और आज के दिन को हम मातृशक्ति को नमन करने के रूप में, मातृ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें अपने जगत माँ और मातृभूमि दोनों को नमन करने का आज का दिन है। जी हाँ दोस्तों, जब लंका को विजय कर लिया था श्री रामचंद्र जी ने, तो लक्ष्मण जी ने ये सलाह उनको दी थी कि क्यों ना हम इस स्वर्णमयी लंका में ही रुक जाएं और यहीं से अपनी सत्ता स्थापित करें। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को जो ज्ञान दिया, जो जवाब दिया, वो सदा सदा के लिए, सब के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नौमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। जी हाँ दोस्तों, माँ और मातृभूमि का स्थान हमारे जीवन में सबसे बड़ा है और इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारे वेदों में, उपनिषदों में हमेशा माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है। तैतरीय उपनिषद में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात हमारे जीवन में माँ, पिता, आचार्य यानी गुरु और अतिथि का स्थान देवतुल्य है और उसके समकक्ष कोई नहीं आ सकते। जी हाँ साथियों, हमारी संस्कृति में माँ को नमन करने का अनेक उपाय बताया गया है और मातृशक्ति से ही ये संसार संचालित होता है ऐसा कहा गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यानी पूरी शक्ति देवी के रूप में यानी माँ के रूप में समाहित है। ये पूरी सृष्टि की संचालिका माँ ही है। जी हाँ दोस्तों, माँ को शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, या और साथ ही साथ शक्ति के साथ साथ शांति के रूप में भी हम माँ को नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यानी माँ इस एक शब्द के अंदर ही संपूर्ण संसार का सार है। हम अपने संपूर्ण जीवन की शुरुआत अगर करते हैं तो उसी वात्सल्य गोद से करते हैं। हमारी शुरुआत, हमारी जिंदगी की पहचान, सब कुछ उसी सुरक्षित शरण से होती है, माँ की गोद से होती है, माँ के आंचल से होती है। और हमें सारे दुखों से त्राण देने वाले भी वही माँ है। माँ का एक छोटा सा स्पर्श हम जीवन भर याद रखते हैं। हम अपने विपदा की घड़ी में, हर एक संकट की घड़ी में अगर हमारे मुंह से कुछ निकलता है तो वो निकलता है माँ शब्द। ये माँ शब्द अपने आप में संपूर्ण संसार को समाहित करने वाला है। चाहे हम किसी भी धर्म या संप्रदाय से आते हों, किसी भी जीव जंतु के बारे में ही अगर हम बात करें, तो माँ का जो प्यार होता है वो हमेशा निस्वार्थ होता है। और माँ ही अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया होती है, पूरा संसार होता है। माँ अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चों की रक्षा करती है। और अगर हम इंसान के जीवन की बात करें तो माँ ही प्रथम पाठशाला है। वही जीवन में हमें मार्गदर्शन देती है और सच्चा और अच्छा इंसान बनाने में मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। उसके प्यार भरी थपकी से हमें न केवल आसरा मिलता है, बल्कि एक सहारा मिलता है, एक सुकून मिलता है और एक भरोसा मिलता है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो माँ अनुशासन का पाठ भी हमें सिखाती है और जीवन में एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें हर तरह से
तैयार करती है। तो दोस्तों, माँ का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं। माँ का ऋण हमारे ऊपर इतना है कि सिर्फ एक दिन में मातृ दिवस मना करके हम माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। माँ के प्रति सम्मान और उसको बदले में कुछ देने की भावना अगर हमारे अंदर है, तो बस हमें उसे सम्मान देना चाहिए, और वही सम्मान उसकी सबसे बड़ी थाती होती है। अक्सर ऐसा देखा जा रहा है आज के समय में कि जब तक हम बड़े नहीं होते हैं, तब तक माँ हमारी दुनिया होती है, और जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे माँ के भरोसे हम कम रहने लगते हैं, तो माँ की महत्ता कम होती चली जाती है, और एक समय आता है जब वो माँ हमारे ऊपर एक बच्चे के समान आश्रित होने लगती हैं, तब हम उनकी उपेक्षा करते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं एक वृद्धाश्रम की ओर प्रस्थान करने का विचार रखते हैं, जो कतई गलत है और हमारी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। हमें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ की आँख से अगर आंसू निकलता है तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है, और वो बिना कहे अगर उसके रोम से कहीं भी आपके लिए कोई दर्द उभरता है और कोई संकट आप माँ को देते हैं, तो फिर क्या होगा उस अनहोनी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए माँ को हमेशा सम्मान देना चाहिए, और किसी एक दिन को मना करके माँ के कर्ज से मुक्त होने का प्रयास छोड़ देना चाहिए, क्योंकि माँ है तो हम हैं। माँ के द्वारा दिया हुआ अस्तित्व ही हमारी पहचान है, और अंत में माँ और मातृभूमि के कर्ज से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए अपने जीवन में अपनी अस्मिता से बढ़कर अगर हमें सम्मान देना है, तो अपनी माँ को और मातृभूमि को देना है। जी हाँ दोस्तों, और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आनंद लेते हैं कुछ भजन और गीतों का। तो आज के कलाकार हैं अभय कुमार सुमन, और गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के चंक रसरंग में हम आनंद लेते हैं तुलसीदास के इस भजन का, जिसे गाया है अभय कुमार सुमन ने।

श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आप कहीं मत जाइएगा, हम और आप रहेंगे अभी देर तलक और दूर तलक साथ साथ।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
5: क्रेश,
6: ट्रेश
4: और बाल्टी बॉय।
7: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय

0: शिखर। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: यह दोस्तों सुगम संगीत के चंक रसरंग में अब हम आपको सुनवाते हैं एक गीत रचना, गोपाल सिंह नेपाली की गीत रचना। सुनिए और आनंद लीजिए।

0: दोस्तों, सुगम संगीत के चंक में आपने आज सुना अभय कुमार सुमन के गाए गीत और भजन। और कार्यक्रम में अब हम चलते हैं उस पड़ाव की ओर जहां आपको सुनवाते हैं हिंदी वार्ता। तो हिंदी वार्ता में आज दोस्तों हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सामाजिक जीवन में पुस्तकालय की उपयोगिता। इस विषय पर वार्ता और वार्ताकार हैं जयकरण कुमार। तो आइए सुनते हैं इनसे ये उपयोगी वार्ता।
1: पुस्तकालय के सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम जिस विकसित शांतिमय सांस्कृतिक मूल्य पर आधारित सामाजिक परिवेश की कल्पना चाहते हैं, वहां पुस्तकालय महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अदा करता है। पुस्तकालय जहां संचालित होता है वहां का वातावरण सांस्कृतिमय वह स्थल समाज की हृदय स्थली कहलाती है। क्रांतिकारी महान राष्ट्र भक्त बाल गंगाधर तिलक महोदय ने कहा है कि मुझे नरक भी मंजूर होगा अगर वहाँ एक पुस्तकालय होगा। जब समाज व राष्ट्र में एक पुस्तकालय खुलता है तो दुनिया के सैकड़ों पागलखानों के दरवाजे बंद होते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हमारा देश वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में नई क्रांतियों को छू रही है, तब वहां पुस्तकालय एक राष्ट्रीय सूचना का केंद्र बिंदु बन सकता है। पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो राष्ट्र के शैक्षणिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करता है। इसका पुनीत उद्देश्य है बिना किसी भेदभाव के राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। पुस्तकालय समाज से निरक्षरता का जड़ मूल से विनाश करता है। यह जन समुदाय की शिक्षा के लिए जागृत सकती है। यह सर्वसम्मत रूप में आज स्वीकार कर लिया गया है कि पुस्तकालय जन चेतना और सामुदायिक शिक्षा के प्रचार के लिए प्रमुख और क्रियाशील माध्यम है। वर्तमान समय में पुस्तकालय केवल पुस्तकों का आदान प्रदान का कार्य संपन्न नहीं करता, बल्कि जनता में अधिकाधिक ज्ञान अर्जन हेतु उत्कृष्ट अभिलाषा और ललक भी पैदा करता है। पुस्तकालय का दरवाजा ज्ञान पिपासु हर जनता के लिए हरदम खुला रहना चाहिए। एक तरह से पुस्तकालय ही जनता का सच्चा विश्वविद्यालय है जो बिल्कुल बंधन रहित है। यहाँ धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय, शिक्षा स्तर, लिंग या उम्र का कोई बंधन नहीं रहता। सभी स्वतंत्र रूप से और पूर्ण स्वस्थ मन से पुस्तकालय में आकर अपनी इच्छा अनुसार अपेक्षित पुस्तक, पत्र, पत्रिका या किसी अन्य पाठ्य सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। पुस्तकालय रूपी ज्ञान मंदिर के पुनीत प्रांगण में प्रवेश कर प्रत्येक व्यक्ति अनुशासन, शांति, समानता, सहृदयता, सहनशीलता, राष्ट्रभक्ति और भातृत्व भावना का पाठ पढ़ता है तथा अपने देश, दुनिया और विश्व समाज को मंगलमय बनाने की योग्यता हासिल करता है। पुस्तकालय का इतिहास काफी प्राचीन है। भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी तथा विदेशों में सीरिया, बेबीलोनिया आदि के पुस्तकालय काफी समृद्ध थे। लोक पुस्तकालय या सार्वजनिक पुस्तकालय एक ऐसा पुस्तकालय है जो जनसाधारण के उपयोग के लिए जनसाधारण द्वारा संचालित किया जाता है। सार्वजनिक स्तर पर यह सफल नागरिक के निर्माण हेतु निशुल्क संस्थाएं है। पुस्तकालय की सामाजिक जीवन में उपयोगिता। पुस्तकालय जनता का विश्वविद्यालय होता है। आदि काल से शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्त करना लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अतएव समाज में प्रत्येक व्यक्ति की मांग के अनुकूल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रत्येक पुस्तकालय का प्रथम कर्तव्य है। मानसिक संतुष्टि का द्योतक होनी चाहिए। गांधी जी के शब्दों में, जिसे पुस्तक पढ़ने का शौक है वह कहीं भी खुश रह सकता है। जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। समाज का कोई भी व्यक्ति आजीवन किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल सामाजिक पुस्तकालय ही एक ऐसा केंद्र है जहां समाज के प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव या बंधन के स्वयं स्वाध्याय के द्वारा शिक्षा या ज्ञान अर्जित कर सकता है या शोध कार्य संपन्न कर सकता है। पुस्तकालय एक मुक्त विद्यालय। समाज में एक ऐसा भी तबका है जो शिक्षा प्राप्त करने से कोसों दूर रह जाता है। पुस्तकालय सभी स्तर उम्र के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान करता है। पुस्तकालय ही समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक भूख मिटाने में सहायक है। गैप जनरेशन की खाई को पाटता है। प्रजातंत्र की सफलता में पुस्तकालय की अहम भूमिका होती है। प्रजातांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना अति आवश्यक है। लोकतंत्र में पुस्तकालय समाज को जागरूक और सचेत रखने में सहायक है। व्यक्तित्व का पूर्ण विकास पुस्तकालय द्वारा संभव है। पुस्तकालय ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां हर भाषा में हर विषय पर सामग्री उपलब्ध होती है एवं उसका सुविधा पूर्वक अध्ययन मनन एवं चिंतन के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर अपने विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय में अधिकाधिक दक्ष होकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। विभिन्न प्रकार के प्राचीन ग्रंथ पांडुलिपि एक संचित ज्ञान का एक भंडार है जो विभिन्न पुस्तकालयों में संग्रहित है। सामाजिक व्यवस्था के साथ तालमेल। परिवर्तन के इस युग में अनेक प्रकार के साहित्य प्रकाशित हो रहे हैं जो कि पुस्तकालय में संग्रहित रहती है। सूचना के विस्फोट को एक साथ व्यक्ति के पास सभी पुस्तकें उपलब्ध कराता है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से पारस्परिक संबंध। पुस्तकालय प्रत्येक ऐसी शैक्षिक सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ संबंध रखता है जिससे समयानुसार सहायता प्राप्त कर पाठकों को सहायता दी जा सके। इस प्रकार यह समुदाय की भरपूर सहायता करता है। पुस्तकालय वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रतीक होता है। यहाँ केवल एक देश प्रदेश समाज और व्यक्ति की सामग्री नहीं बल्कि दुनिया भर की पठनीय सामग्री चाहे किसी समाज वर्ग राष्ट्र से यह व्यक्ति से संबंधित हो पुस्तकालय की आर्थिक क्षमता के अनुकूल संग्रह किया जाता है। उसका अध्ययन समाज के लोग करते हैं। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समरसता का अद्भुत केंद्र। पुस्तकालय में आते ही व्यक्ति सारा भेदभाव भूलकर अपने अपने धर्मों की पुस्तकें एक ही टेबल पर बैठकर पढ़ते हैं जो कि किसी सामाजिक समरसता को परिलक्षित करती है। भ्रातृत्व भावना का विकास होता है। पुस्तकालय ही वह पवित्र मिलन मंदिर है जहां एक ही छत के नीचे एक ही अलमारी में वेद कुरान बाइबिल गुरु ग्रंथ साहिब जैन अवस्था आदि रखे हुए मिलेंगे। दूसरा कोई मंदिर मस्जिद या गिरजाघर नहीं है जहां सभी धर्मों के ग्रंथ एक साथ मिलेंगे जो सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक वो गंगा यमुना तहजीब की एकता को परिलक्षित करता है जो कि किसी समाज राष्ट्र के लिए शुभ संकेत है। आपस में हो भाईचारा यही पैगाम है हमारा का संदेश एक पुस्तकालय प्रदान करता है। पठन पाठन की रुचि में वृद्धि वो मानसिक स्वास्थ्य को

0: पुस्तकालय से अच्छी खुराक मिलती है, दिमाग और दिल परिष्कृत होता है, समाज का सबल और शांतिमय रूप में निर्माण होता है, औपचारिक शिक्षा का पूरक पुस्तकालय होता है, समाज में लघु फिल्मों प्रदर्शनी, समय समय पर व्याख्यान, लोक शिल्प, लोक कला, पेंटिंग, वाद्य यंत्र प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, बाल मेले का आयोजन कर पुस्तकालय शैक्षणिक जागृति लाता है। अंततः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय समाज के सभी समुदाय को एक सुनहरे धागे से आपस में एकजुट करने का कार्य करता है। पुस्तकालय सामाजिक परिवर्तन का वाहक है। एक पुस्तकालय पूरे समाज के हर एक उम्र, हर वर्ग, बाल्यावस्था, युवा, युवती, प्रौढ़ावस्था, किसान, संस्कृति कर्मी, शिक्षक, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, विभिन्न पार्टियों के नेता, नौकरी पेशा, प्रतियोगी, छात्र छात्राओं के लिए जो चाहो वो पाओ के तर्ज पर सुकून के साथ मनचाही ऊर्जा प्राप्त कराते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को हम पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहते हैं एवं पूजते हैं। आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा के शब्दों में, पुस्तकालय का प्रसार प्रमाण देश की सभ्यता के स्तर का तापमानक सूचक यंत्र है। यूनानी दार्शनिक सिसरो का कथन है कि अगर आपके पास एक बगीचा है और एक पुस्तकालय है, तो फिर मान कर चलिए कि वो हर चीज है जिसकी आपको जरूरत है। अंततः गांव समाज देश की आत्मा है। पुस्तकालय वहां एक उम्मीद आशा की किरण है।
1: जी हाँ साथियों, पुस्तकालय ज्ञान और सूचना का सबसे बड़ा स्रोत है, जो शिक्षा, शोध और व्यक्तिगत विकास के लिए एक शांत और व्यवस्थित वातावरण हमें प्रदान करते हैं। यह न केवल किताबें बल्कि डिजिटल संसाधनों के माध्यम से भी अब ज्ञान का विस्तार करते हैं और सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा व पठन पाठन को सुलभ बनाकर समाज के बौद्धिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। खासतौर से उन विद्यार्थियों को जिन्हें शोध करना है, उनके लिए तो पुस्तकालय की महत्ता कही ही नहीं जा सकती है दोस्तों। लेकिन क्या करें कि अगर किसी का पढ़ने में दिल ही ना लगे, तो फिर उन्हें चाहे लाख संसाधन हम दे दें, उनके लिए तो बस कुछ कहना ही क्या है।

जी हाँ दोस्तों, पढ़ने में अगर दिल नहीं लगता है तो फिर उसका उपाय बड़ा मुश्किल है। और अगर बीच रास्ते में, करियर के बीच रास्ते में, बीच धरा में ऐसा हो जाए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना करियर बन पाता है और ना संसार। अगर आप योग्य नहीं बनते हैं तो फिर मोहब्बत की भी दुनिया भी आबाद नहीं होती है, क्योंकि जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होते हैं तब तक हर जगह आपके लिए मुश्किलें हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबसे जीवन में अगर आपको प्यार करना है तो सबसे पहले अपने कैरियर से प्यार कीजिए और दो पैसा अर्जित करने लायक अपने आप को बनाइए। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं न्यूज़ हेडलाइंस को, क्योंकि कैरियर बनाने में न्यूज़ का की बड़ी अहम भूमिका होती है। अगर आप अपने नॉलेज को अप टू डेट रखना चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स को अप टू डेट रखना चाहते हैं, तो न्यूज़पेपर से आपको दोस्ती करनी ही पड़ेगी, तभी आप हर नॉलेज, अपने हर तरह की जानकारी को परिपुष्ट कर पाएंगे। और इससे एक आत्मविश्वास भी आता है। अगर हर दिन आप न्यूज़ हेडलाइंस पर नज़र रखते हैं तो आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा रहता है, और इससे आपके को अलग से उसके लिए अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है। हर दिन न्यूज़ हेडलाइंस को देखना अपने रूटीन में हमें शामिल करना चाहिए। चाहे हम किसी भी उम्र, किसी भी वय के व्यक्ति क्यों ना हों, अखबारों की सुर्खियों पर नज़र हमें हमेशा रखनी चाहिए। इससे हम दिन दुनिया से जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको न्यूज़ हेडलाइंस बताए देते हैं। हो सकता है मौसम ख़राब है और आपका वेंडर अभी तक आपका न्यूज़पेपर लेकर ना आया हो। ठाकुर अनुकूल चंद्र के सत्संग में गूंजे उनके विचार। आदमपुर बैंक कॉलोनी के राम रतन लेन में शनिवार को ठाकुर अनुकूल चंद का सत्संग हुआ। महाराणा प्रताप को दानवीर भामाशाह ने पूरी संपत्ति अर्जित कर दी थी, ये बातें कही मेयर ने। दानवीर भामाशाह की जयंती शनिवार को टाउन हॉल में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोस्तों जी हाँ, 7 अगस्त को उनकी जन्म जयंती थी और हमने उनके बारे में जाना, और उनके बारे में जयंती मनाए पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनकी जयंती पर बीएन कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में रविन्द्रनाथ टैगोर

जी की 165वीं जयंती पर बंगला व अंग्रेजी विभाग ने कार्यक्रम आयोजित किया था और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसके मुख्य अतिथि थे प्राचार्य अनिरुद्ध कुमार। और दोस्तों, इसके साथ ही अखबारों की सुर्खियों में है कि हर वार्ड में बनेंगे सड़क व नाले, नगर निगम क्षेत्र के सभी 51 वार्डों में सड़क नाला और प्याऊ निर्माण का कार्य किया जा रहा है और उसकी बेहतरी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है।

साथ ही दोस्तों राज्य के बड़े पुलों की सुरक्षा जांच होगी, 72 घंटों में रिपोर्ट देना होगा। पथ निर्माण विभाग ने सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश दिया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 72 घंटों के अंदर पुलों की सुरक्षा परख कर जांच रिपोर्ट भेजेंगे। जी हां दोस्तों, विक्रमशिला पुल के टूट जाने के बाद हमें बहुत अधिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार द्वारा ये कदम उठाई जा रही है। बिहार में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए रहेगी टूरिस्ट पुलिस और किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। डॉक्टर संतोष ने ये बातें कही है। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने शनिवार को विकास भवन में पदभार ग्रहण करते हुए ये बातें कही।

विक्रमशिला सेतु स्लैब गिरने के बाद एक्शन मोड में विभाग। सेतु का कई स्पैन खतरनाक बड़े ऑपरेशन की है तैयारी। और साथियों, सड़क और पार्कों का सर्वे किया जाएगा। और आज के अखबार में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है, राष्ट्रीय लोक अदालत में 10,486 मामलों का निष्पादन किया गया, 6.81 करोड़ पर हुआ सुलह। और चालान जमा करने में हुई अव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, ट्रैफिक चालान के निष्पादन के दौरान लोगों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक जगह पर ही पूरे ज़िले के चालान जमा करने की व्यवस्था की गई थी और कहीं पर दिशा निर्देश देने वाले कोई नहीं थे। लोग अफरा तफरी के माहौल में इधर उधर भटक रहे थे, किंतु फिर भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपना चालान जमा करवाया। तो ये तो थी अखबारों की चंद सुर्खियां दोस्तों। और अब बातें कर लेंगे आज के दिन के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, आज मातृ दिवस है, माँ के ऊपर ही चंद बातें हम कर लें, जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरू में भी की थी। और माँ को समर्पित करेंगे एक सॉन्ग। कड़ी धूप सरीखे जीवन में दोस्तों, माँ के पास पहुँच कर ही हमें छांव महसूस होती है। माँ से बात करो या माँ को याद करो, उसका आंचल लहराता हुआ आता है और हमारे सिर पर छाया कर जाता है। खास तौर से जब हम दुख की घड़ी में होते हैं, कोई कष्ट हमें शारीरिक या मानसिक होता है, तब माँ हमें बहुत याद आती है। मन को पता है भीतर ही भीतर, जब माँ है तब सुख है, चैन है, एक अनकहा सुकून है, जीवन से लड़ने की ऊर्जा है। उसके बाद क्या, उसके बाद माँ की याद है। माँ यादों में बसती है, प्यार बनकर, डांट बनकर, स्वाद बनकर, दुलार बनकर, एक साथ कई जीवन जीती है माँ हमारे साथ। कहीं चोट लगती है तो वो जी लेती है वैद्य का जीवन भी, और इस तरह से हर चोट के साथ माँ याद आती है। चोट पर महरम लगाती हुई माँ अपने आंचल में से जैसे छुपा लेती है बचपन में किसी भी आफत के आने पर, वैसे ही याद आ जाता है। जब अब भी जब माँ का आंचल किसी भी आफत के आने पर हर पीड़ा में हमें याद आती है माँ। और दोस्तों, माँ बिना कहे ही सब कुछ समझ जाने वाली वो शक्ति होती है, जिसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है। बस माँ ने हमारा चेहरा देखा और सब कुछ जान लिया।

जी हाँ दोस्तों, माँ बिना जानती है, सब कुछ समझती है। माँ बच्चों की पूरी दुनिया होती है, माँ सर्वज्ञ होती है। माँ एक अच्छी रसोइया भी है, माँ एक डॉक्टर भी है, माँ बच्चों के लिए एक मैतर भी है, माँ सब कुछ है। एक सफाई कर्मचारी है, एक विद्यादायिनी है, विद्या की देवी है, संस्कार देने वाली है, सब कुछ देने वाली है, एक सक्षम व्यक्तित्व बनाने वाली है। माँ है तो सब कुछ है, और माँ नहीं है तो उस खालीपन को इस संसार का कोई भी व्यक्तित्व भर नहीं पाता। इसलिए हमें माँ के प्रति हमेशा ऋणी रहना चाहिए। यह दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। मौसम बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा प्राप्त ये मौसम सूचना हम आप तक पहुंचा दें। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दोस्तों, ये सूचना है कि मौसम साफ रहेगा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कहीं कहीं ओलावृष्टि और कहीं कहीं बारिश होने की भी

की संभावना है दोस्तों। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है और सापेक्षिक आर्द्रता में 70 से 75%, दोपहर में 30 से 35% रहने की संभावना है और पूर्वानुमान की अवधि में 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है दोस्तों। तो ये तो मौसम का मिजाज था और अब जान लेते हैं कि रेलगाड़ियों की चाल कैसी रहने वाली है आज। तो दोस्तों 1555 3 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस प्रातः 7:50 पर चलती है दोस्तों, तो अब वो प्रस्थान करने ही वाली होगी। 13016 हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस दोस्तों, ये गाड़ी अपने राइट टाइम 7:45 पर यहाँ से प्रस्थान कर चुकी होगी और इसका नंबर है दोस्तों 13016। साथ ही दोस्तों आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस की बात करें तो ये गाड़ी सुबह 8:15 पर अपने नियत समय पर आ रही है छुक छुक करते हुए और हमारे अपनों को लेकर आने वाली है, तो हमें अत्यधिक प्रसन्नता है कि ये गाड़ी ऑन टाइम है। 15658 ब्रह्मपुत्र मेल की बात करें दोस्तों, जिसका टाइम है 8:05, ये गाड़ी अपने समय से 4 घंटे देर से आने की संभावना है। और दोस्तों बात करेंगे आज 53416 जमालपुर साहबगंज पैसेंजर की, जो आती है यहाँ सुबह 8:37 पर, ये गाड़ी भी अपने ऑन टाइम पर है दोस्तों, राइट टाइम पर ही आने की सूचना है, जो साप्ताहिक रविवार को चलती है। गोड्डा लोकमान तिलक सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो यहाँ आती है 8:35 पर अपने ऑन टाइम पर आ रही है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस की, जिसका समय है 9:00, ये गाड़ी अपने समय पर आ रही है। साथ ही दोस्तों साहबगंज जमालपुर मेमो, जिसका नंबर है 63431, अपने सही समय 9:15 पर आने की सूचना है, सही समय पर आने की सूचना है। मालदा क्यूल इंटरसिटी का, जिसका टाइम है दोस्तों 9:35 और ये गाड़ी आती है 9:35 पर और इसका नंबर है 13409। और भागलपुर से बाहर प्रस्थान करने वाली दो मुख्य रेलगाड़ियां, जिसका नंबर है 13241, आपने समझ ही लिया होगा दोस्तों जिस बातें मैं कर रही हूँ। बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी का, जो आती है सुबह 10:15 पर, तो ये गाड़ी अपने नियत समय पर ही आ रही है और नियत समय पर ही यहाँ से छुक छुक कर प्रस्थान करेगी। आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसका टाइम है दोस्तों 11:55, तो अब अगर आपको भागलपुर से बाहर जाना है इन गाड़ियों से, तो आप फटाफट रेडी होइए और ये गाड़ी बिल्कुल ऑन टाइम है दोस्तों, कहीं भी विलंब नहीं कीजिएगा। और अब हम आपको बताएंगे दोस्तों कि आज के दिन क्या क्या खास रहा है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द डे दोस्तों। आज के दिन यानी 10 मई 1959 को सोवियत सेना अफगानिस्तान पहुंची थी। 1967 में मशहूर रॉक बैंड रोलिंग स्टेंस के 2 सदस्यों को मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में अदालत में पेश होना पड़ा था। 1972 की बात करें तो आज के दिन अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। 1993 में संतोष यादव दुनिया के सबसे ऊँचे पर्वत शिखर पर पहुँचने वाली पहली महिला पर्वतारोही बनी थी और ये 2 बार पहुंची थी। और 1994 में 10 मई 1994 को रंगभेद को समाप्त करने की मुहिम में अपना पूरा जीवन लगा देने वाले नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। उन्हें 1993 में F.W.D. क्लार्क के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों बात करेंगे आज के दिन किन महान हस्तियों का जन्म हुआ, तो आज के दिन पंकज मलिक साहब 1905 ईस्वी में आपका जन्म हुआ, बंगला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक संगीतकार और अभिनेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है का जन्म हुआ था। सुभाष कश्यप 1929 ईस्वी में भारतीय संविधान विशेषज्ञ और पद्म भूषण से सम्मानित आपका जन्म हुआ था। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक योगेंद्र सिंह यादव का जन्म आज ही के दिन 1980 ईस्वी में हुआ था। और आज ही के दिन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ विचित्र नारायण शर्मा का 1800

98 में जन्म हुआ था। अल्फ्रेड वेब 1834 में आपका जन्म हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे गैर भारतीय अध्यक्ष आप बने थे। भारतीय अभिनेत्री और मॉडल ऋषिता भट्ट का आज ही के दिन जन्म हुआ था। और रामेश्वर नाथ काव 1918 में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के संस्थापक काव साहब का 1918 में जन्म हुआ था। और दोस्तों बात करेंगे आज के दिन किन महान हस्तियों का डेथ हुआ था, तो पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक और संगीतकार आपका डेथ हुआ है 2022 में आज ही के दिन। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मैकमोहन साहब का भी 2010 में आज ही के दिन डेथ हुआ था। दोस्तों आप भूले नहीं होंगे शोले के शाम्बा को, और उनका जन्म उनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी। और कैफी आजमी साहब मशहूर उर्दू शायर और गीतकार कैफी आजमी साहब का जन्मदिन आज ही के दिन 2002 में मृत्यु इनकी हुई थी। इनके बारे में हम चंद बातें और भी करेंगे दोस्तों, आप कार्यक्रम में बने रहिएगा हमारे साथ साथ। और साथ ही निधन हुआ था आज ही के दिन 1922 में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलितों के हितैषी छत्रपति साहू जी महाराज का। दोस्तों जैसा कि हमने पहले कहा था कि कैफी आजमी साहब का आज के दिन डेथ हुआ था, तो कैफी आजमी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हिंदी फिल्मों के मशहूर शायर को हम सब जानते हैं। ये महान भारतीय उर्दू शायर, प्रगतिशील कवि और फिल्म गीतकार थे। इन्होंने हिंदी सिनेमा में उर्दू साहित्य को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने 11 साल की उम्र से ही शायरी शुरू कर दी थी। और दोस्तों कर चले हम फिदा जैसे देशभक्ति गीतों के माध्यम से ये प्रसिद्ध हुए। आपका मूल नाम सैयद अतहर हुसैन रिजवी है और आपका उपनाम कैफी है। 14 जनवरी 1919 को आपका जन्म उत्तर प्रदेश के मिजमा, जो आज आजमगढ़ में है, में जन्म हुआ था। और 10 मई 2002 को आपका निधन हुआ। आपकी पत्नी का नाम शौकत आजमी है और इनके बच्चे शबाना आजमी और बाबा आजमी, जो कि बॉलीवुड सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्री हैं और बॉलीवुड में आप लोगों की भूमिका अहम है। कई एक किरदारों में आप लोग आते रहे हैं और अभी भी सक्रिय हैं। जहाँ तक दोस्तों बात करें आपके व्यवसाय की, तो ये शायर, गीतकार और कवि रहे। प्रगतिशील उर्दू कविता, फिल्मी गीतों में साहित्यिक उर्दू का प्रयोग आपने खुलकर किया और आपको साहित्य के अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की व्यापगत का सिद्धांत नीति के तहत झांसी, नागपुर और सतारा जैसी रियासतों का दिव्य विलय आपने करवाया। और आपका राजनीतिक जीवन में भी बहुत हस्तक्षेप था। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई गीतों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा प्रदान की। और दोस्तों बात करेंगे आज के इतिहास में खास खास बातों की, तो आज का दिन 1857 की क्रांति की शुरुआत भी आज ही के दिन हुई थी। दोस्तों आज के दिन लॉर्ड डलहौजी की व्यापगत सिद्धांत नीति के तहत झांसी, नागपुर और सतारा जैसी रियासतों का विलय हुआ। और आज के दिन 1857 के कारण में आर्थिक कारण भी था, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के कारण किसानों का शोषण होता था। दोस्तों इसके अलावा तात्कालिक कारण जो कहा जाए तो सेना में नई एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया गया था, जिसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैली थी, जिसने हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। और इसी के परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति हुई, जो कि स्वतंत्रता संग्राम की जड़ कहा जाए, बोन कहा जाए। और इसी क्रांति के बदौलत राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों के लहू में चिंगारी फैली और फिर स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा। और फिर अंत में स्वतंत्र देश को स्वतंत्र करवा करके ही उन्होंने दम मारा। तो कैफी आजमी साहब के ही लिखे इस गीत के माध्यम से हम अपने तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को

अपने स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को हम अपने दिलों में जगह दें और उनके प्रति हमेशा रोम रोम से हम कृतज्ञ रहें। उनके प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी दोस्तों। और इन्हीं बातों के साथ अब आपकी दोस्त आपसे विदा चाहेगी। सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। फिर मिलते हैं।

साथियों, हमें खेद है कि समय अभाव के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज, खबरनामा और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पटना से। तो समाचारों के लिए आइए शामिल होते हैं दिल्ली की प्रसारण सभा में।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कमस्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
3: टीवी के जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस, VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री N रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
4: N रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
8: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
9: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाड और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाड में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाड और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
11: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalizes 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration tests of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. More from our correspondent.
13: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Center, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honored with Mysore Peta and silk shawl for the party's recent electoral victory, and around 15,000 people will attend this meeting. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
12: Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad. At around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in the state. Mr. Modi will lay the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 from Guddebellur to Mehboob Nagar on the Hyderabad-Panaji Economic Corridor at a total project cost of over 3,175 crore rupees. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. In a major milestone for India's healthcare infrastructure, Mr. Modi will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-specialty quaternary care not-for-profit hospital. Founder of Tamil Nadu Vetri Kadagam, TVK, C. Joseph Vijay, will be sworn in as the Chief Minister of the state today. The swearing-in ceremony will be held at Nehru Indoor Stadium in Chennai at 10 a.m. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will administer the oath of office to Mr. Vijay. According to party sources, 9 ministers will also be sworn in along with him. Elaborate arrangements have been made for the swearing-in ceremony as a huge crowd is expected to turn up for the event. More from our correspondent.
14: With a mandate of more than 34%, Vijay, who acted in several box office hits, will become the chief minister. Vijay made the entry as a protagonist to film world through Nalaya Teerpu. Later, he went on to give several blockbusters, including films which had political dialogues. The songs which had Josh beats is popular among children to the aged ones. TVK, being the single largest party, had to stop with 108 seats, but still Joseph Vijay managed to get the majority with the help of Congress, VCK, left parties and IUML. With the charisma of a hero, Tamil Nadu has seen the heartthrob of the youth who made history on the very first attempt and become the chief minister. Unga Vijay, Naan Varan was the code word which he won the elections. No doubt that the performance of this government, who has a lot of young and new faces, will be assessed by those who gave him the mandate. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
12: President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as chief minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailash Nathan invited Mr. Rangasamy to form a new government in the Union Territory. More from our correspondent.
15: With the approval of the President, decks are cleared for the swearing-in ceremony of N. Rangasamy as the new Chief Minister of Puducherry on May 13. Mr. Rangasamy is set to assume office for a record fifth term after the ANRC-led National Democratic Alliance secured a comfortable victory in the assembly elections. 76-year-old N. Rangasamy had earlier served as the Chief Minister of Puducherry from 2001 to 2006 and again from 2006 to 2008 as a Congress leader. After founding the All India NR Congress, he served as Chief Minister from 2011 to 2016 and later headed the ANRC-BJP Alliance government from 2021 to 2026. In the recently held assembly elections, Mr. Rangasamy was elected from both the Thattanchavadi and Mangalam constituencies. In the 30-member assembly, NDA has got the support of 18 MLAs, two more than the majority mark. Vibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
12: Assam BJP Legislature Party will meet in Guwahati today to elect its leader. The newly elected BJP MLAs will meet at the Atal Bihari Vajpayee Bhavan at 9 this morning. Meanwhile, preparations are in full swing for the swearing-in of the NDA government for a third consecutive term in Assam. More from our correspondent.
5: The BJP Legislature Party meeting will be held in presence of BJP Central Observer Jagat Prakash Nadda and Co-Observer Nayab Singh Saini. Following the meeting, the NDA Legislature Party meeting will be held at the same venue. Thereafter, the NDA Legislature Party will meet Governor Laxman Prasad Chaya to stake claim to form the government. Meanwhile, preparations are being carried out on war footing at the Veterinary College ground in Khanapara for the oath-taking ceremony scheduled to be held on May 12. The Kamrup Metro District Administration has also issued a set of traffic regulations in the city for the day. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah are expected to attend the swearing-in ceremony. Rakesh Tole, Akashvani News, Guwahati.
12: The top brass of the Congress party held a meeting in New Delhi yesterday to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, Party General Secretary in charge of the state Deepa Das Munshi, General Secretary Organization K.C. Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chennithala and V.D. Satishan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates,

0: category and Sonia Cruz to a 5-0 victory in 40kg. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Shagun. The Statesman highlights Suvendu Adhikari sworn in as Bengal CM, while the Times of India adds NDA show of strength as Suvendu sworn in as first BJP CM of Bengal. Hindustan Times. Prime Minister bows, thanks voters, notes the pioneer. Numbers in order, Vijay to be TN Commander-in-Chief, notes Hindustan Times. The Statesman headlines, TVK crosses final hurdle for majority, secures IUML's VCK support for forming Vijay Sarkar. Agni 5 tested, capable of multiple nuclear strikes, cites Hindustan Times. India tests advanced Agni missile from Odisha coast, reports the pioneer. The Asian Age reports, Lieutenant General Raja Subramani appointed as next CDS, Swaminathan to helm Navy. The Tribune reports, Park China Affairs experts, Lieutenant General Raja Subramani picked up as next CDS, Swaminathan named Navy Chief. Hindustan Times headline states, Vinesh gets WFI notice, returns set get delayed, while the Indian Express headlines, Vinesh comeback hits a hurdle, WFI bars her from competing until June 26th. In a Mother's Day special piece titled Giving Them Roots, the Indian Express mentions inspiring stories of motherhood, pointing motherhood may not give you awards, but it certainly gives you battle scars and memories. And finally, Indian tourism waking up to its floral power, the Financial Express writes, the demand for flower-centric travel is witnessing strong growth. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the art of living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalizes 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration tests of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरा करेंगे। वो हैदराबाद में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के कयाम के 45 साल पूरे होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। टीवीके के सरबराह सी जोसफ विजय को आज सुबह तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का वजीर आला मुकर्रर किया है। मरकज ने जाब्तों की इशाअत के साथ मेहनत से मुतालिक 4 जाब्तों को नाफिज कर दिया है। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कंबस्टर के तवील दौरानिए के तजुर्बे के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी में बड़ी कामयाबी हासिल की है और 9 भारतीय मुक्केबाज ताशकंद में 15 साल और 17 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वजीर आजम बेंगलुरु में तकरीबन 11 बजे दिन में द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के कयाम के 45वें साल के तकरीबात में शिरकत करेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नए तामीर शुदा ध्यान मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के अकीदतमंदों से खिताब करेंगे और इहाते में नए तामीर करदा ध्यान मंदिर या मेडिटेशन हॉल का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी दिमागी सेहतमंदी, देही तरक्यात, फितरत के तहफ़ और समाजी बुनियादी ढांचे से मुतालिक मजकूरा फाउंडेशन के साल भर तक जारी रहने वाले प्रोजेक्टों का भी आगाज करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर जाने से कबल वजीर आजम HAL हवाई अड्डे पर बीजेपी के रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब करेंगे। बंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
2: इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र

0: में मुनाकिद होगी। रियासत के गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर जनाब विजय को ओहदे का हलफ दिलाएंगे। पार्टी जराये के मुताबिक उनके साथ 9 वजीर भी हलफ लेंगे। चेन्नई में इस तकरीब के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि उनकी हलफ बर्दारी की तकरीबात में कसीर तादाद में लोगों के आने की तवक्को है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: चेन्नई सुपर किंग्स का शहर आज 51 साल जोसेफ विजय के लिए बिगुल बजाएगा, जो इस तकरीब की मरकजी शख्सियत होंगे। आज रियासत की राजधानी हल्की बारिश और बूंदाबांदी के साथ नए वजीर आला का खैर मकदम कर रहा है। 34% से ज्यादा मैंडेट हासिल करने वाले नेज कई कामयाब फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाले विजय अब वजीर आला बनने जा रहे हैं। उनके वालिद S.A. चंद्रशेखर फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पू से अपनी फिल्मी करियर का आगाज किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी जिनमें सियासी मुकालमे भी शामिल थे। 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली TVK ने कांग्रेस VCK बाएं बाजू की पार्टियों और IUML की हिमायत से अक्सरियत हासिल की है। हुकूमत की तश्कील के लिए उन्हें 5 दिन तक मुसलसल बातचीत और मीटिंगें करनी पड़ी। अपनी मकबूलियत और करिश्माती शख्सियत के बायस विजय ने पहली ही कोशिश में तारीख रकम करते हुए वजीर आला का ओहदा हासिल कर लिया। उंगा विजय नान वारेन उनका इंतखाबी नारा था, जिसके जरिए उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब इस नई हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा आवाम लेंगे, जिन्होंने उन्हें मैंडेट दिया है। तमिलनाडु से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने N. रंगास्वामी को पुदुचेरी के वजीर आला के तौर पर मुकर्रर किया है। इस तकर्री के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर K. कैलाशनाथन ने रंगास्वामी को मरकज के जेर इंतजाम इलाके में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदु किया है। 13 मई को जनाब रंगास्वामी वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। गुज़श्ता 9 अप्रैल को मरकज के जेर इंतजाम इलाके में हुए इंतखाब में AINRC की क़यादत वाले NDA की आसान जीत हासिल करने के बाद जनाब रंगास्वामी 5वीं मुद्दत कार के लिए वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 मई को किया गया था। आसाम BJP कानून साज पार्टी आज गुवाहाटी में अपने रहनुमा का इंतखाब करने के लिए मीटिंग करेगी। BJP के 9 मुंतखब अरकान असेंबली आज सुबह 9 बजे अटल बिहारी वाजपेयी भवन में मीटिंग करेंगे। इस दौरान आसाम में NDA सरकार की मुसलसल तीसरी मुद्दत कार के लिए हलफ बर्दारी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: BJP कानून साज पार्टी की मीटिंग BJP के मरकजी मुशाहिदीन जगन प्रकाश नड्डा और उनके साथी मुशाहिद नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में मुनक़िद होगी। मीटिंग के बाद NDA कानून साज पार्टी की मीटिंग भी इसी मकाम पर होगी। इसके बाद NDA कानून साज पार्टी हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगी। इस दौरान 12 मई को मुनक़िद होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब के लिए खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में तेजी से तैयारियां जारी हैं। कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिला इंतजामिया ने इस दिन के लिए शहर में ट्रैफिक के जाब्ते भी जारी कर दिए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करने की तवक्को है। इसके अलावा BJP के इकदार वाली मुख्तलिफ रियासतों के कई वजराए आला और मरकजी वजरा को भी इस अहम तकरीब में मदऊ किया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: कांग्रेस पार्टी की आला क़यादत ने कल नई दिल्ली में केरला में हुकूमत की तश्कील पर तबादले ख्याल के लिए एक मीटिंग की। ये मीटिंग कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर बुलाई गई थी, जिसमें सीनियर रहनुमा राहुल गांधी, पार्टी की रियासती इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी, जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और केरला के सीनियर रहनुमा रमेश जैनीथाला और VD सतीशन ने शिरकत की। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी केरला के नए वजीर आला के बारे में हतमी फैसला करेंगे और बहुत जल्द नाम का ऐलान किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने तमाम मरकजी वजारतों, महकमों, खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज CPSEs में काम करने वाले आउटसोर्स्ड और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के तहफ्फुज़ को नुमाया तौर पर मजबूत करने के लिए इकदाम किए हैं। लेबर कोड्स की तामील को सरकारी खरीदारी और बोली लगाने की अहलियत

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान। रोहतास जिले का टेलकप पंचायत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए चयनित। बिहार पुलिस में 15,821 पदों पर सैप जवानों की होगी नियुक्ति। 1 जून से शुरू होगी चयन प्रक्रिया। और मौसम विभाग ने आज सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया समेत राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक, साप्ताहिक वेतन, साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। रोहतास जिले के टेलकप पंचायत समेत देश भर की 42 पंचायतों को इस वर्ष यह पुरस्कार दिया जाएगा। टेलकप पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिलेगा। इसके तहत 1,25,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित होगा। कर्नाटक से सबसे अधिक 6 पंचायतों का पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश और ओडिशा के 5-5 पंचायत चयनित किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि जानमाल का नुकसान कम से कम किया जा सके। गृहमंत्री दीर्घावधि बाढ़ रोकथाम उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। बाढ़ और लू संबंधी पूर्वानुमान प्रणाली मजबूत करने, जन जागरूकता, समुचित राहत सामग्री की आपूर्ति और चिकित्सा सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह बैठक जन केंद्रित आपदा प्रबंधन और सक्रिय उपायों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित प्रारूप प्रपत्र 1 पर आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 18 मई निर्धारित की है। आयोग के अनुसार आपत्तियों के निपटारे से असंतुष्ट रहने पर अपील वाद दाखिल किया जा सकता है। इस अपील का निपटारा भी 7 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। वहीं प्रारूप 1 का अंतिम प्रकाशन 15 जून को किया जाएगा। इसके साथ ही आयोग ने पंचायत चुनाव में आरक्षण की सही जांच के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु में तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने श्री विजय को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया है। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है।

0: इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। बिहार पुलिस में 15,821 पदों पर विशेष सहायक पुलिस सैप की अनुबंध पर नियुक्ति की जाएगी। इसकी प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय ने जवानों की भर्ती के लिए पटना जिले के दानापुर कैंट स्थित सेवा रोजगार कल्याण संगठन को नोडल इकाई बनाया है। इसके साथ ही भर्ती की प्रक्रिया प्रमंडलवार तय की गई है, जिसमें पूर्णिया, भागलपुर और दरभंगा के लिए 1 जून, कोसी, मुंगेर और सारण के लिए 2 जून, तिरहुत के लिए 3 जून, मगध के लिए 4 जून और पटना प्रमंडल के लिए 5 और 6 जून की तिथि निर्धारित की गई है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य किया गया है। राज्य में मरीजों की जांच रिपोर्ट चिकित्सकों को अब ऑनलाइन मिलेगी। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शशांक शेखर सिन्हा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में 1 जून से मरीजों और उनकी जांच रिपोर्ट की एंट्री ऑनलाइन की जाएगी। श्री सिन्हा ने बताया कि इसे आभा आईडी के तहत ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूचीबद्ध अस्पतालों को प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR के लिए ₹20 दिए जाएंगे। कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि राज्य में अब तक 6,11,00,000 मरीजों की आभा आईडी बनाई जा चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE आज नई दिल्ली में समग्र बौद्धिक विकास पर परामर्शदाता सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। CBSE ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से यह आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। बोर्ड के अनुसार यह परियोजना इस वर्ष जुलाई से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लागू की जाएगी। राज्य में पुलों की सुरक्षा और उनके रखरखाव में अनियमितता के मामलों में इंजीनियर और उससे संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि पुलों की गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल करने वाली संस्थाओं को पुलों का सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में आंधी बारिश की स्थिति बनी हुई है। आज सुबह राजधानी पटना, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया समेत राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है।
2: दिनांक 10 मई उत्तर बिहार के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भाग का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई है। राज्य में कल आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में विभिन्न मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान राज्य भर में लंबित 20,000 से अधिक ट्रैफिक ई चालानों का निष्पादन किया गया। पटना जिले में सबसे अधिक 10,119 यातायात चालान का निपटारा किया गया। पटना के फतुहा के एक व्यक्ति को 40,000 रुपए के चालान पर 20,000 रुपए की माफी दी गई है। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 148 ट्रैफिक चालान सहित 1227 मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। वहीं सीतामढ़ी जिले में कुल 2,854 मामले और सुपौल जिले में 1,394 वादों का निष्पादन किया गया। नेपाल सरकार के आदेश के बाद अररिया जिला प्रशासन ने भारत से नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है। जिला प्रशासन के अनुसार नेपाल से भारत में प्रवेश करने वालों को भी अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। राज्य के 208 नए डिग्री कॉलेजों को अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में मान्यता दे दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन ने बताया कि इन महाविद्यालयों में 1 जुलाई से नए सत्र की शुरुआत होगी। राज्य में सरकारी स्कूलों में पदस्थापित महिला शिक्षकों को गृह जिले में तबादला किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार अगले माह इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद महिला शिक्षिकाओं से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। राज्य में महिला और अनुसूचित जाति जनजाति मामलों की जांच आरक्षी उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी करेंगे। गृह विभाग के अनुसार इनसे संबंधित मामले राज्य में लगभग 4,870 लंबित हैं। इनकी जांच निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। भोजपुर जिले के डुमरिया की रश्मि सिंह का 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता के निशानेबाजी टीम के लिए चयन किया गया है। रश्मि वर्तमान में आईएसएसएफ युवा वर्ग की शूटर हैं। अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत पैकपार के वार्ड नंबर 10 में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मधेपुरा जिला का 46वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आलमनगर के विधायक नरेंद्र नारायण यादव और जिला पदाधिकारी अभिषेक रंजन ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। एसएसबी की बीरपुर इकाई ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत गीदरमाड़ी गांव में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में स्थानीय ग्रामीणों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यक दवाइयों का वितरण किया गया। सीतामढ़ी जिले के कन्हौली थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 किलो मादक पदार्थ गांजा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए बताई गई है। पटना जिले के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत करमली चक के पास से पुलिस ने 10 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पटना जिले की विशेष पुलिस ने 4 अपराधियों को चोरी की 7 स्कूटी और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। सीटीएसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि अगम कुआं, खाजे कला और मालसलामी थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है। सहरसा जिले के महेशी और सौर बाजार के 2 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चों के बीमार होने के मामले में प्रधानाध्यापकों को निलंबित कर दिया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने अग्नि मिसाइल के परीक्षण पर लिखा है, एक वार में कई दुश्मनों को भस्म करेगी अग्नि। दैनिक जागरण लिखता है, सप्ताह में 48 घंटे काम की समय सीमा तय, केंद्र सरकार ने 4 श्रम संहिताओं को किया लागू। प्रभात खबर ने बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह पर लिखा है, शुभो आरंभ, शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बांका में लगेगा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, शिक्षा मंत्री का दावा, जल्द होगी TRE 4 परीक्षा। आज अखबार की सुर्खी है, हार के बाद बदला ममता का अंदाज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान। रोहतास जिले का टेलकप पंचायत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए चयनित। बिहार पुलिस में 15,821 पदों पर सैप जवानों की होगी नियुक्ति, 1 जून से शुरू होगी चयन प्रक्रिया। और मौसम विभाग ने आज सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया समेत राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक

0: समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वही ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
7: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222250042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
7: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम
8: श्रोताओ, अपने रेडियो सीट पर आपने ट्यून किया है इस समय आकाशवाणी भागलपुर। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। पेश एक खदमत है फिल्मी गानों का हमारा कार्यक्रम नकमे नए पुराने।
9: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की

कार्यक्रम का आगाज़ हमने किया है फिल्म आँखें के इस खूबसूरत से नगमे के साथ, जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने, और गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि।

0: जी साथियों, साधना सरगम को अभी आप सुन रहे थे 1947 अर्थ फिल्म में। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीतकार थे ए.आर. रहमान। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे हम बैंड बाजा बारात फिल्म का खूबसूरत सा गीत, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ यानी आकाशवाणी भागलपुर के साथ।
1: राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: कागज का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लीजिए सुनिए बैंड बाजा बारात फिल्म में सलीम मर्चेंट, सुनिधि चौहान और साथियों को। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत के लिए संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

0: आप सुन रहे थे बादशाह फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार थे अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याज्ञिक। अगला गाना बस इस ब्रेक के बाद।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
3: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए चांदनी फिल्म का ये गीत। आशा भोसले, विनोद राठौर और साथियों की आवाज़ों में।

कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे थे चांदनी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। लता मंगेशकर और विनोद राठौर के युगल स्वरों में। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नकमी नए पुराने अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल मंजूषा। प्रस्तुत करता है श्री पार्वती के।

जय हिंद बच्चों, बाल मंजूषा के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दीदी मनमन। बच्चों, हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमृतवाणी के साथ। आज की अमृतवाणी में आप सुनेंगे शिक्षा पर विचार। बच्चों, शिक्षा केवल शब्दों का ज्ञान नहीं, ये सोचने की क्षमता और सही रास्ता चुनने की कला है। जो व्यक्ति सही शिक्षा प्राप्त करता है

वो जीवन में कभी फेल नहीं होता। बच्चों, शिक्षा का संबंध केवल किताबी ज्ञान से नहीं है। शिक्षा का तात्पर्य

जीवन जीने में मदद करती है। बच्चों, कई बार हम शिक्षा को समृद्धि और संपन्नता से जोड़ते हैं, जबकि शिक्षा का अभिप्राय हमारी सोच और विचारों से है। शिक्षा हमें अपने अधिकारों, कर्तव्यों और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करती है, जिससे समाज में समानता और न्याय आता है। ये भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक लचीलेपन, नवाचार और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करती है। शिक्षा आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करके व्यक्तियों का पोषण करती है। शिक्षित व्यक्ति न केवल बेहतर निर्णय ले सकता है, बल्कि वे समाज में लैंगिक समानता, बेहतर स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर जीवन जीने में सक्षम होते हैं। बच्चों, अमृतवाणी के बाद आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। बच्चों, आपकी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने ही वाली होंगी या शुरू हो गई होंगी, तो ऐसे में आपका वक्त आपका होगा। हाँ, स्कूल के होमवर्क होंगे, लेकिन उसे पूरा करने का समय भी होगा। आपके पास बहुत सारा समय ऐसा भी होगा जब आपको लगेगा कि आप क्या करें। बच्चों, ऐसी छुट्टियों वाला समय हमारे घूमने फिरने के साथ साथ हमारे कुछ नया सीखने का भी होता है। आप योगा, स्विमिंग, पेंटिंग, साइकिलिंग, सिंगिंग और कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। कोई नई भाषा सीखने का प्रयास कर सकते हैं। बच्चों, गर्मी की छुट्टी केवल आराम करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके सर्वांगीण विकास में भी सहायक है, जिसके जरिए आपके अंदर नई प्रतिभा का विकास हो सकता है। और आपको तो पता ही है समय कितना मूल्यवान है। यदि आप समय का सही उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए कितना अच्छा होगा। आप अपने घर के कामों में बड़ों की मदद भी कर सकते हैं। प्रकृति के करीब भी समय बिता सकते हैं। आप अपने अंदर की कमियों को दूर कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि गर्मी की छुट्टियों का हमारे मनोरंजन के साथ साथ हमारे विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप नई चीज़ों को सीखने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे आप तैराकी, अन्य खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, अपनी रुचि के अनुसार जो भी सीखते हैं, उससे आपके खेल और स्वास्थ्य दोनों को लाभ मिलता है। बच्चों, इससे आपका ध्यान भी एकाग्र होगा और रुचिपूर्ण कार्य होने से आपको अच्छा भी लगेगा। बच्चों, आप अपनी गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग नए कौशल सीखकर, रचनात्मक शौक पूरे करके और व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देकर कर सकते हैं। ये समय पढ़ाई के अलावा कुछ नया सीखने, शारीरिक रूप से सक्रिय रहने और परिवार के साथ साथ समय बिताने का सबसे अच्छा मौका है। आप अपनी छुट्टियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग आराम और मज़े के लिए और दूसरा भाग कुछ नया सीखने के लिए। बच्चों, आप अपने उन विषयों को भी रिवाइज कर सकते हैं जिसमें आप कमज़ोर हैं। ये प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा समय होता है। साथ ही आप अपनी हैंड राइटिंग सुधारने का मौका भी ले सकते हैं। गर्मी की छुट्टी आपके लिए कई मायनों में जीवन के बहुत सारे रंगों से परिचय कराती है। आप कुकिंग, बागवानी जैसे घरेलू कार्य से लेकर कोडिंग जैसे तकनीकी चीज़ें भी सीख सकते हैं। इसके अलावा स्वयं सेवा करना भी एक अनुभव प्रदान करता है, जिससे आपके अंदर सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है। आपको पता है बच्चों, वेकेशन हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। इससे तनाव कम होता है और थकान दूर होती है। बच्चों, गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग करने का एक बेहतरीन तरीका है नए कौशल सीखना। ये खाना पकाने से लेकर कोडिंग सीखने या फिर कोई वाद्य यंत्र बजाने सीखने तक कुछ भी हो सकता है। ये कौशल ना केवल समय बिताने का एक उपयोगी तरीका प्रदान करता है, बल्कि रचनात्मक और समस्या समाधान क्षमताओं को भी बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, खाना पकाने से माप और योजना बनाना सीखा जा सकता है। कोडिंग से तार्किक सोच विकसित होती है और वाद्य यंत्र बजाने से एकाग्रता और धैर्य में सुधार होता है। इसके अलावा ये कौशल भविष्य में शैक्षणिक और व्यक्तिगत
दोनों तरह से लाभदायक हो सकता है।

0: सकते हैं। बच्चों, इस चर्चा के बाद आइए सुनते हैं बच्चों की प्रस्तुति।
1: मेरा नाम आराध्या कुमारी है। जो हम लोग की सबसे ज्यादा फिकर, चिंता सब चीज करती है वो कौन होती है? माँ। इसीलिए मैं आज माँ से एक कविता सुना रही हूँ। मेरी माँ है कितनी प्यारी, सबसे सुंदर सबसे न्यारी, मीठी मीठी लोली गाती, लोली गाकर मुझे सुनाती, शब्द खुआ खुद ही सा लेती, हमसे कभी कुछ न गाती।
2: मैं उपवन उपाध्याय एक कविता को सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है नवजीवन का विहान। जगजीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनू नाथ, जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकू नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकू विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान।
3: मेरा नाम त्रिशा तेजस्विनी है। मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम दीपक बन जाए है। जहाँ जहाँ भी अंधियारा हो, पहुँचा अभी नवजियारा हो, आओ हम दीपक बन जाए, घर का दीपक कहलाने से उजियारा घर तक रहता है, सबके लिए दीप जो होता, जग उनको सूरज कहता है, किरणों का संसार बसाए, फिर से नई रोशनी ला, दीपों का त्योहार मनाए, आओ हम दीपक बन जाए, जितनी दूर उजाला चलता, पांव पर तक चल सकता है, राह तक जाती है लेकिन मन का लक्ष्य नहीं थकता है, मंजिल तक दीपक रख आए, दूर दूर तक अलख जगाए, हम सब उजला पथ अपनाए, आओ हम दीपक बन जाए।
4: मैं हर्ष कुमार परियों ने कहा कविता सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन सारी परिया आ निकली दूर गगन में, धरती पर वे पहुंच गए सुंदर एक उपवन में, सोचा उपवन से बाहर जाकर भी कुछ देखे, धरती की सुंदरता पर हम भी तो कुछ रीझे, पर देखा जो बाहर बहुत गंदगी पाई, गंदे गंदे बच्चे देखी देखी खूब लड़ाई, कोई पढ़ाई से बचता तो झूठ बोलता कोई, धरती की हालत देखकर सारी परिया रोई, उन बच्चों को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, साफ सफाई प्यार पढ़ाई सच का पाठ पढ़ाया, जिन बच्चों ने परियों की यह सारी बात मानी, उन बच्चों की सूरत ही इस दुनिया ने पहचानी।
5: मैं सुहानी कुमारी अब एक कविता सुनाने जा रही हूँ। इस कविता का नाम है ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं, धरा ठिकुरती है सर्दी में, आकाश में कोहरा घरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पारा है, सुना है प्रकृति के आंगन में कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई घर में दुबका हुआ है, नव वर्ष का ये कोई ढंग नहीं, चंद मास की अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल बही, उल्लास में मंद है जन मन का, आपी है अभी बाहर नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ही त्योहार नहीं, ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो, प्रकृति का रूप निकलने दो, फागुन का रंग बिखरने दो, प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा ब्रज योगी शर्ष श्याम लाल धरती माता धर पर खुशहाली लाएगी, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जब गान सुनाया जाएगा, युक्ति प्रमाण स्वयं सिद्धि, नव वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आयो की कृति सदा सदा, नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अनमोल विरासत में धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं।
6: मैं अमन कुमार आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा। मुसीबतों के सर को हम मसल मसल मुस्काएंगे, मुसीबतों के सर को हम मसल मसल मुस्काएंगे, ले मशाल उज्जवल किरण का चले हैं चलते जाएंगे, मुसीबतों के सर को हम

0: मसल मसल मुस्काएंगे, अब है हमारे रक्त कणों में अमृत वाणी मधुर मनों में, सत्यम साथ स्नेहम संग में आनंदित मन हर एक क्षणों में, आलोकित पथ पर अर्पित तन, आलोकित पथ पर अर्पित तन अमन गीत दोहराएंगे, मुसीबतों के सर को हम मसल मसल मुस्काएंगे, मुसीबतों के सर को हम मसल मसल मुस्काएंगे, हक के लिए लड़ेंगे दम भर, निकल पड़ा कारवां सफर पर, पथ के रोरे स्वतः हटेंगे संकल्पी मन देख देख कर, हिम्मत और मेहनत की भाषा, हिम्मत और मेहनत की भाषा जन जन को सिखलाएंगे, मुसीबतों के सर को हम मसल मसल मुस्काएंगे, मुसीबतों के सर को हम मसल मसल मुस्काएंगे, ज्ञान दीप से जग को सजाकर, जन जन का पुरुषार्थ जगाकर, प्रेम और निष्ठा से प्रेमी हर घर का अंधकार मिटाकर, अरुण गगन पर अपनी जीत का, अरुण गगन पर अपनी जीत का अटल ध्वजा फहराएंगे, मुसीबतों के सर को हम मसल मसल मुस्काएंगे, मुसीबतों के सर को हम मसल मसल मुस्काएंगे।
1: मैं अर्पिता ना कविता आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी वहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, सुबह और शाम के रंगे गगन को चूम कर, सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, हजार वेश धर के आए मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सकी चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिले नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियां की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल चलेंगे के साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, जमीन के पेट में पले अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराजिए, मुसीबतों के सर कुछ चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।
2: मेरा नाम भाव्या पांडे है और मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ, और मैं आज आपको राष्ट्रगीत सुनाने जा रही हूँ।

0: पेड़ लगाओ ऐसा, पेड़ लगाओ ऐसा जो हो जादू के जैसा, बिस्कुट के पत्ते हो जिसमें फल हो टॉफी जैसा, आइसक्रीम का रस हो जिसमें गोंद हो चुंगम जैसा, दही मक्खन बर्फी बन जाए, दूध बहे कुछ ऐसा, डाल पकड़कर अगर हिलाएं टप टप बरसे पैसा, पेड़ लगाओ ऐसा जो हो जादू के जैसा। गुड़ैया, रोज सवेरे आंगन मेरे एक गुड़ैया आती है, चहक चहक कर फुलक फुलक कर जमकर शोर मचाती है, सारे घर को जगा जगा कर अपनी शान दिखाती है, अम्मा दाना पानी देती खा पी कर उड़ जाती है, रोज सवेरे आंगन मेरे एक गुरैया आती है। दीदी मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ।
1: हाँ अमन सुनाइए।
0: सब्र का फल। एक बार एक देश में अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। नगर में एक धनी दयालु पुरुष था, उन्होंने सब छोटे बच्चों को प्रतिदिन एक रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब बच्चे इकट्ठे हुए, उन्हें रोटियां बंटने लगी। रोटियां छोटी बड़ी थी, सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। केवल एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी, वह सबसे अंत में आगे बढ़ी। टोकरे में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी, उसने उसे प्रसन्नता से ले लिया और वह घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियाँ बाँटी गई, उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की ने जब घर लौटकर रोटी तोड़ी तो रोटी में से सोने की एक मुहर निकली। उसकी माता ने कहा कि मुहर उस धनी को दे आओ। लड़की दौड़ी दौड़ी धनी के पास गई। धनी ने उसे देखकर पूछा, तुम क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मेरी रोटी में यह मुहर निकली है, आटे में गिर गई होगी, देने आई हूँ, आप अपनी मुहर ले ले। धनी बहुत प्रसन्न हुआ, उसने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया और उसकी माता के लिए मासिक वेतन निश्चित कर दिया। बड़ी होने पर वही लड़की उस धनी की उत्तराधिकारिणी बनी। दो चूहे। खेत में चुन्नू चूहा मजे से अनाज खा रहा था, उसने एक चूहे को अपनी ओर आते देखा। पास आने पर चुन्नू ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? चूहे ने कहा, मेरा नाम मुन्नू है, मैं शहर से यहाँ घूमने आया हूँ। चुन्नू ने कहा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। चुन्नू मुन्नू ने एक साथ कई दिन बिताई। फिर एक दिन चुन्नू शहर लौट गया। कुछ दिनों बाद चुन्नू को शहर देखने और मुन्नू से मिलने की इच्छा हुई। वह एक दिन शहर पहुंच गया। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने ढेर सारी बातें की। फिर भोजन का समय हुआ। मुन्नू घर में बने एक बिल में रहता था, उसने चुन्नू से कहा, बाहर निकलो मित्र और मेज के नीचे जो भोजन गिरा है उसका आनंद लो, यह गांव के भोजन से बहुत अधिक स्वादिष्ट है। दोनों बिल से निकलकर

0: भोजन करने लगे। घर में मौजूद बिल्ली ने उन्हें देखा तो खाने के लिए दौड़ी। उसे देख मुन्नू चिल्लाया, चुन्नू तुरंत बिल में लौटो, बिल्ली आ रही है। चुन्नू लड़खड़ाते हुए बिल में पहुंचा। वह बहुत डर गया। थोड़ी देर बाद दोनों घूमने निकले। घर से बाहर निकलते ही दरवाजे पर खड़े कुत्ते ने उन्हें देख लिया। दोनों फिर दौड़कर बिल में छुप गए। चुन्नू ने मुन्नू से कहा, मित्र गांव में भले ही इतना स्वादिष्ट भोजन ना हो, लेकिन वहां मेरे जीवन का कोई खतरा नहीं है। मुझे अपने गांव लौटने का आज्ञा दो। चुन्नू गांव लौट आया और फिर कभी शहर नहीं गया।
1: धन्यवाद बच्चों, आपकी प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब थी। बच्चों की प्रस्तुति के बाद आइए सुनते हैं ज्ञान विज्ञान से जुड़ी बातें। आपको पता है बच्चों, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन महासागरों के प्लवक, समुद्री शैवाल और अन्य प्रकाश संश्लेषक जीवों द्वारा उत्पादित की जाती है। मानव शरीर की जटिलता ऐसी है कि एक वयस्क इंसान के शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएँ होती हैं। मानव मस्तिष्क से प्रेरित कृत्रिम न्यूरॉन के विकास ने न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है। ब्रह्मांड की उम्र के बारे में खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। बच्चों, पिछले 2 दशकों में भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण पृथ्वी के घूर्णन की धुरी लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुक गई है। एआई और रोबोटिक्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स तकनीकें अब मानव जीवन के हर क्षेत्र जैसे कृषि, संचार और चिकित्सा में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। भारत में प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने के प्रयास युवा पीढ़ी को हमारी वैज्ञानिक विरासत से परिचित कराते हैं। बच्चों, अभी आप सुन रहे थे ज्ञान विज्ञान से जुड़ी बातें। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दीदी भला आँख में चोली, दाई आँख बंद के बाई आँख खोली।
1: किसने?
2: मैंने?
1: नहीं तो?

0: नया जोश, नया उमंग और ढेर सारे नए इरादों के साथ एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ बाल किलकारी के नए एपिसोड में। ढेर सारी मौज मस्ती और धमा चौकरी से आप सभी श्रोताओं के दिलों पर राज करने के लिए हम हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं। आप सभी श्रोताओं के दिलों पर राज करने के लिए हम हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं।
1: सुप्रभात बाल श्रोता सब, अपनों सभे बाल श्रोता के बहुते बहुते स्वागत छे अपनों के इस सुंदर आरु अनोखा सा रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी के अंक 300 मा। अपनों सभे बाल मित्र के तहे दिल से स्वागत करे छी। आरु आय के ही खास कार्यक्रम के साथ हम छकिए अपना सभ्य के प्यारी रेडियो दीदी कंचन। आरु अपनों के साथ है आज के कार्यक्रम का आरु खास बनावे ला अपनों के रेडियो दोस्त
0: ऋषि। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी बाल श्रोता स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और हर रविवार की तरह आज भी इस खास कार्यक्रम को सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आपका ये सब यही खत्म होता है, तो लीजिए हाजिर है हम सबका प्यारा कार्यक्रम
2: बाल किलकारी,
0: जिसके धुन से ही आपके मन में ढेर सारे नए ख्वाब, जोश, उमंग और मुस्कान आ जाती है और कुछ सीखने जानने का एक नया उत्साह जग जाता है। और हाँ दोस्तों, आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे इस प्यारे से कार्यक्रम का अंक 300 हो गया है और ये अंक हमने आपकी मदद से इन 6 सालों में हासिल किया है।
1: अपनो बाल श्रोता के प्यार आरु स्नेह के साथ किलकारी परिवार ने भी ई अंक का हासिल करे में खूब मदद कर को छे आरु साथ दिल को छे। आरु अपनों के ये रेडियो टीम, अपनों के किलकारी परिवार, अपनों के प्यारा प्यारा बाल श्रोता सबका हमरा सबके ओर से

0: खूब खूब बधाई छे।
1: हाँ दीदी, बाल श्रोता, हमारी रेडियो टीम और किलकारी परिवार को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और उन्हें खूब सारा धन्यवाद। आप सभी के मदद से हमने ये मुकाम हासिल किया है। इन सभी के सहयोग से हम अपने कार्यक्रम को संचालित कर पाते हैं। आप लोग ऐसे ही हमें और हमारे कार्यक्रम को सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए और सुनते रहिए रेडियो कार्यक्रम
0: बाल किलकारी।
2: हाँ ऋषि, तो चल अब जल्दी जल्दी कार्यक्रम के शुरुआत करे छी। आरु आज के ही खास अंक में जाने छे कि आज रो कार्यक्रम में की खास आरु खूबे मजेदार होए वाला छे।
1: हाँ दीदी, दुनिया में वैसे तो बहुत से रिश्ते होते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जिसे ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। वो रिश्ता जिसके होने से घर बनता है और जिसकी एक मुस्कुराहट हमारी सारी थकान मिटा देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ के बारे में।
2: हाँ ऋषि, आज के दिन माय सबला बहुत खास छे। कहना कि आज छे के मदर्स डे। ई उ दिन छे जे उ निस्वार्थ ममता के समर्पित छे, जेना हमरा सभे के चलना सिखलकै, बोले ला सिखलकै, आरो सबसे बड़का काम एगो अच्छा इंसान बनेलकै। कही छे कि भगवान हर जगह नैन रह सके छे, एकरे ला भगवान न माय का बनेलकै। माय शब्द त सुने में बहुते छोटा लगे छे, लेकिन यही शब्दों मत पूरा दुनिया समझलो छे। माय खाली एगो जन्म दे वाली स्त्री नहीं छे, बल्कि उ जीवन के पहला गुरु होय छे आरो सबसे अच्छा दोस्त भी होय छे।
1: हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को हम मातृ दिवस मनाते हैं, ताकि हम माँ के उस निस्वार्थ प्रेम और बलिदान के प्रति आभार जता सके। तो आइए इसी मौके पर आज बाल किलकारी के इसी विशेष अंक में हम लाए हैं ढेरों कहानियाँ, प्यारी कविताएं और बच्चों की वो बातें जो आपकी आंखों में खुशी के आंसू ले आएंगी।
2: हाँ साथी सब, तो चलो अब कार्यक्रम में आज के ही खास दिवस पर सुने छिए सुंदर सुंदर गीत का। गीत जे की ममता सभी भरलो होते, जेकरो छाया हर बच्चा तक जेते। तो चलो सुने छिए मातृ दिवस पर ई गीत का।

0: बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। आशा है कि श्रोताओं को भी पसंद आई होगी। दोस्तों, माँ ईश्वर का सबसे अनमोल वरदान है। हमारी सफलता के पीछे माँ की दुआओं का सबसे बड़ा हाथ होता है। इस मातृ दिवस पर आइए हम यह संकल्प लें कि हम अपनी माँ का हमेशा सम्मान करेंगे और उन्हें कभी उदास नहीं होने देंगे। दोस्तों, मैंने चलती फिरती आँखों से अजा देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी, पर माँ देखी है।
1: हाँ ऋषि, एकदम में सही बात कहले। हम सब जन्नत ने देखलो छे, लेकिन जन्नत के रूप में अपनो माय के उकर्तव्य, उम्ममता, उछाया देखलो छे। बहुत सुंदर छेलो ई तोरा लाइन। आशा करे छे कि श्रोता सबका भी पसंद अलो होते। तो चलो अब कार्यक्रम में हम सब माय सब ला अब कविता, कहानी आरु बाल श्रोता सबके रचना सबके सुने छे। आरु बाल श्रोता सब आए अपनो ई कार्यक्रम के साथ है, अपनो मम्मी का भी ई कार्यक्रम का जरूर सुनाबो। कहना कि आए के ई कार्यक्रम खास माय ल ही बनलो छे। तो चलो सुनाबो आरो खूबे सुनो आए के ई कविता, कहानी, किस्सा सब। तो चलो सुनै छिए।

0: ई खास कविता कहानी सब।
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा कुमारी है। मैं आज आप लोगों को मातृ दिवस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। मातृ दिवस हर साल माँ को सम्मान और आदर देने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसे हर साल मई महीने के दूसरे रविवार के दिन मनाया जाता है। एक माँ बच्चे के लिए मूल्यवान उपहार है जिसे भगवान ने हमें सभी को दिया है। मदर्स डे पर माँ घरों में विशेष पकवान बनाती है। बच्चे अपने माँ को कार्ड, केक, फूल, चॉकलेट व अन्य उपहार देते हैं। माताएं भी अपने बच्चों को उपहार व ढेर सारा प्यार देती है। मदर्स डे के दिन सभी बच्चों को अपनी भावनाओं को माँ के सामने व्यक्त करने करके उनके प्यार दुलार के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। मैं आज आप लोगों को मातृ दिवस पे शायरी सुनाऊंगी। मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है, मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है, सब मेरी माँ की बदौलत है। मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है, सब मेरी माँ की बदौलत है। ऐ मेरे भगवान, और क्या देगा तू मुझे। ऐ मेरे भगवान, और क्या देगा तू मुझे। मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी पर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल के भी न रुलाना माँ को, कभी भूल के भी न रुलाना माँ को। एक छोटी सी गलती पूरा हर्ष हिला देगी। मंजिल दूर है और सफ़र बहुत है, मंजिल दूर है और सफ़र बहुत है, मंजिल दूर है और सफ़र बहुत है। छोटी सी जिंदगी, फिक्र बहुत है। मार डालती ये दुनिया कब की हमें, मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत। धन्यवाद।
2: मेरा नाम सृष्टि राज है। मैं आज आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है तेरी ममता की छांव। दिनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छांवों में ना जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, एक मैं ही हूँ हर जगह प्यार ये तेरा कैसा है। सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊं बड़ा माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। कैसा था नन्हा बचपन वो माँ की गोद सुहाती थी, देख देख के बच्चों को वो फूले नहीं समाती थी। जरा से ठोकर लग जाए तो माँ दौड़ी हुई आती है, जख्मों पर जब दवा लगाती आंसू अपने छुपाती है। जब भी कोई जिद करे तो प्यार से वह समझाती थी, जब जब बच्चे रूठे उससे माँ उन्हें मनाती थी। खेल खेलते जब भी कोई वह भी बच्चे बन जाती थी, सवाल अगर कोई ना आता टीचर बन के पढ़ाती थी। सबसे आगे रहे हमेशा आज सदा रही लगाती थी, तारीफ अगर कोई भी करता गर्व से वह इतराती थी। होते अगर जरा सा उदास हम दोस्त तुरंत बन जाती थी, हंसते रोते भी था बचपन माँ ही तो बस साथी थी। माँ के मन को समझ न पाए हम बच्चों की नादानी थी, जीती थी बच्चों के खातिर माँ की यही कहानी थी, माँ की यही कहानी थी। हैप्पी मदर्स डे।
3: मेरा नाम दिव्यांशु कुमार है और मैं आपको आज माँ पे एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मेरे लिए तो तेरा प्यार ही काफ़ी है, मेरे लिए तो तेरा इकरार ही काफ़ी है, मेरे कानों के लिए तेरी पायल की झनकार ही काफ़ी है, हर दिन मेरी आंखों के लिए तेरा दीदार ही काफ़ी है, मेरे लिए तो तेरा प्यार ही काफ़ी है। मेरे दिल को धड़कने के लिए तेरे दिल तक जाए वो आवाज़ ही काफ़ी है, मैं खुश हूँ इस बात से ही जो तूने किया इजहार ही काफ़ी है, मेरे लिए तेरा प्यार ही काफ़ी है। दूरियां भले ही रहे हमारे बीच, हमारे रिश्ते में प्यार ही काफ़ी है। जन्मों जन्म हम साथ रहे ना रहे, इस जन्म में हम दोनों में कोई दरार ना आए, मेरे लिए तेरा प्यार ही काफ़ी है।
4: वाह, कविताओं और गीतों ने तो मन ही मोह लिया। वाकई काफी सुंदर सुंदर कविता थी और बहुत ही खुशी मिली कविताओं को सुनकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने

0: बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति दी है। तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, कल पूरे देश में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर उनकी 165वीं जन्म वर्ष गांठ मनाई गई, जिसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इसी 25वें बैसाख के रूप में मनाया जाता है। तो आइए कार्यक्रम में उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कुछ खास बातों को जानते हैं।
1: हाँ ऋषि, कल पूरा देश में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के जन्म वर्षगांठ का मनेलो गेले। भारतीय साहित्य आरु संस्कृति के आकाश में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एगो ऐसनो महान व्यक्ति छले जेकरो चमक न केवल भारत तक छले बल्कि पूरा विश्व में भी अपनो चमक से अलौकित व्यक्ति छले। साहित्य के कोनो ही ऐसनो कोना होते जे की गुरुदेव के लेखनी से नाय भरलो पुरलो छे। उ केवल एगो कवि नहीं छले बल्कि एगो दार्शनिक, संगीतकार, चित्रकार आरु शिक्षाविद भी छले।
0: हाँ दीदी, रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे महान उपलब्धियों में से एक उनकी कृति गीतांजलि है। इसी काव्य संग्रह के लिए उन्हें 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार में से सम्मानित किया गया था। वो यह सम्मान पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पण और मानवता के सूक्ष्म भावों का अद्भुत संगम मिलता है।
1: आरु एकरे साथ साथ गुरुदेव रविंद्रनाथ जी ने भारत के अपनो देश के राष्ट्रगान आरु साथे में अपनो पड़ोसी देश बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान अमार सोना बांग्ला ई सब रचना भी गुरुदेव के ही देन छके।
0: हाँ दीदी, रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें नमन करना और वास्तव में उनकी विचारधारा और उनके साहित्य को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना है। तो आइए अब कार्यक्रम में बंगला का ये प्रसिद्ध गीत एकला चलो रे, इस सुंदर से बंगला गीत को सुनते हैं। तो आइए इस गीत को सुनते हैं।

0: ई बांग्ला गीत त बहुते सुंदर छले। आशा करे छे कि श्रोता सबके खूबे पसंद एलो होते ई गीत। तो चलो अब कार्यक्रम में आगु बढ़े छे आरु बुलाए छे अपनो नटखट शैतान दिमाग वाला नंदू भैया और ओकरो प्यारा बंधु का। तो चलो सुने छे नंदू की नादानी में खूब सुंदर सुंदर नटखट नंदू भैया का।
1: क्या लो बंधु कतिल तो कहने रहे थे?
2: हमरा मम्मी ने खूब मारल के आज घरों में।
1: कहना मारल कौरा
2: की बताओ नंदू भैया। मम्मी बोले के कुछ कि दूध देखिए उदिया ना जाए। हम देखते देखते देखते देखते दूध उदिया के ले हम कुछ ना कर पर लिए। हम मम्मी अला उन्ना से एक नाम जल का कल जड़ी में। तोरा एक को काम देला चलिया और वो काम ना हो जो यही बोल लगे हमरा मम्मी ने।
1: अरे
2: क्यों ला नंदू भैया तो कतिल करे जो?
1: अरे हमरो भी हाल वही छे रे। पता छे की होलो बता चू। अम्मा बोलिए मम्मी का कि हमरा फोन दिला दे हम ऑनलाइन क्लास करबो। बोले लो कि हाँ हाँ तो पारा तो अच्छे ना तोरा कैसे हम फोन दिला दो। यही कारण आज हम खूबे उदास छे।
2: अच्छा तो आइनो आलो न तोरा साथ आज रो दिने बेकार छे नंदू भैया। हमरो घर मम्मी हमरा दिस कहना प्यार करे छे।
1: पता न बंधु कहना मम्मी हमरा सब पर हर टाइम गुस्सैलो रहे छे। हम सब पर ये तब भी गुस्सा करे छे ना पर ये तब भी गुस्सा करे छे।
2: चला नंदू भैया ये दिन तो ऐसे ना बिता मम्मी रो मार मार खाएगा। हाँ चलो घर जाची अब चलो अगले दिन।
1: बंधु अब बंधु सुनने आज तो हम इतना खुश क्यों नहीं की बताइयो। कल हम मम्मी से मांगलिया नहीं मोबाइल तो मम्मी ने पता था की कर को चला।
2: की कर लगो चला?
1: नयका टीवी खरीद कर लगे हमरो घरों में कि हम ओकरा में अच्छा अच्छा कार्टून देखिए।
2: अरे वाह नंदू भैया तोरा तो किस्मत ने चमकी गेला। हमरो साथ भी कल ऐसने कुछ होलो चले।
1: अच्छा बंधु की होलो चलो?
2: कल रात का जाना छो हमरो तबीयत बहुत खराब हो गलो चले। आरु जब हम आँख खोल लिए ना सुती का तो हमरो बगल में मम्मी बैठलो चले जे की हमरो ठंडा पानी के पट्टी बदली रहलो चले। आरु ई देखी का हम ई सोचलिए कि हमरो मम्मी हमरा से कितना प्यार करे छे। उ तो झूठे ला हमरा मम्मी उ टाइम डांटी देलो छले एकरे ला हम काना लगलो छलिए। हमरा सबके मम्मी हमरा से बहुत प्यार करे छे नंदू भैया।
1: हाँ बंधु आज तो सही बोलले। आज हमरा सबका पता चली गेले कि अपना दोनों के मम्मी और सबे के मम्मी सबके प्यार करे छे।
3: आप सभी श्रोताओं को हैप्पी मदर्स डे।
0: आशा करे छे कि श्रोता सबका पसंद आइलो होते।
4: आप सभी श्रोताओं को हैप्पी मदर्स डे।
0: तो साथी सब एकरे साथ अब कार्यक्रम यही समाप्त हो छे। आशा करे छे कि आज के कार्यक्रम में खूब मन लगलो होते आरो खूबे मौज मस्ती के साथ अपनों के इस सुंदर कार्यक्रम का सुनलो होवो। तो अपनों

0: ई कार्यक्रम कैसनो लगले हमरा के जरूरे बतइयो। आशा करे छिए मजा त अइले होते। त साथी सब अपनो के प्यारा प्यारा मैसेज हमरा के जरूरे भेजो। उम्मीद करे छिए कि सभे न अपनो के प्यार देते, अपनो के मैसेज भेजते।
1: तो साथियों आप अपना कीमती मैसेजेस हमें जरूर भेजें, क्योंकि हमें आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का बेसब्री से इंतजार रहता है और आपके मैसेजेस को पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो जरूर आप अपना मैसेजेस भेजें। आप अपना मैसेजेस हमारे मोबाइल नंबर के जरिए भेज सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7542029695। तो अपना मैसेज हमें याद से भेजें।
0: तो अब अपनो रेडियो दोस्त कंचन
1: और अपने रेडियो दोस्त ऋषि को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी जोश और मुस्कान के साथ आपके लिए नए एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। बाय।

0: बच्चों अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। इसके साथ ही बच्चों समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखें। हमारा पता है बाल मंजूषा अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए अपनी दीदी मुनमुन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
1: आप सुन रहे थे बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल मंजूषा और साथ ही प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। बाल मंजूषा की प्रस्तुतकर्ता थी श्री पार्वती के। इस कार्यक्रम का प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रस्तुत है लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम लोकगीत। कलाकार हैं मिथिलेश महराना। कार्यक्रम के आरंभ में ये प्रस्तुत कर रहे हैं एक देवी गीत।

दुख सहती है लेकिन हमेशा बच्चों के लिए सुख की दुआ करती है। तेरी ममता के साए में फूलूं फलूं, थाम के तेरी उंगली मैं बढ़ता चलूं, आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए।

ये लोरी हमें माँ की याद दिलाती है, वो माँ जो भूखे रहकर भी हमें खाना खिलाती है। ज़रा सी चोट लगे तो वो आंसू बहा देती है, अपनी सुकून भरी गोद में हमको सुला देती है। करते हैं खफा हम जब तो चुटकी में भुला देती है, होते हैं खफा हम जब तो दुनिया भुला देती है। मत गुस्ताखी करना लोगों उस माँ से, मत गुस्ताखी करना लोगों उस माँ से, क्योंकि जब वो छोड़ के जाती है तो वापस नहीं आती है।

जिनकी माँ नहीं होती वो खाने के मेज पर रूठा नहीं करते, और अगर रूठे तो उन्हें कोई मनाता भी नहीं। जिनकी माँ नहीं होती उनको कोई नहीं बताता कि चांद पर चरखा काटने वाली बुढ़िया से उनका क्या रिश्ता है। जिनकी माँ नहीं होती घर से निकले तो ज़माने की धूप से बचने के लिए उन्हें दुआओं की छतरी दस्तयाब नहीं होती। जिनकी माँ नहीं होती उन्हें देर से घर आने पर दरवाज़ा खुला नहीं मिलता। ये माँ ही तो होती है जो रात भर उसका इंतज़ार करती है।

मेरे लिए तुम धर्म हो, ईमान हो, तुम इबादत हो मेरी, तुम ही चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। तकता हूँ मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नज़ारा हो मेरा, यूँ ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम, पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर छिन में तुम, मेरे लिए रिश्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम ही मेरी माँ, तुम ही मेरी भगवान, तुम ही मेरी दुनिया, तुम ही मेरी जन्नत। इस रिश्ते से बढ़कर क्या कोई दुनिया में रिश्ता है?

आज के गुलदस्ता कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गीतों को शामिल किया गया उनके नाम हैं संजोग, राजा और रंक, लाडला और करण अर्जुन।

आज के कार्यक्रम में जिन आवाज़ों को शामिल किया गया उनके नाम हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण, ज्योत्सना हर्दिकार, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथी।

गुलदस्ता कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। 12 बजे हैं, अब आप सुनिए कार्यक्रम विज्ञान वाणी। प्रस्तुत करता है सौरभ कुमार। इससे पहले ये संदेश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

श्रोताओ नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान वाणी में। कार्यक्रम के आज के अंक के साथ हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त पीयूष आनंद। श्रोताओ आप तो जानते ही हैं कि विज्ञान वाणी कार्यक्रम में हम बातें करते हैं विज्ञान के विभिन्न तकनीकों विभिन्न आविष्कारों के बारे में। विज्ञान जगत की हलचल पर आधारित हमारे कार्यक्रम का स्तंभ होता है विज्ञान समसामयिकी, प्रमुख वैज्ञानिकों के योगदान और उनके प्रेरणादायी जीवन के बारे में आपको बताने के लिए हमारा कार्यक्रम का स्तंभ होता है विज्ञान रत्न, और आप सभी के ज्ञान को परखने और आप श्रोताओं से जुड़ने का हमारा स्तंभ होता है माइंड टेस्ट। तो श्रोताओं इंतजार किस बात का, आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला। श्रोताओं विज्ञान जगत अपने वैज्ञानिकों के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। ये वैज्ञानिक जो नए नए प्रयोग नए आविष्कारों के द्वारा पूरी दुनिया को विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं उनके प्रेरणादायी जीवन को बताने का ही स्तंभ होता है विज्ञान रत्न। श्रोताओं विज्ञान रत्न में आज हम जानेंगे अमेरिकी रसायनज्ञ वैज्ञानिक पॉल क्रिश्चियन लाउटरबर्ग के बारे में। उनका जन्म 6 मई 1929 को हुआ था, जिन्होंने 2003 में पीटर मैंसफील्ड के साथ फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार साझा किया था उनके उस कार्य के लिए जिसने चुंबकीय अनुवाद इमेजिंग यानी MRI के विकास को संभव बनाया। श्रोताओं लाउटरबर्ग 1963 से 1985 तक स्टोनी बुक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, जहां उन्होंने MRI के विकास के लिए अपना शोध किया। 1985 में वे अपनी पत्नी जोन डॉसन के साथ अर्बाना सैम्पन स्थित इलिनोइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने और अर्बाना में अपनी मृत्यु तक 22 वर्षों तक वहां रहे। उन्होंने और डॉसन ने वहां बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस प्रयोगशाला BMRL की स्थापना की। उन्होंने स्नातक छात्रों के साथ शोध कार्य करना कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने रसायन विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। साथ ही बायो इंजीनियरिंग बायोफिजिक्स अर्बाना सैम्पन स्थित चिकित्सा महाविद्यालय और उन्नत अध्ययन केंद्र में कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में भी नियुक्तियां प्राप्त की। लॉटरबर्ग लक्जमबर्ग मूल के थे, सिडनी ओहियो में जन्मे और पले बढ़े लॉटरबर्ग ने सिडनी हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, जहां उनके सम्मान में रसायन विज्ञान भौतिकी और जीव विज्ञान का एक नया विंग समर्पित किया गया था। किशोरावस्था में ही उन्होंने माता पिता के घर के तहखाने में अपने खुद की प्रयोगशाला बनाई। स्कूल में उनके रसायन विज्ञान के शिक्षक समझते थे कि उन्हें स्वयं प्रयोग करना पसंद है, इसलिए शिक्षक ने उन्हें कक्षा के पीछे अपने स्वयं के प्रयोग करने की अनुमति दी। जब उन्हें 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में भर्ती किया गया तो उनके वरिष्ठों ने NMR मशीन पर काम करने के लिए समय दिया। सेना छोड़ने तक उन्होंने 4 वैज्ञानिक शोध प्रकाशित किए। लॉटरबर्ग MRI के विचार का श्रेय पिट्सबर्ग के उपनगरीय इलाके में स्थित ईटन पार्क बिग बाय रेस्टोरेंट्स में एक दिन विचार मंथन को देते हैं। MRI का पहला मॉडल उन्होंने एक मेज के नैपकिन पर उकेरा था, जब वे पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय और मेलन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च दोनों में छात्र और शोधकर्ता थे। 1970 के दशक में लाउटरबर्ग और मैंसफील्ड के विकास के बाद ही NMR का उपयोग शरीर की छवियां बनाने के लिए किया जा सका। जब लाउटरबर्ग ने अपनी खोजों पर आधारित शोध पत्र पहली बार नेचर पत्रिका को प्रस्तुत किया तो संपादकों ने उसे अस्वीकार कर दिया। लाउटरबर्ग ने हार नहीं मानी और संपादकों ने इसे दोबारा समीक्षा करने का अनुरोध किया। अब इसे नेचर का एक उत्कृष्ट शोध पत्र माना जाता है। नेचर के संपादकों ने बताया कि शोध पत्र के साथ

दी गई तस्वीरें बहुत धुंधली थी। लाउटरबर ने प्रारंभिक अस्वीकृति के बारे में कहा, पिछले 50 वर्षों में विज्ञान का पूरा इतिहास साइंस या नेचर द्वारा अस्वीकृत शोध पत्रों के संदर्भ में लिखा जा सकता है। लॉटरबर ने अपनी खोज का व्यवसायीकरण करने के लिए अपने काम से संबंधित पेटेंट दाखिला करने का असफल प्रयास किया। लॉटरबर को मैंसफील्ड के साथ 2003 की शरद ऋतु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अन्य सम्मान की बात करें तो अल्बर्ट लॉस्कर क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च पुरस्कार 1984, जनरल मोटर कैंसर रिसर्च फाउंडेशन पुरस्कार 1985, गार्डनर फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1985, राष्ट्रीय विज्ञान पदक 1987, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पदक 1988, बावर पुरस्कार फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ फिलाडेल्फिया द्वारा वे प्रथम प्राप्तकर्ता थे। 1993 में कार्नेगी मेलन डिक्सन विज्ञान पुरस्कार, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के समाज की सेवा में रसायन विज्ञान के लिए NSS पुरस्कार, NAS पुरस्कार, राष्ट्रीय आविष्कारक हॉल ऑफ फेम 2007 के बैच में भी वे रहे। क्षुद्र ग्रह 25598 पॉलो टर्बर, जिसकी खोज इतालवी सोकिया खगोलशास्त्री सिल्वानो कैसोली ने 2006 में की थी, का नाम उनके सम्मान में रखा गया। मानद उपाधियों की बात करें तो पिट्सबर्ग में कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय, बेल्जियम में लीज विश्वविद्यालय, पोलैंड के क्राकोव में निकोलस कोपरनिकस विद्यालय, ये सब उनकी मानद उपाधियां हैं। श्रोताओं, पॉल लॉटरबर्ग का मार्च 2007 में 77 वर्ष की आयु में इलिनोइस के अर्बाना स्थित उनके घर में गुर्दे की बीमारी से निधन हो गया। इलिनोइस विश्वविद्यालय के चांसलर रिचर्ड हर्मन ने कहा, पॉल का प्रभाव दुनिया भर में हर दिन महसूस किया जाता है, हर बार जब MRI किसी बेटी या बेटे, माँ या पिता की जान बचाती है। श्रोताओं, आज भले वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में अपने अतुलनीय योगदान के लिए पॉल लॉटरबर्ग हमेशा याद किए जाते रहेंगे। विज्ञानवाणी टीम की ओर से इस महान वैज्ञानिक को सादर नमन। श्रोताओं, विज्ञान रत्न के बाद अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ विज्ञान मंजूषा का। श्रोताओं, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है, जो देश की तकनीकी प्रगति का जश्न मनाता है। यह दिन उस तारीख को चिन्हित करता है जब भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग ने परमाणु हथियारों वाले अग्रणी देशों के समूह में प्रवेश करके अपने पहले स्वदेशी विमान की सफल उड़ान का संचालन करके और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण करके कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। जयाशतों, हम सभी इस बात से सहमत हैं कि तकनीकी प्रगति मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही है। इसने निश्चित रूप से हमारे जीवन को आसान, अधिक कुशल और अधिक उत्पादक बनाया है। हम इसके लिए तकनीक और विज्ञान के हमेशा आभारी हैं। 11 मई 1998 को देश ने ऑपरेशन शक्ति के तहत भारतीय सेना के पोखरण परीक्षण रेंज में 3 सफल परमाणु परीक्षण किए। 13 मई को दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 2 और परमाणु परीक्षण किए गए, जिससे भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों के विशिष्ट क्लब का आधिकारिक सदस्य बन गया। हालांकि भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की उपलब्धि यहीं समाप्त नहीं हुई। उसी दिन उन्होंने अपने पहले स्वदेशी विमान Hansa-3 का परीक्षण भी किया और त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दिवस यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 1999 को मनाया गया। तब से प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए और तकनीकी नवाचारों को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, विश्व की जनसंख्या अपने भोजन का 80% और ऑक्सीजन का 98% पौधों से प्राप्त करती है, जबकि प्रतिवर्ष 40% फसलों का नुकसान कीटों के कारण होता है। इसीलिए पौधों के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए, जो भूख मिटाने, गरीबी कम करने, जैव विविधता की रक्षा करने और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, हर साल 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। इसका उद्देश्य फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाना है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष की विरासत के रूप में मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा बढ़ावा दिया गया है। यह दिवस पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशकों का उपयोग और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने का भी आह्वान करता है। तो आइए हम सभी अपने फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के प्रति जागरूक होंगे और जो भी लोग कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक तरीके से कीटों और बीमारियों से फसलों को बचाने वाले तकनीकों का वो लाभ उठाएं और हम सभी इस बारे में जागरूक हों, यही हम संकल्प करते हैं। श्रोताओं, मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल देने वाला यह एक वार्षिक वैश्विक अभियान है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक जागरूकता अभियान है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है। इसका वैश्विक प्रभाव है और यह प्रवासी पक्षियों के सामने आने वाले खतरों, उनके पारिस्थितिकी महत्व और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक प्रभावी साधन है। इस वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया गया और इसके बाद 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। श्रोताओं, पक्षियों का प्रवास एक प्राकृतिक चमत्कार है। 2000 से अधिक प्रजातियां, जिसमें सभी ज्ञात पक्षी प्रजातियों का 20% प्रजनन और भोजन के लिए लंबी दूरी तय करती हैं। वे भोजन, प्रजनन और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए सर्वोत्तम पारिस्थितिक परिस्थितियों और आवासों की तलाश में

0: सैकड़ों हजारों किलोमीटर की उड़ान भरती हैं। जब प्रजनन स्थलों पर परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो वो बेहतर परिस्थितियों वाले क्षेत्रों की ओर उड़ान भरती हैं। प्रवास के अनेक तरीके हैं। अधिकांश पक्षी उत्तरी प्रजनन क्षेत्रों से दक्षिणी शीतकालीन क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। हालांकि कुछ पक्षी अफ्रीका के दक्षिणी भागों में प्रजनन करते हैं और सर्दियों में तटीय क्षेत्रों को हल्की जलवायु का आनंद लेने के लिए उत्तरी शीतकालीन क्षेत्रों की ओर क्षैतिज रूप से प्रवास करते हैं। अन्य पक्षी सर्दियों के महीनों में निचले इलाकों में रहते हैं और गर्मियों के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं। लंबी दूरी तय करने के कारण प्रवासी पक्षी विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और लोगों की आजीविका को सहारा देने में इनका योगदान रहता है। ये पक्षी न केवल उन कीटों और कीड़ों की संख्या को नियंत्रित करते हैं जो अन्यथा हमारे प्राकृतिक वातावरण और फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि इनमें से कई परागणकर्ता के रूप में भी काम करते हैं। बीजों और पोषक तत्वों को दुनिया भर में फैलाते हैं। वास्तव में सभी काष्ठ वृक्ष प्रजातियों के 90% से अधिक बीजों का प्रसार पक्षियों द्वारा ही होता है। श्रोताओं, प्रवास एक जोखिम भरी यात्रा है और इसमें अनेक प्रकार के खतरे शामिल होते हैं जो अक्सर मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं। जलवायु परिवर्तन, आवास का क्षरण और प्लास्टिक प्रदूषण पक्षियों के सामने आने वाले विविध खतरों में से कुछ हैं। प्रवासी पक्षी अपने वितरण क्षेत्र में स्थित विभिन्न स्थलों पर निर्भर होते हैं, इसीलिए शीतकालीन प्रवास और पड़ाव स्थलों के नष्ट होने से पक्षियों के जीवित रहने की संभावनाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। प्रवासी पक्षियों को फरवरी के अंत से मई के मध्य तक अपने शीतकालीन आवासों से लौटते हुए और अगस्त से नवंबर के आरंभ तक दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हुए देखा जा सकता है। विभिन्न संगठनों और कार्यक्रम के द्वारा भी प्रवासी पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है। लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन यानी साइट्स भी एक बहुपक्षीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और पक्षियों और पौधों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में न डाले। इसके अलावा IUCN विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण नेटवर्क है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि पर सम्मेलन यानी रामसर सम्मेलन भी स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर की गई कार्रवाइयों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमियों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करता है। श्रोताओं, प्रवासी पक्षियों के बारे में हमने आज जाना। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इसी सप्ताह पूरी दुनिया में मनाया गया, लेकिन संकट यह है कि लगातार प्रवासी पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। तो क्यों प्रवासी पक्षियों की संख्या घट रही है और इसके संरक्षण के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, इस विषय पर आइए जानते हैं विस्तार से एक पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता के माध्यम से। विषय है प्रवासी पक्षियों की घटती संख्या और भेंटवार्ताकार हैं राहुल रोहितासु और इनसे बातें कर रहे हैं सचिन कुमार।
1: श्रोताओं, हम अपने घर आंगन में पक्षियों को देखते हैं और खुश होते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि ये पक्षी अपना जीवन कैसे बिताते हैं और किन किन संकटों का इन्हें सामना करना पड़ता है? तो ऐसे पक्षी होते हैं जिन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं और काफी दूर दराज देशों से मीलों का सफर तय करके, काफी संकटों का सामना करके वो हमारे देश, हमारे शहर आते हैं और उनका हम यूं ही शिकार कर लेते हैं और मनोरंजन का साधन उन्हें बना लेते हैं। हमारा विषय है आज के कार्यक्रम का प्रवासी पक्षियों की घटती संख्या। जी हाँ, प्रवासी पक्षियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और ये बहुत चिंताजनक विषय है। और प्रवासी पक्षियों की संख्या क्यों घट रही है, किस प्रकार प्रवासी पक्षी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन तमाम बातों की जानकारियां लेने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पर्यावरणविद एवं युवा पक्षी वैज्ञानिक राहुल रोहिताश्व जी को। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद।
1: राहुल जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रवासी पक्षी हम किसे कहते हैं, क्या कैटेगरी होती है उन पक्षियों की जिन्हें हम प्रवासी पक्षी कह सकते हैं?
2: प्रवासी पक्षी एक्चुअली में ऐसे पक्षी होते हैं जो कि हमारे देश में दूर देशों से आते हैं। प्रवासी पक्षियों को इंग्लिश में माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेट्स जो लैटिन शब्द है उससे बना है और माइग्रेट्स का मतलब होता है बदलाव। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पक्षी दूसरे देश से आते हैं कुछ बदलाव के लिए, उन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो भारतीय आते हैं, ऐसे ये इनकी जो है ग्लोबल एक सर्कुलेशन है, जहाँ जहाँ ये प्रवास करते हैं जब जैसे इनकी जरूरत होती है। यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, ये प्रवासी पक्षी कुछ हाल फिलहाल के दिनों से भारत में नहीं आ रहे हैं, ये बहुत प्राचीन समय से हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में आ रहे हैं। जिसके उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूँ कि महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी इसकी वर्णन की है। जैसे कुछ उनके कुछ दोहा है, जैसे जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नबीना। इस दोहे में चातक जो है वो उसे इंग्लिश में कहते हैं पायट क्रेस्टेड कक्कू। ये पक्षी जो है ये बरसात का इंडिकेटर है, जब बरसात शुरू होने होती है तब ये पक्षी जो है प्रवास हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में करता है। जो एक दो और उदाहरण है, जैसे चक चकोर चातक सुक पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन, जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमी सुकृत सुहाए। इस दोहे में खंजन जो है, जिसे इंग्लिश में वैक्टिल कहते हैं, ये खासकर आपको सितंबर में देखने शुरू हो जाएंगे, जिसे गांव में जो इसे इंडिकेटर बर्ड्स भी कहते हैं। जब गांव वाले खंजन को देखते हैं तब उन्हें एहसास हो जाता है कि भाई अब जो है जाड़ा का समय आने वाला है, गर्मी बीतने वाली है, तो ये एक जो है एक इंडिकेटर का काम भी करते हैं प्रवासी पक्षी।
1: जी राहुल जी, एक और सवाल हमारे सामने आता है कि जैसा कि आपने बताया कि विदेशों से प्रवासी पक्षी आते हैं, काफी लंबा सफर करते हैं, तो इस दौरान उन्हें किन किन संकटों का सामना करना पड़ता है और कैसे करते हैं इतनी लंबी प्रवास यात्राएं?
2: जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, ये सवाल जो है प्राचीन समय से जो है वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था। एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक वे ऑफ रिसर्च है कि आखिर ये दूर देश के यात्री कैसे हमारे यहाँ आते हैं और क्यों आते हैं और कैसे ये संभव होता है जो है। तो अभी तक जो रिसर्च हुई है उसमें ये सामने आया है कि ये प्रवास के समय इनके शरीर के अंदर कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिनके कारण ये जो है उसे एक टर्म कहते हैं हाइपरफेजी, जिनमें यह बहुत सा जो है फूड जो है ये खाते हैं जो है। इससे क्या होता है, इनके शरीर में जो है फैट की एक लेयर जम जाती है, जिसके कारण जो है ये प्रवास करने में वो सारी एनर्जी जो है वहाँ से लेते हैं जो है। और मैं आपको बताऊँ कि ये प्रवास यात्राएँ जो है ये बहुत साइंटिफिक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सूर्य को देख के, कुछ तारों को देख के, कुछ हवाओं की दिशाओं को देख के, या फिर जो कुछ भौगोलिक उससे जो मदद लेके जो है ये प्रवास यात्राएं करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट कारण क्या है यह अभी तक हमें ज्ञात नहीं है। कुछ रिसर्च में कहते हैं कि इनके शरीर में मैग्नेटोजोम्स बैक्टीरिया होता है, जो कि अपने आप को जो है पृथ्वी के चुंबक से जो अलाइन कर लेता है, जिनके कारण ये जो है दिशाओं का निर्धारण करते हैं। देखिए, इसमें जो है कारण तो बहुत है, लेकिन एग्जैक्ट कारण क्या है ये अभी तक जो अननोन है साइंस के लिए कि भाई इतनी प्रवास यात्रा कैसे करते हैं। और खासकर ये जो है कुछ है इनमें संकट भी हैं, जैसे कुछ तूफान आ गया, या फिर आंधी आ गई, या फिर जो है कुछ जो है प्लेन से टकरा गए, कुछ भवनों से टकरा गए, कहीं कुछ है, कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, तो ऐसे में जो है इन्हें परेशानी तो होती है। ये तो चलिए भौगोलिक कारण है, इन्हें हम रोक नहीं सकते, लेकिन जिन्हें हम रोक सकते हैं, जिन्हें हम जानते हैं इनके शिकार होता है, इतना ज़्यादा शिकार होता है, तो ये बहुत ही ख़राब बात है। ये बहुत ही जो चिंताजनक बात है कि ये इतनी दूरी से ये जो है हमारे यहाँ आते हैं और ये जो इतना इन्हें मारा जाता है, तो इसे बंद करना होगा, इन्हें संरक्षण देना होगा।
1: तो राहुल जी, यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि वह कौन सा मौसम होता है
2: जी
1: जिस समय ज्यादातर प्रवासी पक्षी भारत आते हैं और कहाँ कहाँ आते हैं?
2: ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपको बता दूं कि भारत में ये प्रवासी पक्षी सितंबर से लेकर मार्च तक जो है देखने को मिलते हैं। एक्चुअली ये प्रवासी पक्षी जो है ये सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न अफ्रीका, वहाँ से ये माइग्रेट होते हैं। जैसे आपका पंजाब का आपका हरी के लेक हो गया, फिर आपका चंडीगढ़ का सुखना लेक हो गया, कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर हो गया, गुजरात का नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, बिहार में कांवर झील, विक्रमशिला डॉल्फिन लेक सेंचुरी, और चिल्का झील, लेक पुलिकेट तमिलनाडु में, तो ऐसे ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ भारत में जहाँ ये देखने को मिलते हैं।
1: जी राहुल जी, ये तो बात हुई पूरे भारत देश की, कहाँ कहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं।
2: जी,
1: हम भागलपुर तथा इसके आसपास की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं या कहाँ कहाँ हमें प्रवासी पक्षी देखने को मिल सकते हैं और वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है?
2: जी, यदि आप भागलपुर पर दृष्टिकोण करें तो भागलपुर में ऐसे बहुत से जगह है जहाँ ये प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं। जैसे आपका NH-31 में भागलपुर नगछिया रोड के बीच में जगतपुर जगह है, वहाँ जगतपुर झील में जो है ये आपको विंटर सीजन में जो है बहुत आयत में देखने को मिलेंगे, बहुत स्पीसीज आपको वहाँ देखने को मिलेंगे जहाँ ये प्रफुल्लित होते हैं, जहाँ ये अपना विंटर यहाँ ये बिताते हैं, ये जो है जो कीट पतंगे खाकर अपने को सर्वाइव करते हैं। फिर आपका दोगच्छी धार है, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपकी जो है विक्रमशिला गैंगटी डॉल्फिन सेंचुरी, ये सबसे बड़ी जगह है प्रवासी पक्षियों की। यहाँ आप यदि सैर करने जाते हैं तो आपके बहुत से स्पीसीज वहाँ आपको मिल जाएंगे। जो इनकी स्थिति अभी जो है वर्तमान में पहले से कुछ कम हुई है, चूँकि इनकी जो है अभी जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतनी वनों की कटाई हो रही है, इतनी पोचिंग हो रही है, तो ये पहले जितने आते थे अब धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती हो रही है। और खासकर जो स्पीसीज भी पहले जो आती थी उनकी स्पीसीज भी जो है वो घट रही हैं। पहले जितनी इनकी जो है वो संख्या थी और स्पीसीज थी, अब वो उतनी देखने को नहीं मिल रही हैं। हालांकि वो आ रही हैं, लेकिन वो स्थिति बहुत ही चिंताजनक है आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम चर्चा करें तो।
1: जी, चिंताजनक स्थिति पर ही हम अगर चर्चा करें, क्योंकि हमारा पर्यावरण संरक्षण का हमारा ये कार्यक्रम है और उसमें आज हमने जो विषय रखा है कि प्रवासी पक्षियों की घटती संख्या, तो हम आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे कि प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी क्यों आई है और किस प्रकार ये पर्यावरण संकट की ओर इंगित करता है।
2: जी, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये जो है प्रवास जो करते हैं सेंट्रल एशिया से या फिर साइबेरिया से, तो उनकी एक रूट होती है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये हमारे देश में आते हैं। तो बीच में जो है इनके बहुत ही जो है बहुतायत में किलिंग होती है उन सब देशों में, जो है इन्हें मारा जाता है, इनको जो खाया जाता है। तो एक एक आप कह सकते हैं कि जो एक शौक के तौर पर या फिर जो है खाने के तौर पर इनको मारा जाता है। खासकर यदि हम भारतीय उपमहाद्वीप में बात करें तो यहाँ भी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, और कमोबेश यही स्थिति है कि इन्हें मारा जा रहा है इनके मीट के लिए, इनको ऊँचे दामों में बेचा जा रहा है। आप जो है विंटर सीजन में आप देख सकते हैं रोड किनारे लोग जो है इसे बेचते हैं, क्योंकि बहुत ही चिंताजनक है। आखिर ये हमारे मेहमान हैं, ये हमारे यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं, ये हमारे हमें प्रफुल्लित करने आते हैं, और यदि हम इन्हें मारें तो ये बहुत ही विकट स्थिति है। और एक बात यह है कि ये पर्यावरण के इंडिकेटर हैं, तो गांव वाले इनको देखकर जो है मौसम का अनुमान लगाते हैं, ये पर्यावरण के मित्र हैं, ये किसान के मित्र हैं, ये कीट पतंगों को खाकर सरोवर को, तालाब को और खेतों को स्वच्छ रखते हैं, लेकिन हम इन्हें मार देते हैं। तो ये जो है बहुत ही विकट स्थिति है, और इसमें एक चेंज होनी चाहिए लोगों के मेंटेलिटी में, उनके जनमानस में ये जाने चाहिए कि भाई ये हमारे मेहमान हैं, और हमारा भारतीय संस्कृति भी रहा है अतिथि देवो भव, तो हमें जो है इनका संरक्षण और संवर्धन करने में पुरजोर योगदान देना चाहिए।
1: जी, आपने सामान्य जनमानस के मन में और उनके व्यवहार में एक परिवर्तन की बात की है, जो कि प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सामान्य जनमानस इसके संरक्षण में कैसे योगदान दे सकते हैं।
2: भारतवर्ष के राजस्थान एक स्टेट है, वहाँ जोधपुर के नज़दीक खींचन एक गाँव है, वहाँ जो है पिछले कुछ सालों में डोमेसिल क्रेन जो कि प्रवासी पक्षी है बहुतायत में आ रहे हैं। पिछले बार का रिकॉर्ड है कि लगभग 20,000 डोमेसिल क्रेन वहाँ आए, और आप आश्चर्यचकित करें कि लोग जो है वहाँ समान गांव वाले उन्होंने जो है एक समिति बनाई है, और उस समिति के द्वारा वो उन्हें अनाज देते हैं, जिन कारण बहुत अट्रैक्ट होते हैं गाँव में जो है, वो उन्हें ना कोई मारता है ना कोई इनको नुकसान पहुँचाता है, बल्कि वो तो कहते हैं कि ये हमारे अतिथि हैं, इनका संरक्षण करना हमारा धर्म है। तो ये आप देखिए कितनी बड़ी बात है, एक सामान्य लोग जो है इसके संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं, तो ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इनका संरक्षण करें। आप जो है जहाँ भी इन जो है ये रहते हैं वहाँ आप उनको जो एक सुरक्षा मुहैया कराएं।
1: जी, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, और इससे हमें भी प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हम भी अपने क्षेत्र में जो भी प्रवासी पक्षियों का बसेरा जहां भी होता है उसे संरक्षित करें और अपना योगदान दें, ताकि वो बहुतायत की संख्या में हर एक वर्ष आते रहें। कभी कभी ठोस कदम उठाने की भी जरूरत होती है, तो इनके संरक्षण में क्या क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए?
2: देखिए, इनके संरक्षण में जो है सबसे पहले आपको अपनी मेंटेलिटी बदलनी होगी कि भाई ये हमारे अतिथि हैं, ये हमारे मित्र हैं, तो इनके संरक्षण देना हमारा मूल कर्तव्य है, हमारा मूल धर्म है। यदि आपको कहीं भी आपको लगता है कि इन्हें ये कहीं नुकसान पहुंच रहा है, तो आप जो है लोकल न्यूज़पेपर में आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं, आप लोकल मैगजीन्स में जो है इसे जो रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ यहाँ ऐसा हो रहा है, इसे बंद कर देना चाहिए।
1: जी, निश्चित रूप से राहुल जी, हमने जनमानस की बात की और व्यक्तिगत रूप से भी क्या करना चाहिए इस पर भी बात की। अब सरकार की अगर हम बात करें तो क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए?
2: देखिए, जो है सरकार की तरफ से सरकार ने वन विभाग बनाया इसलिए ताकि वो जो है जो जंगली जानवर और पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन में अपना योगदान दे सकते हैं। सरकार जो है अपने स्तर पर अच्छी कोशिश कर रही है और करनी भी चाहिए। लोगों ने जो अब सरकार ने देखिए जो है नोटिफाइड वेटलैंड उसे जो है घोषित कर दिया है, ताकि वहाँ पर जो है वो जो है वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ सर्वाइव कर सके जो है। तो ये सरकारी तंत्र तो अपने काम कर ही रही है, लेकिन हमारी भी ये जो है दायित्व बनती है कि हम उन्हें जो है बूस्टअप करते रहें, ताकि वो जो है जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो है वो और अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं।
1: जी, सरकार के प्रयास तभी सफल होंगे जब हम जनमानस मिलकर खुद आगे बढ़कर आगे आए, और प्रवासी पक्षियों को, जैसा कि आपने कहा, ये हमारे मेहमान हैं और हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव, तो उन मेहमानों का संरक्षण हो और फिर से वो लौटकर इस धरती पर आए और इस धरती की शोभा बढ़ाए। तो राहुल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी कि प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, किन्हें हम प्रवासी पक्षी कह सकते हैं, और किस प्रकार ये हमारे लिए सिर्फ शोभा की चीज ही नहीं है, हमारे पर्यावरण के लिए भी एक इंडिकेटर है, एक सूचक है। पर्यावरण सब सही है,
2: घटक है।
1: जी, घटक तो है ही। पर्यावरण अगर सही है हमारा तो प्रवासी पक्षी आएंगे, अगर पर्यावरण हमारा सही नहीं है तो प्रवासी पक्षी नहीं आएंगे, और इससे हमें एक सूचना भी मिलती है।
2: यहाँ मैं श्रोताओं को एक सूचना देना चाहता हूँ कि जो है हर वर्ष मई के सेकेंड वीक में वर्ल्ड माइग्रेटरी डे बनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस ने ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए इसे घोषित किया हुआ है। इसमें जो है पूरे विश्व में जो है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए जो है कई अभियान चलाए जाते हैं। कोई बहुत से लोकल एनजीओ और सरकारी तंत्रों द्वारा जो है इनके संरक्षण के लिए जो है कैंपेन की जाती है, जो है बर्ड फेस्टिवल आयोजित की जाती है, सेमिनार आयोजित की जाती है।

0: वाइल्ड लाइफ फिल्म्स दिखाए जाते हैं, ताकि जो है लोग इनके बारे में जानें, इनके उपयोग के बारे में जानें, और प्रकृति में इनके क्या रोल है और ये किस तरह हमारे लिए उपयोगी हैं, इस बारे में जनमानस में एक पॉजिटिव थिंकिंग आए, इसके लिए सरकार जो है ये हर साल आयोजित, भारत सरकार भी इसमें आयोजित करती है, उनका भी खासा योगदान है। अतः मैं श्रोताओं से ये अपील करता हूँ कि इसमें जो है अपना योगदान दें।
1: जी, निश्चित रूप से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको भी काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी कि प्रवासी पक्षियों का संरक्षण क्यों करना चाहिए और किस प्रकार वे अपने ज़रूरत के लिए हमारे देश आते हैं। तो ज़रूरी है कि हम भी उनका आदर करें, सम्मान करें और उनका संरक्षण करें।
2: श्रोताओं, हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इसका उद्देश्य है इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के फाउंडर हेनरी डुनेंट को याद करना, जिनका जन्म 1828 को इसी दिन हुआ था। रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी की स्थापना 1863 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। 8 मई 2026 को इस वर्ष जब विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, तो उसकी मुख्य थीम थी मानवता को जीवित रखना है, जो आपदाओं और संघर्षों में मदद करने वाले वॉलंटियर्स को समर्पित है। इस अवसर पर रक्तदान शिविर और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। श्रोताओं, विश्व रेड क्रॉस दिवस मानवीय कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हमें जागरूक करता है और इसके लिए हमें बताता है कि हमें इन कार्यों से जुड़ना चाहिए। इसलिए 2 से 8 मई तक रेड क्रॉस सप्ताह भी मनाया गया। कई लोगों ने विशेष रक्तदान शिविर के जरिए रक्तदान भी किया। तो हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि हम सभी संकल्प लें कि मानवीय कार्यों से रेड क्रॉस के माध्यम से भी जुड़ें, और रेड क्रॉस जिन मानवीय कार्यों और सामाजिक कार्यों को कर रही है उसमें भी अपना यथासंभव योगदान दें। श्रोताओं, वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ माइंड टेस्ट का। इस स्तंभ में हम हर सप्ताह 2 सवाल पूछते हैं, जिसके जवाब आपको डाक या ईमेल के द्वारा हमें भेजने होते हैं, और सही जवाब भेजने वालों के नाम हम अपने कार्यक्रम में भी शामिल करते हैं। तो इंतजार किस बात का, आइए सबसे पहले जान लेते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए सवालों के बारे में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह का हमारा पहला सवाल था कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही जवाब है 8 मई। और पिछले सप्ताह का हमारा दूसरा सवाल था कि अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब है 3 मई। और इन सवालों के सही जवाब हमें लिख भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं जतिन राज आदमपुर भागलपुर से, स्नेहा कुमारी और मुस्कान कुमारी नाथनगर भागलपुर से, और राजकुमार महतो ने पूर्णिया बिहार से। आप सभी श्रोताओं को हमारा कार्यक्रम ध्यान से सुनने के लिए और सही जवाब हमें लिख भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब नोट कर लें आज के सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। सवाल एक बार फिर से सुन लें, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। और आज का हमारा दूसरा सवाल है, पॉल लॉटरबर किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। सवाल एक बार फिर से सुन लें, वैज्ञानिक पॉल लॉटरबर किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। श्रोताओं, सवाल तो आपने नोट कर ही लिया होगा, अब नोट कीजिए हमारा पता और लिख भेजिए इन सवालों के सही जवाब हमें डाक या ईमेल द्वारा। हमारा पता है कार्यक्रम विज्ञान वाणी अनुभाग, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी भागलपुर, पिन 8120001, और हमारा ईमेल है phairbhagalpur@gmail.com, यानी phairbhagalpur@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों और ईमेल्स का। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विज्ञानवाणी कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि विज्ञानवाणी का अंक आपको पसंद आया होगा। विज्ञानवाणी के माध्यम से आपको बहुत सारी विज्ञान के क्षेत्र में नई जानकारियां मिली होंगी और इन रोचक जानकारियों से आप विज्ञान के अपने ज्ञान को और बढ़ा पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो श्रोताओं, घड़ी की सुई इशारा कर रही है और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो इस वादे के साथ ये होगी आपसे फिर मुलाकात, इसी दिन इसी जगह इसी समय, यानी आकाशवाणी केंद्र भागलपुर पर। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त पीयूष आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान वाणी, प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000।

0: कार का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
1: आरबीआई कहता है,
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर संगम में सुनिए श्रीमती गिरजा देवी से राग जौनपुरी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर संगम में आप सुन रहे थे श्रीमती गिरिजा देवी से राग जौनपुरी। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। 1 बजे हैं। लोकगीत सुनिए उदय कुमार से आरंभ में, इनसे सुनिए ये झूमर।

लोकरंग कार्यक्रम में लोकगीत आप सुन रहे हैं। उदय कुमार से 1:20 से आप पुनः सुनेंगे लोकगीत लोकरंग कार्यक्रम में। 1:10 होने को हैं, रांची से सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक महत्व को किया याद, कहा शौर्य और सामर्थ्य की यही विरासत देश की सबसे बड़ी ताकत। पीएम कुसुम हरित ऊर्जा योजना से आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर किसान, चतरा जिला योजना का लाभ लेने में बना अग्रणी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मदर्स डे पर सभी माताओं को किया नमन, दी हार्दिक शुभकामनाएं, कहा स्नेह समर्पण और शक्ति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटना में 5 लोगों की मौत, 2 घायल, आज भी राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने जीता स्वर्ण पदक, चीन को 5-4 से हराया, टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहित शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए एक प्रेरणादायक संदेश दिया है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ऐतिहासिक तारीख है। श्री मोदी ने कहा कि साहस और शौर्य की यह विरासत हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
1: 10 मई की ऐतिहासिक तारीख 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया। शौर्य और सामर्थ्य की विरासत ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास में बड़ी सफलता हासिल की। एक रिपोर्ट।
2: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कंबस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना चतरा जिले में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ जिले के किसानों के लिए समृद्धि का रास्ता बन चुकी है। सिमरिया अनुमंडल के इचाक पंचायत के नवाटाड़ गांव के सभी किसान इस योजना का लाभ सफलतापूर्वक उठा रहे हैं। किसान मित्र संजय कुमार ने बताया कि PM कुसुम योजना से किसानों ने डीजल और पेट्रोल पर निर्भर रहना छोड़ दिया है। अब किसान निर्भीक होकर खेती करते हैं।
3: प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों के लिए अति आवश्यक योजना है। इस योजना से किसान खेती में तरक्की किया है, अच्छे से खेती कर पा रहा है, पानी की सुविधा भी अच्छी हो जा रही है और न तो डीजल का खपत है न पेट्रोल का खपत है और मोटर भी लगाने की जरूरी नहीं है, मोटर कंपनी लगा के देती है, खेती अच्छे ढंग से हो रहा है।
0: जमशेदपुर में विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर अनुराग फाउंडेशन द्वारा जागरूकता एवं सामुदायिक समर्थन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम थी अब छिपे नहीं, जिसके तहत अनपहचाने मरीजों की पहचान और पीड़ित परिवारों को सहयोग देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे, अभिभावक, चिकित्सक और समाजसेवी शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल

0: सिमिया पीड़ित बच्ची ने इस बीमारी को रोकने के लिए समय पर जांच और जागरूकता की आवश्यकता बताई।
1: आज के समाज को यही कहना चाहूंगी कि प्लीज एक बार शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट करवा ले, ताकि आगे इस तरह का बच्चा ना हो, क्योंकि एक बार अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया हो गया तो लाइफ टाइम उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ब्लड चढ़ाने के लिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट से रखने का। जैसे हमारे अदर बच्चे हैं वैसे हम लोग भी है, वो जो काम कर सकते हैं हम भी वो सारे काम कर सकते हैं। तो प्लीज हमें किसी से तुलना ना करें, हम भी एज अ स्पेशल है।
0: खूंटी गुमला जिले के सीमावर्ती क्षेत्र भालू टोली के पास रनिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा से लदे एक ट्रक को जब्त किया। हालांकि इस दौरान ट्रक चालक, खलासी और डोडा खरीददार मौके से फरार होने में सफल रहे। फरार तस्करों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मदर्स डे के अवसर पर सभी माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, संस्कार और असीम ममता का स्वरूप है। एक माँ ही परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रथम शिक्षिका होती है, जिनके स्नेह और मार्गदर्शन से पीढ़ियों का निर्माण होता है। केंद्रीय मंत्री ने सभी माताओं के स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि आपका स्नेह, समर्पण और शक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मातृत्व भाव की मिसाल पेश करते हुए कोडरमा के मॉडर्न पब्लिक स्कूल की निदेशक संगीता शर्मा ने सड़क हादसे में अपने बेटे को खोने की पीड़ा को समाज सेवा और शिक्षा की मिसाल में बदल दिया है। उनका कहना है कि विद्यालय के हर बच्चे में उन्हें अपना बेटा नजर आता है, इसलिए बच्चों को शिक्षित और संस्कारी के साथ साथ बेहतर इंसान बनाने में जुटी हैं। उन्होंने बच्चों को जीवन रक्षा में हेलमेट के महत्व को लेकर जागरूक किया।
2: कोई भी बच्चा अगर मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाते हुए दिख जाता है तो मैं स्कूल में ही कान पकड़ के एक चपत लगा दे, और पता नहीं क्यों मेरा एक आध चपत लगाया और उन लोगों को बुरा भी नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता कि मैं उन लोगों को यही कहती हूँ कि एक मैंने खो दिया है, दूसरा मैं खोना नहीं चाहती। इसलिए जब भी तुम लोग बाइक चलाओ तो तरीके से चलाओ, इतनी तेज ना चलाओ कि कोई दुर्घटना घट जाए।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,64,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में वज्रपात की अलग अलग घटना में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। कोडरमा जिले के सतगांवा प्रखंड के मंडरोडीह गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र में भी वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। चतरा जिले के टंडवा के बड़गांव में भी एक किशोरी की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश और कहीं कहीं वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। हजारीबाग के बरकठा प्रखंड के ग्राम गोरहर में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। पहली घटना में पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर गई जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना में 4 वाहनों की टक्कर से हादसा हुआ। हॉकी झारखंड ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के अनुरूप संविधान और उपनियमों को अपनाने के लिए 24 मई को विशेष आम सभा की बैठक बुलाई है। यह बैठक मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी रांची में आयोजित होगी, जिसमें संविधान संशोधन और अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत शामिल थीं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक महत्व को किया याद, कहा

0: शौर्य और सामर्थ्य की यही विरासत, देश की सबसे बड़ी ताकत। पीएम कुसुम हरित ऊर्जा योजना से आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर किसान, चतरा जिला योजना का लाभ लेने में बना अग्रणी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मदर्स डे पर सभी माताओं को किया नमन, दी हार्दिक शुभकामनाएं, कहा स्नेह समर्पण और शक्ति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटना में 5 लोगों की मौत, 2 घायल, आज भी राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने जीता स्वर्ण पदक, चीन को 5-4 से हराया, टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहद शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं उदय कुमार से ये देवी गीत।

उदय कुमार से आप सुन रहे हैं लोकगीत लोकरंग कार्यक्रम में। अब इनसे सुनिए ये मनौन।

लोकरंग कार्यक्रम में लोकगीत सुन रहे थे उदय कुमार से। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। 1:30 हुए हैं। अब सुनिए अंगिका पत्रिका कार्यक्रम।

0: स्वागत करै छियै सभ्य श्रोता भाई बहिन के हुनकर पसंदीदा कार्यक्रम अंग दर्पण में। सभ्य के अकलो के नमस्कार, आरो बताबो की हाल चाल। आशा करै छियै कि सब कुछ बढ़िया होते। देखै छो धूप तऽ छेबे करे, लेकिन रही रही के जे छै बादल भी घिरी आबै छै, यानी कि धूप छाँव जिंदगी में तऽ लगले रहै छै। धूप छाँव सुख दुख हैसनी जिंदगी में चलता रहै छै। आर जब तक दुख नहि अयतै तऽ फेर सुख के महत्ता केना समझतै? आरो सब दिन अगर सुखे रहतै तऽ फेर दुख में कैसा जीवन व्यतीत करतै? तऽ कोनो भी परिस्थिति रह, सभ्य में एक समान रहना चाहिए, हर आदमी के गुण होना चाहिए, ताकि वह जीवन अच्छा से अपना सवार सक और आगे जे बढ़ावा सक। आरो अपना सनिक जीवन दय वाली आज अपनो सनी के मातृत्व दिवस छिके, यानी कि माय वास्ते आज खनि खास दिन छै। हौ माय जे कि हमरा सनी के जीवन दे छै आरो अपनो सनी के है जीवन के पहलो गुरु भी होय छै। आज हुनका जे छै सभ्य मिलिकऽ प्रणाम करै छियै, हुनका से आशीर्वाद लै छियै। आरो जीवन में पग पग पर हुनको साथ रह है जे छै कामना करै छियै। माय बाप के मेहनत हौ कहानी छिके जे शब्द में नहीं त्याग में लिखलो जाए छे। हुनी अपनो नींद बेची दे छे ताकि हमरो सनी के सपना पूरा हुआ सक। खुद के ख्वाहिश दबाए दे छे ताकि हमरो सनी के मुस्कान बनलो रह। माय न भूख छुपाए ले छे और बाप न थकान, लेकिन कभी हमरा सनी का एहसास भी नहीं होल दे छे कि कतना कुछ सहलो छे हुनी सनी। जौन उम्र में हमरा खेलना छले, हौ उम्र में हुनी सनी जिम्मेदारी उठा रहलो छे ताकि हमरो राह आसान हुआ सक, हमरो सनी के जीवन आसान हुआ सक। सच कहियो तो हुनको मेहनत के कर्ज शब्द से नहीं चुकेलो जा सके छो। है तो बस प्यार सम्मान और हुनको साथ सही चुकता हुआ पड़े छो। ये वास्ते कभियो हुनको आँख के थकान पढ़ी ले लो करो, कभी ओकरो हाथ के लकीर का समझी ले लो करो, कहना कि हुनके में हमरो सनी के पूरा जिंदगी लिखलो होय छे। ठीक ने? आरो हम सनी केना छिए जब ऊ छे तभी हम सनी छिए। तो ये वास्ते हुनका एक बार फेनु से प्रणाम करे छिए। आरो सब ठीक ठाक रह, बनलो रह, चलता रह है कब होते जबकि सब सुरक्षित रहते। और उस समय समय पर हम सनी बहुत सारा सप्ताह भी मनाबै छे जे कि अपनो सनी के जीवन से स्वास्थ्य से जुड़लो रहे छे। एना में अभी हम सनी मना रहलो छे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। आज रो समय में सड़क दुर्घटना के संख्या बढ़ी गेलो छे। देखबे करता हूँ वो कि रोज कंडोस न कंडोस खबर आबी जाइ छे कि फलना ठिया एक्सीडेंट हो गेले, दुर्घटना हो गेले। तो है सड़क दुर्घटना लगभग लगभग हर दिन सुने में आ जाए और है समस्या के कोनो एक कारण नहीं है। वास्तव में ऐसा बहुते कारण है जे सड़क दुर्घटना का बढ़ावा दे के काम करे छे। जना कि यातायात के नियम के पालन नहीं होना, सड़कों के स्थिति ठीक नहीं होना, वाहन चलते समय सुरक्षा सावधानी नहीं बरतना, सुरक्षा के माध्यम से बहुते हादसा के रोकथाम करलो जावा सके छो। तो ये वास्ते हमरा सनी का सड़क सुरक्षा के नियम के पालन करना चाहिए। चलो एकरा पर हम सनी ढेर को बात करबे, लेकिन अभी सुनै छे कुछ संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ

0: नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं?
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।

0: सात शून्य शून्य शून्य एक चार दो पर।
1: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
1: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
3: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
5: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: संदेश का सुनला के बाद एक बार फैनू से सभी श्रोता भाई बहन के स्वागत करे हुनको पसंदीदा कार्यक्रम अंग दर्पण में। आरो जनक हम सनी बात कर लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह पर। तो एना में बहुते जरूरी है कि सभी लोग पूरा तरह से सुरक्षित रहकर सड़क के इस्तेमाल कर सक। आरो यही वास्ते संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनेलो जाए मई महीना में। आरो एकरो तिथि संयुक्त राष्ट्र द्वारा समय अयला पर घोषित करलो जाए। है साल ई 8 से 12 मई तक मनेलो जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के मुख्य उद्देश्य लोगों का यातायात नियमों के पालन करे और सुरक्षित वाहन चलावे के महत्व के बारे में जागरूक करना है। और जागरूक यो करना है कि उन्हें अच्छा से चल सड़क पर, सड़क के जे नियम छे ओकरो पालन करते हुए चल, सड़क के बाई ओर से चल और वाहन के रफ्तार से थोड़ा कम कर रख। समय जगह जगह पर लिखलो भी रहे कि यहाँ इतना तेज से चलना है, यहाँ इतना धीमा से चलना है, तो ओकरो चल। और जहाँ मोड़ छे वहाँ थोड़ा धीरे चल, जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग छे वहाँ थोड़ा रुकी जाए, पैदल वाला का पार कर दिए। ट्रैफिक नियम जे छे ओकरो पालन करना छे, तब ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के औचित्य पूरा होते और सब सुरक्षित रहते, अपनों सुरक्षित रहते और दूसरों का सुरक्षित रखते। और जब सब सुरक्षित रहते तो फेनू गीत लात सुने मन लगबे करते। तत चलो सब मिलिक सुने निमन रंग देवी गीत।

0: हाँ बड़ा है निमन रंग, देवी की सुन लिया भी सब है मिलकर का। और जब ऊपर वाला के आशीर्वाद रहते तो फेनू जीवन तो अच्छा से चलबे करते। और अपनों सनी का ऊपर वाला से मनाना भी चाहिए कि हमू सनी सुखी रहो और दूसरों भी सब सुखी रह, तब ये समाज देश और विश्व जी से आगे बढ़ते रहते। और हमू सनी अब कार्यक्रम में आगे बढ़े छे। और आज खनी एकटा निमन रंग कहानी सुने छे, शीर्षक छे महादानी, कहानीकार के सत्यनारायण मंडल।
1: ढेर दिना पर गांव आयलो छले सुशील, ओकरो गांव एकदम से बदली गेलो छले। जहां पहले गांव के सड़क कच्ची छले, वहीं अब पक्की हो गेलो छले। गली गली में पीसीसी सड़क बनी गेलो छले। सुशील शहरों में रही का प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी करी रहलो छले। कभी कभार जो मन उकताए जाय छले तो गांव आ भी जाए छले। आमी के सीजन में तो हो अरबद्धी के गांव आवे छले। ओकरा आम बड्डी पसंद छले। ओकरो बगीचा के जरदालू आरु दुधिया मालदो आम तो हो इलाका में नामी छले। भोरे भोर सुशील रोज शिवालय दिस टहले ल निकली जाए छले। एक दिन सुशील जेनहे टहली का पहुंचले, देखल गए कि

ढेरी सनी लोग सब पुबारी टोला दिस जा रहल छले। है देखी के सुशील के मनो में ढेरी सनी सवाल उठ लगले। तखनी ओकरो नजर गामे के रमसाही बाबू पर पड़ल। पूछला पर रमसाही बाबू बतेलके कि 4 बजे भोर पर रामशरण बाबू गुजरी गेले। है सुनते हैं सुशील के आँखी में लोर भर भराए गेले। है गामों का आगू बढ़ावे लेली रामशरण बाबू ने जी तोड़ मेहनत कर लके। यही लेली आसपास के गांव वाला सिनी ने भी हुनको खूबे बड़ाई करता रहे छले। गांव वाला सिनी साथा सुशील भी रामशरण बाबू के घर दिस बढ़ी गेले। चलता चलता ओकरा मनो में रामशरण बाबू से जुड़लो ढेरी सनी याद घूमा लगले। रामशरण बाबू हाउ जमाना में एमए पास कर ल छले जखनी इलाका भरी में कुछ वे आदमी सनी पढ़लो लिखलो छले। हुनी चाह लेतिए तो कोई बड़का पद पर सरकारी नौकरी लिया पारे छले। मतर कि हुनी गांव के विकास के कामों में लागी गेले। खाए पिए के तक कोई कमी नहीं छले। हुनको एकलौता बेटा अशोक चार्टर्ड अकाउंटेंट छले जे कि अपना परिवार साथ दिल्ली में रहे छले। हुनी कभी कभार घर आवे छले। एक बेटी छले सुषमा जे कि ससुरारिहा में रहे छले। गामा में रामशरण बाबू के बढ़िया रंग के घर छले। हुनकी धर्मपत्नी कुछ बरस पहले स्वर्ग सिधारी गेलो छले। मदद करे लेली गामे के एक ठो ईमानदार और मेहनती युवक सीताराम का हुनी साथों में रखे छले। सीताराम खेती बाड़ी से लेकर का घर द्वार के भी देखभाल करे छले। लगभग 60 बीघा जमीन छले हुनका पास। खाए भरी अनाज राखी का हुनी बाकी अनाज गरीब गुरुवासिनी में बाटी दे छले। गामा में केकरो लड़की के शादी होय छले तो हुनी खूब मदद करे छले। दिन पर दिन बितलो गेले। धीरे धीरे रामशरण बाबू पर उम्र ने अपना प्रभाव देखलाना शुरू कर दलके। अब तक हुनी 80 बसंत देखी चुकलो छले। हुनका बेटा अशोक ने तो लगभग हुनका भुलाइए दल छले। कभी कभार फोनों पर बात करी ले छले। घर आबे के तक कभी बातें नहीं करे छले। कारण छले कि ओकरी कनियनी होकरा गांव आबे नहीं दे छले। पोतासनी तो रामशरण बाबू का चिन्हभो नहीं करे छले। बेटी सुषमा कभी कभार अपनो दुल्हा चंद्रशेखर बाबू साथा आबे छले और कुछ दिन उनको सेवा सत्कार करी का चली जाए छले। योगा और नियमित दिनचर्या के बल्लों पर रामशरण बाबू 80 साल के उम्र में भी बिल्कुल दुरुस्त छले। गाम के हुनको जोड़ी पार्टी के लगभग 15-20 आदमी रोज शाम का हुनको दरवाजा पर बैठे छले। कीर्तन भजन आरु रामचरित मानस के पाठ भी सभ्य लोगसनी झूमी झूमी करे छले। कभी कभी रामशरण बाबू रामचरित मानस के कुछ मार्मिक प्रसंग के वर्णन करे छले तो वहाँ बैठलो आदमी सनी के आँख भरी जाए छले। हुनी हरदम सबके समझेता रहे छले कि संकट के घड़ी में हर एक आदमी के मदद करना चाहिए। कहना कि जरूरतमंदों सनी के मदद करला से भगवान खुश होय छे। सरकारी अधिकारी सनी भी रामशरण बाबू के खूबे सम्मान करे छले। रामशरण बाबू अपनो गामा में लोगों सनी के हर एक योजना के लाभ दिलाए छले। गांव के हर बच्चा स्कूल जाए छले। गामा में कभी कभार जो 2 आदमी के बीच विवाद होय छले तो रामशरण बाबू दोनों के बोला के समझाए दे छले तो दोनों मानी जाए छले। अब पैसा कौड़ी के लेन देन के बात रहे छले तो हुनी अपना थैली से पैसा निकाली के दे छले और मामला के सुलझाए दे छले। हुनी हरदम सभ्य के समझौता रहे छले कि केस मुकदमा के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि कुछ आदमी सनी रामशरण बाबू के देखी के खूब जरे छले। मतर के रामशरण बाबू ओकरो सनी से बढ़िया व्यवहार करे छले। विधि के विधान का के टारा पड़े छे। जे आदमी है दुनिया में अलो छे ओकरा एक ना एक दिन जाहिल पड़ते। रामशरण बाबू का ई बातों के आभास हो चुकलो छले। हुनको जे

0: बेटा छले अशोक, ओकरो व्यवहार से हुनी अंदरे अंदर बड्डी दुखी रहे छले। एक दिन हुनी अपनो नौकर सीताराम के कल्ला में बोलेलकै आर एक बड़ो रंग के बंद लिफाफा देलकै। सीताराम ने कहलकै, कक्का है हम की करबै। रामशरण बाबू कहलकै, बेटा है लिफाफा तो एकदम से सुरक्षित रखिय, एकरा बारे में केकरो कुछ बतेबो नहीं करिए। जौन दिना हम अंतिम सांस लेबो हौ दिना तो हमरो जिगरी दोस्तों सनी के सामना में एकरा खोलिह। रामशरण बाबू के करेजो बहुत बड़ो छले। सीताराम के परिवार में 6 आदमी छले। रामशरण बाबू के कृपा से सीताराम के बाल बच्चा और पूरा परिवार खुशहाल छले। बंद लिफाफा के माध्यम से हुनी सीताराम के खुशहाली आरो बढ़ाई दिल छले। अपनो घरों का सामुदायिक भवन बनाए के इंतजाम हुनी करी दिल छले। 10 बीघा जमीन हुनी सीताराम के लिखी दिल छले। बेटी सुषमा के भी हुनी कुछ संपत्ति दै ले चाहे छले, मतर के सुषमा और हुनका पतिदेव जी ने कुछ भी लय से इनकार कर दिलके। गांव के हरेक आदमी सिनी का भी हुनी कुछ कुछ जमीन दे के बात लिखी दिल छले। हौसनी आदमी में जे एकदम से गरीब सुनी छले वह सनी आदमी छले। पिछलका बात सोचला सुशील कखनी रामशरण बाबू के घर पहुंची गेले ओकरा पते नहीं चलले। लंबा चौड़ा अंगना के बीचों में रामशरण बाबू के पार्थिव शरीर रखलो छले। वहां जितना भी आदमी छले सभे के आंखी से लोर गिरी रहलो छले। तखनिये उनकी बेटी सुषमा आरु दमाद चंद्रशेखर बाबू वहां पहुंचले। सभी के मन में यह छले कि उनकी बेटी सुषमा ने ही मुखाग्नि देते। भरलो आंख लेकर रामशरण बाबू के अर्थी श्मशान घाट तरफ बढ़ी गेले। बेटी सुषमा, दमाद चंद्रशेखर बाबू, सेवक सीताराम और उनका हित मित्र सनीना कंधा देकर रामशरण बाबू के पार्थिव शरीर का श्मशान घाट पहुँचलके। वहां जब मुखाग्नि दे के बात अल तो रामशरण बाबू के बेटी सुषमा ने सीताराम का मुखाग्नि दिलकै। हाय सुनी का सभी के बड्डी आश्चर्य होले। सुषमा कहलकै कि बाबूजी ने हमरा पहले ही कही दिल छले कि सीताराम के हाथों से ही मुखाग्नि दिलवैया। मरला के बाद भी रामशरण बाबू के चेहरा पर निश्चिंतता के भाव छले। मतर के अंतिम समय में भी हुनी बेटा के मुंह नहीं देखा पड़लकै, शायद हाय बातों लेली हुनको आत्मा सब दिन दुखी रहते। जखनी सीताराम ने हुनका मुखाग्नि दे रहलो छले ओकरो हाथ कापी रहलो छले और आँखी से लोर झरझर गिरी रहलो छले। अभी के समय में जहाँ लोग सब बित्ता भरी जमीन ले ली एक दूसरा के जान ले ले छे, वहीं अपनो सेवा आरु दानशीलता के माध्यम से सभ्य लोगोसनी का बड़का संदेश देकरी का रामशरण बाबू ई दुनिया से विदा हो गेले।
1: सचमुच में बहुत है मार्मिक आरो हृदय स्पर्शी कहानी छले, जकरो शीर्षक छले महादानी। कहानीकार सत्यनारायण मंडल जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे छे कि हुनी है वास्तविक जीवन में वास्तविक चीज से रूबरू करल के है कहानी के माध्यम से। यही वास्तव कहलो जाए छे कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। कवि आरो लेखक वो समाज के जे छे दर्पण होय छे, वो समाज के दर्पण देखाबे छे कि देखो हमरो समाज केना छे आरो केना होना चाहिए। तो हमरा सनी का सबके जे छे दूसरा के हमेशा मदद करना चाहिए आरो जे संस्कार के माय बाप के प्रति अपनो परिवार के प्रति वो हमेशा निभाना चाहिए, है सबका ध्यान रखना छे, तभी परिवार समाज आरो देश अच्छा होते। तो बहुत ही अच्छा सीख देता हुआ है कहानी चले। एक वास्ते एक बार फैनू से कहानीकार सत्यनारायण मंडल जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे छे और लगे हाथ जे छे एकटा विवाह गीत सुनी छे।

सोनी कुमारी के आवाज में है विवाह गीत सुनला के साथे अब आज के अंग दर्पण के कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हो छे। मिलवे अगला कार्यक्रम में सुनबे खूब सारा गीतलाद और करबे ढेर को बात। अब हमरा दा विदा, सबका अकलो के नमस्कार।

आप सुन रहे थे अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। 2 बजने वाले हैं, पटना से सुनिए प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार पुलिस में 15,000 से अधिक पदों पर विशेष सहायक पुलिस सैप की अनुबंध पर नियुक्ति की जाएगी। इसकी प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय ने जवानों की भर्ती के लिए पटना जिले के दानापुर कैंट स्थित सेवा रोजगार कल्याण संगठन को नोडल इकाई बनाया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को बिहार का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

0: राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित प्रारूप प्रपत्र एक पर आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 18 मई निर्धारित की है। आयोग के अनुसार आपत्तियों के निपटारे से असंतुष्ट रहने पर अपील वाद दाखिल किया जा सकता है। इस अपील का निपटारा भी 7 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। वहीं प्रारूप एक का अंतिम प्रकाशन 15 जून को किया जाएगा। राज्य में पुलों की सुरक्षा और उनके रखरखाव में अनियमितता के मामले में इंजीनियर और उससे संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि पुलों की गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल करने वाली संस्थाओं को पुलों का सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने आज सुबह राज्य के पहले गैर द्रविड़ पार्टी के नेता के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इधर असम में भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। श्री शर्मा राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में आंधी बारिश की स्थिति बनी हुई है। आज सुबह राजधानी पटना, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीमांचल के क्षेत्रों सहित प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम में परिवर्तन से राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया जी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कैमूर, सारण, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा और मुंगेर में न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई। अरवल जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र के NH 139 पर दो वाहनों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सीवान के पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने कहा है कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के सभी थानाध्यक्षों और अन्य पुलिस अधिकारियों की बैठक में श्री झा ने हत्या, आर्म्स एक्ट और संगीन मामलों में तेजी से चार्जशीट दाखिल कर अपराधियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया। पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर निगम ने झीलिया मोहल्ले में 1,82,00,000 रुपए की लागत से 3 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को पूरा करने की पहल शुरू की है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। बिहार पुलिस में 15,000 से ज्यादा ओहदों पर स्पेशल असिस्टेंट पुलिस सैप के मुआहदों पर तकरीर की जाएगी। इसका अमल 1 जून से शुरू होगा। पुलिस हेडक्वार्टर ने जवानों की तकरीरी के लिए पटना जिला के दानापुर कैंट वाक़ सेवा रोजगार कल्याण संगठन को नोडल यूनिट बनाया है। पुलिस हेडक्वार्टर के मुताबिक तकरीरी अमल में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को बिहार का मुस्तकिल बाशिंदा होना लाजमी है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने पंचायत इंतखाब के लिए शाये खाका फॉर्म 1 पर एतराज़ दर्ज करने की आखिरी तारीख 18 मई तय की है। कमीशन के मुताबिक एतराजात के निपटारा से गैर मुतमईन रहने पर

अपील दाखिल की जा सकती है। इस अपील का निपटारा भी 7 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। वहीं फॉर्म 1 की आखिरी अशात 15 जून को की जाएगी। रियासत में पुलों के तहफ्फुज और उनके रखरखाव में बेजाबतगी के मामलों में इंजीनियर और उससे मुतालिक अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमा तामीरात सड़क के सेक्रेटरी पंकज कुमार पॉल ने बताया कि पुलों के मेयार और तहफ्फुज के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कौमी शाहराह की निगरानी करने वाले इदारों को पुलों का हिफाजती ऑडिट करने की हिदायत दी है। तमिलनाडु में TVK पार्टी के बानी सी जोसेफ विजय ने आज सुबह रियासत के पहले गैर द्रविड़ पार्टी के लीडर की हैसियत से वज़ीर आला के ओहदा का हलफ लिया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर लोकसभा में हिजब मुखालिफ के लीडर राहुल गांधी और दीगर मुअज्ज़िज लोग मौजूद थे। इधर असम में भाजपा के सीनियर लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और NDA दोनों के कानून साजिया का लीडर मुंतखब किया गया है। जनाब शर्मा गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करके हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। वजारत तालीम गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में हिंदुस्तानी जबान मौसम गर्मा कैंप का इनाकाद करेगी। एक हफ्ता का ये कैंप हिंदुस्तानी जबानों में बुनियादी गुफ्तगू को सीखने, अल्फाज को जानने, अपना तारुफ देने, हकीकी ज़िंदगी की बातचीत और सकाफत की तारीफ पर मरकूज़ होगा। इसका मकसद कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक जामे और यकसा तालीम के नुक़्ते नज़र को फ़रोग देना है। मगरबी हवा के असर से रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में आंधी बारिश की सूरत हाल बनी हुई है। आज सुबह राजधानी पटना, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर समेत आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सीमांचल के इलाकों समेत रियासत के शुमाल मगरब और जनूब मशरक़ी हिस्सों में तेज़ हवा के साथ बादल गरजने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम में तब्दीली से रियासत के कई ज़िलों में कम अज़ कम दर्जे हरारत में कमी आई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गया जी में कम अज़ कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कैमूर, सारण, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा और मुंगेर में कम अज़ कम दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई। अरवल ज़िला के मेहंदिया थाना हलका के कौमी शाहराह 139 पर दो गाड़ियों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं चार दीगर शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। सिवान के SP पूरन कुमार झा ने कहा है कि जराइम कंट्रोल में लापरवाही किसी भी सतह पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़िला के सभी थाना इंचार्जों और दीगर पुलिस अफसरान की मीटिंग में जनाब झा ने कत्ल, आर्म्स एक्ट और संगीन मामलों में तेज़ी से चार्जशीट दाखिल कर जराइम पेशों को सज़ा दिलाने की हिदायत दी। मगरबी चंपारण के बेतिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने झिलिया महल्ला में 1,82,00,000 रुपए के तखमीना से 3 अहम तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने की पहल की है। इसके साथ ही इलाकाई ख़बरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के कुल 9175 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ, 8700001।

0: 4242 पर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
4: तिलका मांझी तो बहुत।
3: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
5: बख्शी जगबंधु तो
4: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, त्रिश और बाल्टी बॉय।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
2: 8700014242।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
4: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
6: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
7: सुबह की सुहानी धूप में ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
8: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
7: रूबरू होंगे आप खबरों से,
8: देश दुनिया की ताज़ा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
7: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
8: सुनिए हर दिन प्रातः।
9: 2:15 होने को हैं, दिल्ली से सुनिए दोपहर समाचार।
10: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब

0: मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनुम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் 9 மந்திரியும் நேபி சபத் லி ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு ஷாமில் ஹே. இஸ் அவசர் பர் லோக்சபா மே விபக்ஷ் கே நேதா ராகுல் காந்தி ஆர் தமிழ் ஃபில்ம் உத்யோக் கி கை ஹஸ்தியாம் மௌஜூத் தி. முக்கியமந்திரி சி ஜோசப் விஜய் நே फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय

0: को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमारदिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
1: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और NDA का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। NDA सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित है, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी है। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिविन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
3: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। पेश है श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। पहली फरमाइश आई है हम साथ साथ हैं फिल्म से। गायक कलाकार हैं हरिहरन, घनश्याम वासवानी, प्रतिमा राव और संतोष तिवारी। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं

मुजाहिदपुर पूरा टोला से मोहम्मद राजू खान, मोहम्मद जहांगीर खान, शबनम जानम, खैरू भाई, रूबी बेगम और राज खान। मोहल्ला काजीपुरा कहलगांव से सुहाना यस अरमान, खुशी सिमरन मुस्कान और बेबी मायरा। गोराडीह से डॉक्टर हेमंत कुमार, जीवेश नंदन, नीलेश नंदन। नीलकोटी मोहल्ला साहेबगंज भागलपुर से छोटू, सृष्टि, मोहित राज, सोनम, डॉक्टर सुबट्ट कुमार मंडल। हकीम शाह मोहम्मद लैन, रहमानी चौक, चंपा नगर भागलपुर से आप हैं हुज़ैफ़ा दाऊद, दाऊद अंसारी, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर और तारिक अनवर। कुमार रामदेव पटेल, श्रीमती सुनीता देवी, मनोज कुमार पटेल, अमित पटेल, आकाश और वाणी एवं समस्त पटेल परिवार आप हैं आकाशवाणी मुंगेर, रेडियो श्रोता संघ बहादुरपुर बरियारपुर से। मुजाहिदपुर पूरब टोला से मोहम्मद खालिद अंसारी, ताहिर अंसारी, कादिर इल्मनाज, एम के नाज और माज बाबू, लखीसराय जमुई रोड मंझवे से दिलावर हुसैन, रुस्तम हुसैन, वाजिद खान, जोया खान, शायरा और हुज़ैफ़ा और आप हैं आज़ाद कॉलोनी सहारनपुर से नौशाद आलम, शहजाद आलम, राशिद अहमद, साजिद और वाजिद।

उत्तम नगर नई दिल्ली से गौरव मदन, अनिल, मानसी और कविता, गणेश पासवान, सुधा पासवान, भीकनपुर, भट्टा रोड, भागलपुर से। आप हैं दिलीप कुमार, सोनी मुंदीचक, भागलपुर से। विनोद कुमार यादव, ममलखा, ललक से। राधे विद्यार्थी, सहरसा से। डॉक्टर हेमंत कुमार, भागलपुर से। आप हैं चंद्रनगर, सहारनपुर से। आशा डोमिन, सोनाली डोमिन, सुरेश पथिक, रायगढ़ बिहार से। उमा राज, पवन, उमा और प्रभा रानी यादव। छत्तीसगढ़, रायपुर से नरेंद्र कुमार यादव, संदीप यादव और टुकटुक यादव। आप हैं उत्तरखेर से सिराज खान और शबाना खान। आप सब सुनना चाहते हैं फ़कीरा फिल्म में लता मंगेशकर को।

राजस्थान ज़िला झालवाड़ से हर्षिता रामेश्वर कान्हा, सफलता कपिल, मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर बाई एवं प्रभुलाल बागरी। साहिबगंज भागलपुर से छोटू सृष्टि मोहित राज सोनम। नाथनगर से आप हैं हिना फुजैल, दानियाल उमर, मायरा उमर, उमर फारूक, मोहम्मद फुजैल और ज़ुबैर अंसारी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मीका विरक, बलविंदर विरक और हरदेव विरक। भानपुर भोपाल से राम गोपाल विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, हिमांशु विश्वकर्मा और योगिता विश्वकर्मा। सैनिक रोड श्रोता संघ बबूरा वार्ड नंबर 10 से आप हैं मोहम्मद परवेज़ आलम, मोहम्मद रियाज, अनाया परवेज़ और आतिफ एवं सेजल। साथ ही राजकोट से प्रभा रानी, डॉली पूजा, राधिका, अजिता पासवान, रघुवीर नगर। दिल्ली से आप हैं जफर मुअज्जम शेख और फिरदौस शेख। आप सब सुनना चाहते हैं दिल फिल्म का नगमा अनुराधा पौडवाल एवं उदित नारायण की आवाज़ों में।

बड़ी खंजरपुर एकता रेडियो श्रोता संघ से आप हैं भाई गुलफराज आलम बेगम शमारा दोस्त जमालुद्दीन नेपाली सिटीजन मास्टर और शादाब धुरैया गंगदौरी से रामविलास रविकांत नीरज अमर मारुति सावित्री देवी कावित्री देवी तनुजा और सांदेव हरि अस्मा परवीन दुखना रानी सदफ आरजू और वली भाई अंसारी सराफ रोड राजकोट से प्रेमा रानी डॉली उमर सुरेश आप हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून अंसारी और सुरित रमेश साहू डुमरांव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी।

गोला बाजार बक्सर सी, श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा अंसारी, आप हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रमिला सिंह, हेमा, अंतरा सिंह और डोंडी लोहरा से शंकर देव और प्रभा हगोड़िया, आप सब सुनना चाहते हैं इज्जत फिल्म में लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफ़ी को, तो लीजिए आप अपनी फरमाइश पर आखिरी गीत सुनिए।

आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीत। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। और अब सुनिए सामुदायिक गान एवं शिक्षा पाठ। असमिया भाषा में

0: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हैं ना असमिया भाषा गीत?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
1: माती रे।
0: ए माती रे मोरो मोते,
1: मोरो मोते।
0: माती के,
1: माती के।
0: सुमीलो,
1: सुमीलो।
0: माती के सुमीलो, माती के सुमीलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते, ए माती ते जीवन,

0: এই মাটিতে যা নি বলনা ইসকো জ বলনা ইয়ে এই মাটিতে জীবন সবি জীবন জি কাছে জ কে নিচে বিন্দি লগা লেনা হ্যাঁ তো জীবন সবি আকি আকি দোবার আকি আকি আকি মোসিলো আব পহলা অন্তর আয়েগা ইসকে বাদ দূর আকাহার ये जो ना आकाश श को बोलते हैं वहाँ ख की तरह से तो आकाश ये ख और ह के बीच में आका खार भी नहीं आका हार भी नहीं आका हार आका हार लिखो दूर आका हार रोहन कियोनु लागे लागे खागोर तोलीर खागोर खागोर ख नहीं बोलना ह खागोर तोलीर खागोर मतलब समुद्र के तल में तो खागोर तोलीर मानिक कियो मानिक कियो नू मानिक कियो नू लागे लागे
1: लागे लागे
0: इसके आगे है आहा आहा फिर मातिर बुकुत मातिर बुकुत मौनोर मालोती बूटोलो मौनोर मालोती बूटोलो इसके बाद फिर वही आ जाएगा एई माती रे मोरो मोते फिर दूसरा अंतरा है मोनोर कोरोनी रे
1: कोरोनी रे
0: हुरोर हुरोर पापोरी रे पापोरी रे आजी
1: आजी
0: इतना हो गया ना
1: जी हाँ
0: आगे हुकुमार
1: हुकुमार
0: थापो
1: थापो
0: नाहुजुवा
1: नाहुजुवा
0: हुकुमार थापो नाहुजुवा आगे लिखा है ना
1: जी
0: हुंदोर
1: हुंदोर
0: खुदीनोर
1: खुदीनोर
0: खुदीनोर नहीं ख नहीं ख खुदीनोर
1: खुदीनोर
0: नौतून
1: नौतून
0: दृष्टि
1: दृष्टि
0: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके दृष्टि दृष्टि शनि सही बोलो दृष्टि
1: दृष्टि
0: कौनो
1: कौनो
0: ना हुआ आगे ना
1: जी हाँ
0: अच्छा ठीक है अब गाना सिखाना शुरू करते हैं स्वर दीजिए जरा

आप सुन रहे थे सामुदायिक गान एवं शिक्षा पाठ असमिया भाषा में, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। अब सुनिए समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

समूह स्वर में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 3:25 हुए हैं। अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: रघुपति, हिंदी अनुवादक P.S. कृष्णस्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
1: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं
2: कहिए माँ जी।
1: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको यह रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
2: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
1: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
2: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
1: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा, ये लड़की नीला।
2: जी, आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
1: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं, तो तुम उन दोनों की शादी करा देना। करा दोगे ना?
2: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
1: मेरी बात याद रखोगे ना?
2: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
3: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
4: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है, अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
3: नहीं, लखपति? अरे क्या कह रहा है?
4: ये जरा गंभीर मामला है। हाँ? देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
3: लगता है मारी तू दारू पीकर आया है, अबे सच कह दे नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते के मौत पड़ेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
4: है, बहुत गहरा संबंध है, वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
3: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
4: तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ, उसी के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था, मैं छिप कर खिड़की के पास खड़ा हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
3: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने यह भी बताया था कि उसने धन कहां गाड़ रखा है?
4: वही तो मैं सुन नहीं पाया, उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
3: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
4: नहीं भैया नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा, अब कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
3: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है, और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: क्या बात है पोस्टमास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है।
1: क्या किया जाए कंदस्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
0: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
1: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
0: तार? कैसा तार?
1: लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार। इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
0: है? ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भीड़ में दुश्मन की गोली से मर गया।

0: अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर।
1: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो, जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
0: चाहता हूँ बाबूजी, चाहता हूँ। ये कैसी मजबूरी है, शिव का में अम्माल मुझ पर माँ के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी, आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उन्हीं को दारुण दुख से तड़पाने के लिए

0: माँ जी
1: आओ कंद स्वामी, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
2: ड्यूटी? ड्यूटी आपका तार है माँ जी।
1: क्या कहा, तार? मेरा तार आया है?
2: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
1: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
2: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
1: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
2: नहीं तो
1: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया, कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
2: माँ जी बात यह है कि।
1: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है, तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो?
2: माँ जी तार में कुमार स्वामी ने लिखा है, कि वो आज गांव पहुंचेगा, उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
1: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
2: कुछ नहीं माँ जी, यूं ही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
1: तो चले क्या? अच्छा कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना, कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी, खाना भी यही खाना। अच्छा
2: अच्छा तो मैं जाता हूँ माँ जी।

0: अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदल कर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है।
1: और क्या कहता, शिवकामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
0: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
1: हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
0: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है। सोच लो, ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
1: नतीजा? एक बुढ़िया बीमार माँ के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा, मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: माँ
1: कौन है? अरे आप नानी, नानी देखो कौन आए हैं मोटे से।
2: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ
1: कौन? कुमार स्वामी आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
2: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
1: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो?
2: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
1: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
2: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
1: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
2: कंद स्वामी कौन?
1: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
2: क्या कह रही हो माँ? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
1: बेटा तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
3: नानी माँ आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
1: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर लें, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया।
1: क्या हुआ हमारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर
0: उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
1: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो। तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है।
1: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिये का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंदु स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
1: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये, लेकिन सुनो, होशियार रहना।

0: कुली कुली।
1: Oh, damn it! इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेष बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: ओ सिली ओल्ड लेडी।
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला। क्योरी छोकरी कैसी है, माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ आज फिर क्यों सोंग भरा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मूछे और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ मेरी मूछे, दर्द हो रहा है। अरे ये बनावट नहीं, असली मूछे है, हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
1: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।
2: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, डाकिया कहीं का। कौन है तेरी माँ?
0: कौन? ओहो सिंगाराम। हेलो, हाउ डू यू डू, यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
2: अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है, क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का।
0: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
2: हाँ हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूछे और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस ना समझ नीला को धोखा दे सकता है। लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूत अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चलाया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया। अब बोल कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे, पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
0: जमीन में गड़ा धन?
2: हाँ।
0: अंकल सिंगारम ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो?
2: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
0: तू क्या करेगा बदमाश, चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
2: अबे अंदर कहाँ जाता है, पहले बता।
0: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
2: अच्छा कुछ नहीं मालूम है तुझे, कुछ नहीं मालूम तो ले।
0: सिंगाराम तूने ये
2: चाकू के एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है, इधर नीला भी बेहोश हो गई है, क्या ये कहीं सचमुच ही कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ भाग जाना चाहिए।

0: श्रृंगारम श्रृंगारम, मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था।
1: है?
0: तुमने कुमार स्वामी का
1: कमीने, तूने मुझे गलत खबर देकर। कंद स्वामी कहाँ है?
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी, तू भागकर किसी को कंद स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूँ।
2: माजी
0: ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। हाँ, अरे ये नीला, नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
3: हाँ कंद स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है

0: क्या कहा माँ जी? ये कुमार स्वामी है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं, मैं भाग आया। और
1: अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करोगे। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही मार डालते।
0: माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
2: सब सूझ जाएगा कंद स्वामी, हम आ गए हैं।
0: कौन? इंस्पेक्टर साहब।
2: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुँचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो।
3: इसने मेरी बहन के बेटे को, मेरे भांजे को मार डाला है। इस वक्त साहब, अगर मैं फौरन आपको इत्तला न करता तो ये भाग जाता।
2: मैडम जी, क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
3: बात ही है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ गई।
2: ए, कहां जा रहे हैं आप? रुकिए।
1: इंस्पेक्टर साहब, इसी शिंगारम ने मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी। इसी ने ही चाकू भोंका, तभी कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
2: सिपाहियों, ये बदमाश शिंगारम भागने न पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या सिंगारम को खून करते हुए देखा था?
1: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं दहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
2: अच्छा, तो सिंगारम एक बेकसूर को फंसाकर खुद बचना चाहता है। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। कंद स्वामी को छोड़ दो।
1: अरे, अरे, मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा, बेटा।
2: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं।
0: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था। ये सिंगारम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया। माँ,
1: मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे।
0: माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका, मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर दो। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।

0: आइए पोस्टमास्टर साहब। अच्छा किया जो आप इस कंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं। नीला देखो तो कौन आया है। क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे? ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट शिंगारम ने ऐसी चाल चली कि
1: जो होना था सो हो गया। शिंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
2: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना शिंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
0: देखो कंद स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
2: क्या कह रही हैं आप?
0: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये ना समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
2: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैं क्यों माफ करूं? तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
2: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूं।
0: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
1: भाई मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
0: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
2: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीक, चम्बलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती बेचारा।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977 दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
0: जी,
1: ये पिक्चर अच्छी बने। और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
0: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
0: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
0: हीरोइनें भी हैं,
1: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
0: अब
1: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लगे थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चरें मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
0: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहाँ,
1: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास, डार करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज्यादा पिक्चर में डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा ये जो आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना, देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको। तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
0: कनेक्शन
1: सबके। तो वहीदा जी से कहने लगे यार जस्ट पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगा हूँ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
0: अरे गजब।
1: रमेश तलवार से? वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी, 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सब ने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार है अच्छे। तो इन्होंने मुझे यश जौहर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ, मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था, सभी उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मैंने कहा पाली हिल पे हूँ, वहाँ पर जाइए। आए वहाँ पे तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के पास मैं जाता रहा, तो ऐसे अभी वहीदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है, तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं यश जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ, तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूंगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आपकी कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी ड्रिप कर लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली कभी यही है बिटवीन।
1: सागर साहब लिख रहे थे?
0: कोई नहीं, कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा,
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी।
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। इनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं।
1: ओ
0: बीच बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। वो इस तरह कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन इप्टा के मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे, और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे।

0: सिटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी, कुलदीप याजत से बाजा लेके आते और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, तो
0: हमारे बाकी लोग भी, हमारा उस तरह कोई ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहाँ पे बैठा करते थे, रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहाँ जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा।
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो बाकी देख लेंगे चीजें, अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जोहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना,
0: उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं, हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोहर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में, तो बोले 10 लाख दिए थे। तो बोले 5 लाख में

0: अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे। बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी,
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीजें मिल जाएंगी, जो बख्शीश आपको आप फीस देते नहीं अगर आपको सूट करता है तो। उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मेरे जावेद मिल रहे हैं जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे।
1: हाँ हाँ,
0: हाँ लूंगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उसने पैसों में गाने भी फ्री लिखूंगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया तो गाने वाले। अब साहब उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है। बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए? मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर होने थे। रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की, कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: तो हो गया। बोले अब अगला स्टेप, सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुके, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब।
1: कहानी नहीं है,
0: कहानी नहीं,
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: दिलीप कुमार
0: साहब, दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए। पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिया हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, कर लीजिए। वो मान गए, यश जोश की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोश, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समंदर के किनारे,
1: कहानी ढूंढ रहे हैं,
0: कहानी ढूंढ रहे हैं क्या बनाए। वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग।
1: हाँ हाँ,
0: तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया।
1: हाँ,
0: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं उनको एज राइटर। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा रेट भी ज्यादा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने की। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम शुरू कर दिया। जी,
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं, कभी पिक्चर बनाते वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति,
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल
0: का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था,
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे ही मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को भी सुना दूं।
1: जी,
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता था।
1: जी,
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब।
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट ले रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे। कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला कर दूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: कि ऐसे फिल्म करना है, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी जुकर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी के हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी जुकर का भी शेयर था।

0: 5%
1: बाबा
0: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सदी राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर और मैंने अपने लिए 5% रखे थे जो जश जी ने 10% करवा दिए क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वल्ला ऑपरेटिव कैमरामैन जो था, 5% केजी उनका सीनियर कैमरामैन, 5% पंडरी जुकर और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब।
1: जी जी जी गजब।
0: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीर की 2 बेटियां उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए,
1: ओहो
0: मनमोहन किसका बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे, उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था खयाम साहब, ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सरदी ने उनके लिए लिखी थी।
1: अच्छा
0: सागर सरदी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सरदी ने उनको फिल्म की लिख के दी, जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके, और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए, उसके बाद वो चाहते थे बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनो,
1: प्रदीप को लेके,
0: प्रदीप को लेके, लेकिन वो नहीं बन पा रही, लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे, तो भाई उनको वो तो रिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
1: दिलीप साहब को बताया,
0: दिलीप साहब को बता दी।
1: ओहो हो गजब
0: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है। तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिले मुझसे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
1: ओह क्या बात है,
0: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
1: जी,
0: वो पंजाबी हो वहाँ के थे पिशावर के
1: जी,
0: उस तरफ के, और मैं बफा एपटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो जरा यार के बदले जरा,
1: अच्छा
0: यारा
1: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा,
0: सागर यारा
1: किताब में आई,
0: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूंगा जरूर करूंगा, उस तरह प्रोड्यूसर भी अच्छा है आदमी अच्छा है, यस यस करूंगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा उसमें बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी वो कहूंगा, कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए आपको बता रहा हूँ किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की
1: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
0: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि वो मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा क्या आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप,
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ, बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता उस।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट होगी थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
0: जी
1: है। फिर गेस्ट रोल में सारा जी, इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दीजिए।
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे लॉटरी लगी है
0: जी।
1: जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है

0: थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे
1: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
0: मैं अलग हो गया, मैं उनको उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी
1: जी जी,
0: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था
1: जी,
0: पहले मीटिंग हो चुकी थी
1: जी,
0: तो उनके पास मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, दो एक दो चीजें, एक पहले मैं लेके गया है, कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्री देवी की डेट है,
1: ओ ओ ओ,
0: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ, फिर आगे हो, उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन
1: था,
0: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
1: जी,
0: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटे हैं, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकी और डेटे पोस्टपोन करूंगा तो फिर वो हो जाएगा, और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचे, अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
1: जी,
0: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास, इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोलाते, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
1: ओके
0: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों वहां आए बहुत खुश थे। तो
1: पैसों वगैरह की बातें,
0: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर एज इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों जाए, चावला साहब ओके, बोले 100% ओके।
1: वाह
0: ओके हो गया सब, हम निकले, हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए, उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका
1: जी जी जी,
0: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉल्ड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रेमनॉल्ड वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
1: हॉस्पिटल ले गए,
0: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहाँ बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पे लिटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे और वो चले गए, और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
1: अटक गया,
0: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही मेरा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ,
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज्यादा उधार है, तो सबसे मीटिंग करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी।
1: इस तरह साहब हमारी फिल्म में भाग्य, सर्कमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
1: याद करते देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भेजते हैं, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म, अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल। और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार कास्ट,
1: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा, ये नहीं करूँ।

0: मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग, चलो जाओ आते हैं चलते हैं, शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग हो, के जहाँ पे बोला जो जिस तरह वो लेने के लिए कि ये विजुअल आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी, आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरामैन लिया, महाजन साहब कैमरामैन,
1: ओहो
0: के महाजन, तो सब चीज़ें उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। चावला साहब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, तो फिर बाद में पता चला क्योंकि वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी,
1: जी जी जी,
0: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज़ पर, और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है सौरभ कुमार।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मानसी और लेकर आई हूं आपके लिए आज का संडे स्पेशल कार्यक्रम, जिसमें होंगी ढेर सारी बातें, गीतों की मिठास और जानकारी भरी चर्चाएं। दोस्तों, आज का दिन है रविवार, यानी आराम, मस्ती और नई ऊर्जा का दिन। मई महीने की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन इस बार मौसम भी कुछ अलग ही रंग दिखा रहा है। कभी अचानक बादलों की गर्जना के साथ बारिश हो जाती है, तो कभी तेज़ धूप हमें गर्मी का एहसास कराती है, और फिर कुछ ही पलों में ठंडी ठंडी हवाएं मन को सुकून दे जाती है। सच कहे दोस्तों, तो मौसम का यह बदलता मिजाज हमें भी चौंका रहा है। ऐसे अनोखे मौसम में जहाँ हर पल कुछ नया महसूस होता है, वहीं हमारे जीवन में भी बदलाव की लहरें आती रहती है। कभी चुनौतियाँ, कभी खुशियाँ, यही तो जीवन का असली रंग है। और इन्हीं रंगों को भी खूबसूरत बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए आज का यह खास कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह और मातृ दिवस यानी मदर्स डे के बारे में। उसके बाद होगा स्तंभ डेली ट्रिविया। आज के कार्यक्रम में सुनाएंगे हम आपको पुराने नगमे, और रविवार के खास स्तंभ में होगा आइए जाने संविधान में, विषय संविधान और लोकतंत्र के संबंध के बारे में चर्चा। और अंत में समसामयिक की फन फैक्ट और समापन बातचीत के साथ संपन्न होगा हमारा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कलाकार का ये गाना।

0: संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह हर वर्ष लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दोस्तों, इसका मुख्य लक्ष्य है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और चोटों को कम करना तथा सुरक्षित यातायात व्यवस्था को बढ़ावा देना। आज के समय में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर वैश्विक समस्या बन चुकी है, जिनमें हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों, इस अभियान के तहत लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने का उपयोग करने, नशे में वाहन न चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने जैसी महत्वपूर्ण बातें के लिए प्रेरित किया जाता है। खासकर युवाओं में जागरूकता फैलाना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक प्रभावित वर्ग युवा ही होता है। भारत जैसे देश में जहां सड़कों पर तेजी से संख्या बढ़ रही है, वहां सड़क सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना और भी आवश्यक हो जाता है। सरकार द्वारा कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन उनकी सफलता तभी संभव है जब हम आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझें और उनका पालन करें। चर्चा को यहीं विराम देते हुए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर?
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
0: दोस्तों, मदर्स डे यानी माँ के प्रेम, त्याग और समर्पण को सम्मान देने का एक खास दिन है। यह दिवस हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी भावना है जो हमारे जीवन की हर धड़कन में बसती है। माँ वो होती है दोस्तों जो बिना कहे हमारी हर बात समझ जाती है। जब हम छोटे होते हैं तो उसकी उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं और बड़े होने पर भी उसी की दुआएं हमें संभालती रहती है। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। वह खुद की खुशियों को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में लगी रहती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कई बार अपनी माँ को समय नहीं दे पाते, लेकिन सच कहे दोस्तों तो माँ को किसी महंगे तोहफे की नहीं, बस थोड़े से प्यार, सम्मान और साथ की ज़रूरत होती है। उनकी एक मुस्कान में ही पूरी दुनिया की खुशी छुपी होती है। मदर्स डे हमें यह याद दिलाता है कि हमें हर दिन अपनी माँ के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। उनके त्याग और मेहनत को समझना और उन्हें यह एहसास दिलाना कि वे हमारे लिए कितनी कीमती और ख़ास है, यही इस दिवस का असली महत्व है। तो आइए दोस्तों, मदर्स डे के इस खास मौके पर हम सभी अपनी माँ को दिल से धन्यवाद कहें, उनके साथ समय बिताएं और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे हमारे जीवन की सबसे अनमोल धरोहर हैं। मित्रों, सभी माओं को दिल से हैप्पी मदर्स डे। और आज के इस मदर्स डे पर मेरी ओर से पेश है एक बेहद खूबसूरत गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म राजा और रंक से।

दोस्तों, गीत के बाद अब बारी है हमारे दैनिक स्तंभ डेली ट्रिविया की, जिसमें हम आपसे आकाशवाणी संबंधित एक प्रश्न पूछेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, यूं ही बने रहिएगा अपनी रेडियो दोस्त मानसी के साथ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, हमारा संविधान केवल एक किताब नहीं बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। यही हमें हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और देश के नियमों की जानकारी देता है। संविधान ही वह शक्ति है जो देश को एकता, समानता और न्याय के सूत्र में बांध कर रखती है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे विशेष सेगमेंट आइए जाने संविधान की ओर, जहां हम चर्चा करेंगे संविधान और लोकतंत्र का संबंध तथा चुनाव, संसद और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका पर। किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता का आधार उसका संविधान ही होता है। संविधान वह सर्वोच्च दस्तावेज है जो देश के शासन, नियम, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य को निर्धारित करता है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन, और इस व्यवस्था को सही दिशा देने का काम संविधान करता है। संविधान लोकतंत्र को मजबूत बनाता है क्योंकि यह सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। इसमें मौलिक अधिकारों के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और न्याय पाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। साथ ही यह सरकार की शक्तियों को सीमित करता है ताकि कोई भी संस्था या व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके। दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है जो संसद में जाकर उनकी आवाज़ बनते हैं। संसद कानून बनाती है और देश की नीतियों को तय करती है। यह जनता और सरकार के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करती है। इसके अलावा न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी कानून संविधान के अनुरूप हो और किसी के साथ अन्याय न हो। दोस्तों, यदि किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका ही उसे न्याय दिलाने का कार्य करती है। इस प्रकार संविधान, चुनाव, संसद और न्यायपालिका मिलकर लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाते हैं। मित्रों, ये सभी तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और मिलकर देश में न्याय, स्वतंत्रता और समानता को बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आइए जाने संविधान के अंतर्गत ये चर्चा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रही होगी और आपने लोकतंत्र में संविधान की महत्ता को बेहतर ढंग से समझा होगा। मित्रों, अब पेश है पुरानी नगमे का अगला गाना, फिल्म दाग से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की मिलीजुली आवाज़ों में।

मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेकर चलते हैं आपको हमारे दैनिक स्तंभ समसामयिकी की ओर। प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेल अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया जाएगा। इससे रेल संपर्क मजबूत होगा तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2026 की पहली तिमाही में सौर और पवन ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। सरकार ग्रीन एनर्जी मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों में मधुमेह और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है। इसका उद्देश्य बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर बनाना है। 4 से 10 मई तक देश भर में मनाए गए अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आज समापन हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान के माध्यम से लोगों को आग से बचाव और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया गया। आज के समसामयिक ज्ञान से बस इतना ही। मित्रों, कार्यक्रम के शुरुआत में हमने एक प्रश्न पूछा था आपसे, जो कि आकाशवाणी से संबंधित डेली ट्रिविया का प्रश्न था। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था, जिसका सही जवाब है साल 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब ने देश में पहली बार प्रसारण किया था। स्तंभ डेली ट्रिविया के बाद अब बातें हैं हमारे अगले दैनिक स्तंभ फन फैक्ट के अंतर्गत आकाशवाणी संबंधित एक रोचक जानकारी जानने की। क्या आपको पता है मित्रों, आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के रूप में हुई थी, जबकि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को निजी तौर पर हुई थी। इसे आधिकारिक तौर पर 1956 में आकाशवाणी का नाम दिया गया था। यह भारत की सबसे पुरानी और

सबसे सार्वजनिक रेडियो प्रसारण सेवा है। आज का फन फैक्ट सेगमेंट बस यहीं समाप्त होता है। अब बारी है फिल्म संगीत की। लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म का नाम है दो रास्ते।

तो दोस्तों, इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है कि आज का युवानी कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आज के इस कार्यक्रम में हमने बातें की बदलते मौसम की, दिल को छू लेने वाले गीत सुने और साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। आशा है कि आज का कार्यक्रम आपका हर रंग आपके मन को छू गया होगा। जीवन का हर दिन कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का अवसर लेकर आता है दोस्तों। ठीक उसी तरह युवानी का उद्देश्य भी यही है कि मनोरंजन के साथ साथ युवाओं तक नई सोच, सकारात्मक संदेश और जरूरी जानकारियां पहुंचाई जाए। दोस्तों, अगर आज के कार्यक्रम का कोई भी हिस्सा आपको पसंद आया हो तो आप अपनी राय हमें संदेश, पत्र या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड नंबर 8120001। हमारा ईमेल एड्रेस है phaarbhagalpur@gmail.com। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ी सी मुस्कान, कुछ अच्छे विचार और अपनों का साथ हमारे दिन को बेहतर बना देता है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मई महीने की इस सुहानी शाम में कभी ठंडी हवाओं का एहसास तो कभी मौसम की बदलती करवटें हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन ही जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा है। इसलिए हर परिस्थिति को मुस्कुराकर अपनाइए और अपने आसपास सकारात्मकता फैलाइए। अब दीजिए इजाज़त अगली मुलाकात तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त मानसिक को। शुभ संध्या एवं नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म ए दिल है मुश्किल से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह, ऐश किंग और शाश्वत सिंह ने। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, इसे संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म बाटला हाउस का ये गीत। अंकित तिवारी और धुनी भानुशाली की आवाज़ें थी। अंकित तिवारी ने ही इसे संगीतबद्ध किया था और इस गीत के खूबसूरत बोल लिखे थे रितेश दुबे ने। कार्यक्रम में अब आइए आगे बढ़ते हुए आप सभी को सुनाते हैं अगला गीत। फिल्म चेहरे से यसर देसाई की आवाज़ है।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में अब आइए जान ले आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद संध्या ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकगीत में गायिका वीणा देवी के गाय लोकगीत। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार राजीव कुमार झा की प्रस्तुति। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 9:30 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अखिल भारतीय रविवार्षिक संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अब कल के कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, कल प्रातः 5:48 पर आरंभ होगी हमारी कल की सभा। 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना लेकर आएंगे हम। 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में एक भेंटवार्ता, विषय है किडनी फेलियर, कारण लक्षण और बचाव। भेंटवार्ताकार है डॉक्टर राजन कुमार सिन्हा और भेंट करता है सचिन कुमार। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरित मानस गान। प्रातः 7 बजे से 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत आप सबसे पहले सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रसरंग में कलाकार ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी की प्रस्तुति। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संस्कृत वार्ता में एक भेंटवार्ता, विषय है वैदिक संग्रहालय परिकल्पना। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर सत्यवान कुमार और भेंट करता है कुसुमाकर दुबे। तत्पश्चात 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस दौरान आप जानेंगे कुछ जरूरी सूचनाएं जैसे रेल सूचना, मौसम सूचना, कल का इतिहास और

कल प्रातः 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में गायक कलाकार डॉक्टर अजय राय की प्रस्तुति। 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर कार्यक्रम लोकगीत में गायक कलाकार गोपाल भगत की प्रस्तुति सुनेंगे आप। कल दिन में 11:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर हम लेकर आएंगे फिल्म संगीत की खास पेशकश गुलदस्ता। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेंगे आप। 1:00 आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग में, गायिका नूतन कुमारी के गाय लोकगीत। 1:30 पर ग्रामीण महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन सुनेंगे आप। 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से सुनेंगे आप। 3:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम बंगला गान। 5:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम युवावाणी। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कल संध्या 6:00 आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर कार्यक्रम लोकगीत में गायिका लीला कुमारी के गाय लोकगीत सुनेंगे आप। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार चेतन कुमार चौबे की प्रस्तुति सुनेंगे आप। 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:15 पर कल आप सुनेंगे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में कलाकार श्री केदारनाथ मिश्र की प्रस्तुति। 10:30 पर आप श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी लेकर आएंगे हम। कार्यक्रम विवरण में अभी आपने जाना आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: स्वागत है सभी श्रोता भाइयों बहनों का कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। सबको लाखों का नमस्कार।
1: साथ में अखलू के भी नमस्कार। लाखों भाई अपनों को नमस्कार।
0: नमस्कार और हार्दिक स्वागत अखलू भाई। और सब सुनाइए, क्या हाल समाचार है?
1: सब कुछ बढ़िया छो, चकाचक छो, अपनों बताबो।
0: सब कुशल मंगल है। और अभी तो शादी विवाह का भी समय है, तो जोर शोर से हम लोग भोज भात भी खा रहे हैं और उत्सव का आनंद भी ले रहे हैं।
1: हाँ, तो तोरा चेहरा बता रहे छो, इतना खुश जे छो, लागे जे आजो कहीं भोज भात छे की।
0: बिल्कुल बिल्कुल, भोज तो है और साथ ही हम लोग बाराती के लिए भी आमंत्रित हैं अगलो भाई।
1: वाह वाह वाह वाह, तब तो बहुत बढ़िया बात छो। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखियो अपने स्वास्थ्य के, ठीक ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मान लिए कि भोजन दूसरा छिके लेकिन पेट तो अपने छिके।
0: बिल्कुल,
1: तो ये अवस्था है गर्मी के दिनों में, थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य के और खान पान के ध्यान रख रही हो।
0: बिल्कुल, देखिए अकलू भाई, हमारी स्वास्थ्य का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो उस समय हमें जब अपने ज्ञान का बोध नहीं होता है तो हमारा लालन पालन जो है हमारी माताएं, हमारी माँ करती है।
1: हाँ,
0: और वह हमारी जन्म देने वाली माँ हो या प्रकृति रूपी माँ हो, वे हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, हमें प्रेम से सींचती है। और ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता था, इसलिए उसने माँ की रचना की, ऐसा रूडयार्ड किपलिंग ने कहा है।
1: माँ के ममता से बड़ो कोनो वरदान नहीं छे।
0: बिल्कुल,
1: और माय के बिना जीवन अधूरा छे हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अकलू भाई, इस दुनिया में जो सबसे अनमोल रिश्ता है वो माँ और बच्चे का है। माँ हमेशा अपने बच्चों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है।
1: हाँ,
0: माँ का प्यार निस्वार्थ होता है, उसके प्यार में त्याग छिपा होता है अकलू भाई। और ना जाने कितनी रातें जग कर माँ अपने बच्चों को पाल कर बड़ा करती है।
1: यही वास्ता था माय ऊँच के जे खुद दर्द सही करी का हमरा सनी का खुश देखना देखेला चाहे छे।
0: बिल्कुल,
1: और माय के आशीर्वाद ही सबसे बड़ा पूंजी छे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और जीवन भर प्यार करने के बाद भी अकलू भाई उनका प्यार बच्चों के लिए बढ़ता ही रहता है। और माँ के लिए यूं तो हर दिन

0: खास होता है, लेकिन खास दिन उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देती है, और वह है आज। आज मातृ दिवस है, मदर्स डे जिसे हम लोग कहते हैं।
1: यानी हर साल मदर्स डे मई महीना के दूसरा रविवार को मनेलो जाए छे, और
0: बिल्कुल
1: आज के दूसरा रविवार मई महीना के
0: बिल्कुल
1: तो आज
0: बिल्कुल
1: के हम असली मना रहे छे मदर्स डे, यानी कि मातृत्व दिवस।
0: बिल्कुल। और ये जो 2026 में हम 10 मई को आज मना रहे हैं, और यह दिन बच्चे अपनी माताओं को उपहार देकर उन्हें धन्यवाद देते हैं, और बच्चे अपने लालन पालन के लिए, संरक्षण के लिए माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। माँ हमारे जीवन में सर्वोच्च और अनमोल है अकलू भाई, क्योंकि वह निस्वार्थ प्रेम और त्याग, सुरक्षा और संस्कारों की नींव रखती है। वे पहली शिक्षक भी है हमारी, और शिक्षक होने के साथ साथ हमारे मार्गदर्शक और रक्षक भी होती है अकलू भाई, जो निस्वार्थ भाव से हमें और अपने संतान का पालन पोषण करती है। माँ का समर्पण और ममता अटूट है, जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमें संबल प्रदान करती
1: आरो
0: है।
1: कतना अच्छा बात कहलो लाखो भाई कि माय जे होय छे ओ हमरो सनी के पहलो शिक्षक आरो
0: बिल्कुल
1: पहलो दोस्त आरो जीवन भर के मार्गदर्शक होय छे।
0: बिल्कुल
1: माय के
0: बिल्कुल
1: प्यार निस्वार्थ होय छे, अद्भुत होय छे आरो अनमोल होय छे।
0: बिल्कुल
1: माय हर परिस्थिति में हमरो सनी के साथ खड़ा रहे छे।
0: बिल्कुल। और
1: माय
0: बिना
1: के
0: किसी शर्त के, अनकंडीशनल प्यार जिसको हम बोल सकते हैं आखलो भाई, और वह अपने दुखों को भुलाकर संतान की खुशी और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है।
1: माय के दुआ जीवन के सबसे बड़ा ताकत छिके।
0: बिल्कुल। और माँ जो है अगलो भाई, बच्चों को ईमानदारी, धैर्य और सहानुभूति प्रदान करती है।
1: माय के बिना जीवन अधूरा और नीरस छे।
0: बिल्कुल। और त्याग की मूरत इस प्रकार है कि भारतीय संस्कृति में माँ को देवी का दर्जा दिया गया है, जो संतान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देती है।
1: यही वास्तव कहलो जाए छे जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी आरो जन्मभूमि अगर मिली जाए तो एकरा बदला में स्वर्ग भी छोड़ देना चाहिए। सोचो
0: बिल्कुल
1: स्वर्ग से भी बड़ी छे जननी यानी कि माँ।
0: बिल्कुल। और माँ ना केवल हमें जन्म देती है अकलू भाई, बल्कि सही गलत का अंतर सिखा कर हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित भी करती है। और माँ अपने बच्चों का रिश्ता जन्म से पहले से ही शुरू हो जाता है, और जीवन भर अटूट रहता है। और माँ जो है घर को एक सूत्र में पिरो कर रखती है, और परिवार की खुशी के लिए खुद को समर्पित कर देती है। हम मनुष्य ही नहीं, वरन अकलू भाई जितने भी पशु पक्षी भी हैं, वे भी माँ होती हैं। और हम देखते हैं कि एक मादा जो है, कि चाहे वो पशु पक्षी हो, कोई भी हो, वो अपने बच्चों का कितने जतन से लालन पालन करते हैं। और माँ किसी की भी हो, उनकी हर हाल में हमें देखरेख करनी चाहिए,
1: कहना
0: उनका
1: कि
0: सम्मान करना चाहिए।
1: कहना कि माय जो छे वो ममता के मूर्ति हो छे,
0: बिल्कुल
1: प्यार के
0: बिल्कुल
1: पहचान हो छे और जीवन के सबसे बड़ा शान हो छे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गाय भी हमारी माता है, गौ माता के रूप में हमें उनका सम्मान तो करना ही चाहिए, और इसलिए हम उसे गौ माता को कह के भी बुलाते हैं। देखिए अकलू भाई, संजोग से आज 10 मई है, और गौ माता के प्रति उस भाव का दिन भी याद आता है जिसने देश में विख्यात 1857 की क्रांति को करवाया था। 1857 की क्रांति में आज ही के दिन, यानी 10 मई को, मंगल पांडे नामक सिपाही ने बैरकपुर से, उसमें जो है कि गौ माता की चर्बी उनके राइफल में जो है प्रयोग होता था, और उसका प्रयोग करना होता था हमारे सैनिकों को, तो वह कहीं ना कहीं हमारे लिए धार्मिक ठेस पहुंचता था। और उनसे जो है कि उनका विरोध किया उसने, और यह विरोध का परिणाम यह हुआ कि आज हम स्वतंत्र हैं। और देखिए अकलू भाई, 10 मई को ये आज़ादी हमें गौ माता की कर्जदार है, इसलिए अविलंब हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए।
1: देखो लाखो भाई आज के नहीं हम असनी तो मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस मना रहे छे।

0: है दिन के उद्देश्य भी होना चाहिए कुछ, तो है दिन के उद्देश्य हमरा सनी के है निश्चित करना चाहिए कि माय के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करता रह, उनको त्याग और समर्पण का हमेशा सराहो। परिवार में मातृत्व के महत्व का समझना भी है,
1: बिल्कुल,
0: ममता करुणा और सेवा के भावना का बढ़ावा देना छे, माय के स्वास्थ्य और खुशी के ध्यान रखना छे, हुनी जौन भी हालत में छे उनका साथ हमेशा रहना छे, उनको साथ छोड़ना नहीं छे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आरो देखो मदर्स डे जे छे के शुरुआत प्राचीन यूनान आरो रोम में मातृ देवी के सम्मान के रूप में होलो छले।
1: बिल्कुल।
0: आधुनिक मदर्स डे के शुरुआत अमेरिका में एना जार्विस नामक महिला ने करलो छले।
1: अच्छा।
0: और 1908 में एना जार्विस ने अपनो माय के याद में मदर्स डे मनावे के अभियान शुरू करलो छले, आरो है अभी तक चली रहलो छे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो यही वास्ते कहे छे कि हर के वास्ते कोनो कोनो खास दिवस होय छे, जेना आज के मसनी अपनो जीवन के पहलो शिक्षिका जीवन दय वाली माय के प्रति मातृत्व दिवस मनावे के भाई दिवस मनाए रहलो छिए, तो हुनका प्रति आभार व्यक्त करे छिए, हुनका जे छे हमेशा प्यार से रखे के है संकल्प ले छिए कि हुनी जे छे हमरा सनी के साथ रह और हुनको आशीर्वाद सब बच्चा बुतरू पर बनलो रह।
1: बिल्कुल। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं अगलो भाई कि माँ के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है।
0: एकदम।
1: वे परिवार का आधार स्तंभ और बच्चों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। और इसलिए और भी हम कार्यक्रम में और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेशों को।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

मानव जीवन में यदि किसी एक रिश्ते को सबसे पवित्र, सबसे निस्वार्थ और सबसे गहरा कहा जाए तो वह रिश्ता है माँ का। मातृ दिवस इसी अनुपम संबंध को सम्मान देने, उसे याद करने और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष अवसर है। यह केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि एक भाव का उत्सव है जो हमारे अस्तित्व की जड़ में समाया हुआ है। माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक संपूर्ण संसार है। वह हमारे जीवन की शुरुआत है, हमारी पहचान है, हमारी सबसे सुरक्षित शरण भी। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले जिस स्पर्श को महसूस करते हैं वह माँ का होता है। यही स्पर्श हमारे जीवन भर सुरक्षा और स्नेह का एहसास कराता है। माँ को जीवन की प्रथम गुरु कहा गया है और बिल्कुल सत्य है। वह हमें बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है और सबसे महत्वपूर्ण जीना सिखाती है। वह हमें यह समझाती है कि सही और गलत क्या है, कैसे कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना है और कैसे दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना है बिना किसी औपचारिक शिक्षा के। वह हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा देती है। माँ का त्याग अदृश्य होता है लेकिन उसका प्रभाव गहरा होता है। वह अपने सपनों को त्याग कर हमारे सपनों को पूरा करने में जुटी रहती है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो वह हमारी सेवा में दिन रात एक कर देती है। जब हम निराश होते हैं तो वही हमें हिम्मत देती है। उनकी ममता में एक ऐसी शक्ति होती है जो हर दर्द को कम कर देती है और कठिनाइयों को आसान बना देती है। भारतीय संस्कृति में माँ का स्थान अत्यंत ऊंचा है। हमारे शास्त्रों में मातृदेव भव कहा गया है जिसका अर्थ है कि माँ को देवता के समान माना जाना चाहिए। माँ को शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक भी माना गया है। यही कारण है कि हमारे यहाँ देवी स्वरूपों की महिमा का गुणगान किया जाता है। यह दर्शाता है कि माँ केवल पारिवारिक भूमिका तक सीमित नहीं, वह समाज और संस्कृति की आधारशिला है। आज के आधुनिक युग में माँ की भूमिका और भी व्यापक हो गई है। वह केवल घर की देखभाल करने वाली नहीं रही बल्कि हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। वह एक सफल पेशेवर भी है, एक जिम्मेदार नागरिक भी और एक स्नेहमयी माँ भी। वह अपने कर्तव्यों का संतुलन इतना सहजता से करती है कि कई बार उसकी संघर्ष दिखाई ही नहीं देता। माँ और संतान के बीच का रिश्ता भावनाओं का रिश्ता होता है, इसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। माँ हमारे मन की बात बिना कहे समझ जाती है। उसकी एक मुस्कान हमारे दुख को दूर कर देती है और उसका एक आशीर्वाद हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हालांकि जीवन की भागदौड़ में हम कई बार माँ के महत्व को भूल जाते हैं। हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उसके साथ समय बिताना भी मुश्किल हो जाता है। मातृदिवस हमें यही याद दिलाता है कि हमें अपने इस सबसे अनमोल रिश्ते को समय देना चाहिए, उसे सजोना चाहिए और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। माँ केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है जो पूरे समाज का निर्माण करती है। वह अपने बच्चे को संस्कार देती है जो आगे चलकर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि एक माँ सशक्त और शिक्षित होती है तो पूरा समाज सशक्त बनता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम माँ के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें। हमें केवल उनसे प्रेम और देखभाल ही नहीं लेनी चाहिए बल्कि

0: उन्हें सम्मान, समय और समझ भी देनी चाहिए। हमें उनके त्याग को पहचानना चाहिए और उनके जीवन को भी उतना ही महत्वपूर्ण बनाना चाहिए जितना हम अपने जीवन को मानते हैं। मातृ दिवस का वास्तविक अर्थ यही है कि हम माँ के प्रति अपने प्रेम को केवल शब्दों तक सीमित ना रखें, बल्कि उसे अपने व्यवहार में भी दिखाएं, उनके साथ समय बिताएं, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अंततः माँ वह अनमोल धरोहर है जिसका कोई विकल्प नहीं। वह हमारी ताकत है, हमारी प्रेरणा है और हमारा सबसे बड़ा सहारा भी। उनके बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। माँ के बदलते स्वरूप के साथ माँ की भूमिका में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। पहले जहाँ माँ केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित माना जाता था, वहीं आज वह हर क्षेत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रही है। शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल, व्यापार, हर क्षेत्र में माँ अपनी पहचान बना रही है। लेकिन इन सबके बीच वह पहले मातृत्व की मूल भावनाओं को भी नहीं छोड़ती। वह अपने बच्चों के लिए हमेशा सुरक्षित आधार बनी रहती है। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। वह हर भूमिका को निभाते हुए भी अपने मूल स्वरूप को बनाए रखती है। हर माँ की अपनी एक कहानी होती है, संघर्ष की, त्याग की, सफलता की। कई माँ ऐसी होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करती है। कोई माँ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करती है। कोई माँ अपने सपनों को छोड़कर बच्चों के भविष्य को संवारती है। कोई माँ अकेले ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाती है। इन सभी कहानियों से यह बात समान होता है, माँ और अटूट साहस, असीम प्रेम, माँ की भावनात्मक सुरक्षा। माँ केवल शारीरिक देखभाल ही नहीं करती, बल्कि वह भावनात्मक सुरक्षा भी प्रदान करती है। जब हम किसी समस्या में होते हैं, तो सबसे पहले हमें माँ की याद आती है। उसकी गोद में एक ऐसा सुकून होता है जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं होता है। वह हमारी हर पीड़ा को समझ सकती है और हमें बिना शर्त स्वीकार करती है। माँ ही पहली व्यक्ति है जो हमारे भीतर नैतिक मूल्यों की नींव रखती है। वह हमें सिखाती है ईमानदारी, सहनशीलता, परोपकार और अनुशासन। ये सभी गुण हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है और हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। माँ के प्रति आभार व्यक्त करने के तरीके मातृ दिवस केवल उपहार देने का दिन नहीं, बल्कि यह भावनाओं को व्यक्त करने का दिन है। हम छोटे-छोटे प्रयासों से भी अपनी माँ को खुश कर सकते हैं। उनके साथ समय बिताकर, उनकी पसंदीदा खाना बनाकर, उनके दिल की बात करके और सबसे महत्वपूर्ण उन्हें यह बताकर कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। माँ केवल हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। उसका संघर्ष, उसका धैर्य और उसका प्रेम हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम हार मानते हैं, तो माँ ही हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। वह हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। मातृ दिवस हमें यह अवसर देता है कि हम अपनी माँ के प्रति अपना प्रेम और सम्मान को व्यक्त कर सकें। लेकिन यह केवल एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें हर दिन अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए और उनके प्रेम का मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि माँ ही एक वह शक्ति है जो हमें जीवन भर हर परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता देती है। माँ हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे अच्छी मित्र और सबसे अनमोल धरोहर। माँ को सत सत नमन।
1: बिल्कुल।

0: चांदनी कुमारी वार्ताकार को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मातृ दिवस के बारे में हमें इतना विस्तार पूर्वक और अच्छी जानकारी दी।
1: आरो कहलो गेलो छे कि अपनो सनी के संस्कृति में माय अनेक रूप में आराध्य छे।
0: बिल्कुल,
1: ये वास्ते हमरो सनी के मनीषी ने कहलो छे, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रिया। जेकरो अर्थ होले, माता के समान कोनो छाया ने, माता के समान कोई सहारा ने, माता के समान कोनो रक्षक ने, और माता के समान कोनो कोई प्रिय ने।
0: बिल्कुल,
1: तो आज के मातृ दिवस के अवसर पर सब माय का जैसे प्रणाम करे छे और कार्यक्रम में आगे बढ़े छे और सुने छे सुंदर रंग विवाह गीत।

0: हाँ अगलो भाई, विवाह गीत। भारतीय शादियों में रस्मों, रिवाजों, भावनाओं और पारिवारिक एकजुटता का एक अभिन्न हिस्सा है। ये पारंपरिक लोकगीत हल्दी, मेहंदी, बारात, विदाई के समय हंसी खुशी, मजाक, विदाई की भावुकता को जीवंत करते हैं और जो सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते भी हैं।
1: देखो, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत,
0: बिल्कुल
1: विरासत तो विरासत छिके, ध्यान रखना चाहिए कि ओकरा हमरा सनी के सहेजना छे ना,
0: बिल्कुल
1: तब
0: बिल्कुल
1: ये जे है धरती सुंदर बनलो रहते हैं। आरो है धरती पर बहुत सारा अमूल्य धरोहर छे, जेना
0: बिल्कुल
1: कि वन्य प्राणी हो गेले, है प्रकृति
0: हाँ
1: के अमूल्य धरोहर छिके, एकरो
0: बिल्कुल
1: अच्छा से रखना छे, वहनो कोनो काम नहीं करना चाहिए जेकरा कि वन्य प्राणी के जीवन संकट में आवी जाए ना। तो
0: बिल्कुल
1: चलो यही संबंधित आज के नियम असनी वार्ता सुनी छे, वन्य प्राणी प्रकृति की अमूल्य धरोहर, वार्ताकार के रविंद्र कुमार सिंह।
2: यह तो पूरी सृष्टि ही प्रकृति की सुंदर रचना है, किंतु समस्त प्राकृतिक प्राणियों में वन्य प्राणी प्रकृति की गोद में निवास करने, प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करने एवं पर्यावरण संतुलन में सहयोग करने के कारण विशेष स्थान रखते हैं। इन समस्त प्राणियों को समभाव से देखना वैदिक काल से ही भारतीय दर्शन रहा है। इस उपनिषद में वर्णित एक श्लोक का अर्थ है, संपूर्ण ब्रह्मांड तथा इसके समस्त प्राणी प्रकृति की संपत्ति हैं, अर्थात कोई प्राणी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। अतः प्रकृति पर समस्त प्राणियों का समान अधिकार है। वन्य प्राणी का तात्पर्य सामान्यतया ऐसे जानवर व अन्य प्राणी से

ये है जिन्हें मनुष्यों द्वारा पालतू न बनाया गया हो अथवा जो अपने प्राकृतिक वास स्थानों में पाए जाते हैं। ये वन्य प्राणी संसार के सभी परितंत्रों इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जिनमें रेगिस्तान, वन, घास भूमि, मैदान, पर्वत और शहरी क्षेत्र सभी शामिल हैं। सिंह, बाघ, हाथी, सियार, सुअर, लकड़बग्घा जैसे कुछ वन्य प्राणी यदि जंगलों पर्वतों में रहते हैं तो गिलहरियाँ, कबूतर, चमगादड़ जैसे वन्य प्राणी शहरों में भी बसते हैं। इस पृथ्वी पर प्रकृति विभिन्न जलवायु वाले भौगोलिक क्षेत्रों में संतुलित ढंग से रहने के अभ्यस्त जीवित प्राणियों का एक विषम जाल प्रस्तुत करती है। इन प्राणियों का जल चक्र, कार्बन चक्र, खनिज चक्र जैसे कई जैव भू रासायनिक चक्रों के द्वारा वातावरण के साथ आवश्यक तत्वों के लेन देन का चक्र सतत चलता रहता है और इस तरह पृथ्वी का संपूर्ण जीवन आपस में जुड़ा रहता है। प्राणियों का यह संतुलन एक प्राकृतिक विरासत है, एक ऐसी विरासत कि मानव जाति स्वयं अन्य प्राणियों की जातियों की तरह जीवित रहने हेतु संपूर्ण प्रणाली पर निर्भर रहती है। वन्य स्तनधारी प्राणियों में हाथी विशाल और आकर्षक प्राणी है जो भारत में प्राचीन काल से ही शाही समारोहों की शान रहा है। गणेश का मुख हाथी का होने के कारण इसे शुभ माना जाता है। शक्ति के प्रतीक के रूप में सिंह स्थापित है जो अपने शारीरिक सौष्ठव के कारण जंगल का राजा और शक्ति की देवी दुर्गा की सवारी के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी तरह कितने वन्य प्राणी ऐसे हैं जो अपनी खूबियों और खूबसूरती के कारण मानव समाज एवं संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ऐसे वन्य प्राणियों में हिरण, खरगोश, बाघ, चीता प्रमुख हैं। जानवर की तरह पक्षी का भी प्राचीन काल से ही मनुष्य से अटूट नाता रहा है। पक्षी जहाँ एक ओर हमारे जीवन में आनंद प्रदान करते हैं वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संतुलन में मदद करते हैं। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीटों, मक्खी, मच्छर, इल्ली, दीमक को खाकर फसलों की रक्षा करते हैं। चील, गिद्ध, कौवा पक्षी पर्यावरण के सफाई कर्मी की तरह काम करते हैं। ये मृत पशुओं तथा गंदगी को खाकर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। शक्करखोरा, फूलचूही जैसी कई चिड़ियाँ फूल के पराग को दूसरे फूल तक पहुँचाते हैं और परागण की क्रिया में मददगार साबित होते हैं। कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो वृक्षारोपण के कार्य द्वारा वन को समृद्ध करते हैं। ये पक्षी कठोर आवरण वाले बीजों को खाते हैं तो उनका आवरण हट जाता है और उनके बीज के साथ निकले बीज सरलता से जमीन पर उग जाते हैं। इतना ही नहीं, ये पक्षी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हमें सूचना भी देते हैं। जिस क्षेत्र में कोयल और खंजन दिखे वह क्षेत्र प्रदूषण मुक्त तथा जिस क्षेत्र में हेरॉन, स्टिल्ट जैसे पक्षी दिखे वह क्षेत्र प्रदूषित होने का सूचक माना जाता है। इस तरह यह कहना सही है कि पक्षी मानव बिना जीवित रह सकता है, किंतु मानव का पक्षी बिना जीवित रहना कठिन है। आज मानव की स्वार्थपूर्ण नीति के कारण वन्य प्राणियों की कई प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त वनों का कटना, समुद्री तट का अतिक्रमण करना, वन्य प्राणियों का शिकार करना, कृषि उद्योग परिवहन के लिए प्राकृतिक वास स्थान का घटना, जल विद्युत परियोजना के कारण प्राकृतिक वास स्थान को क्षति पहुँचना, पर्यावरण के अनेक अजैव घटकों जैसे वायु, जल, मृदा के प्रदूषण से अम्ल वर्षा एवं ओजोन परत का अपक्षय जैसी स्थितियों का उत्पन्न होना, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा का आना, ये सभी ऐसे कारण हैं जिनसे वन्य प्राणियों की प्रजातियों का तेजी से ह्रास हो रहा है। इस ह्रास से जैव विविधता में कमी आई है। एक अनुमान के अनुसार वन नाशन से उत्पन्न भूमंडलीय तापन से जानवरों और पौधों की 12,000 प्रजातियां नष्ट होने के कगार पर हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की कुल पक्षी प्रजातियों में से 72% पक्षी प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इस प्रकार विलुप्त होते जा रहे वन्य प्राणी का संरक्षण कैसे हो, यह वैश्विक चिंता का विषय है। पूरे विश्व में वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्रियाशील हैं। इस दिशा में भारत सरकार ने भी कई ठोस कदम उठाए हैं। इसने वन्य जीवों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना की और राष्ट्रीय स्तर पर वन सेवा की शुरुआत की। भारत के सभी प्रदेशों में वन्य प्राणी संरक्षण हेतु राज्य स्तरीय वन विभाग भी स्थापित है। वन सेवा

विभाग के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना भी की गई है। संसद द्वारा वन्य जीवों से संबंधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में बनाया गया। इसके अलावे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 जैसे कई कानून वन्य प्राणी एवं पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित बनाए गए हैं। पूरे देश में वानिकी शिक्षा के विस्तार के लिए 8 भारतीय वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। संकटग्रस्त प्राणियों को 8 श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, जिसे रेड डाटा सूची की संज्ञा दी गई है। इससे काला हिरण, एक सींग वाला गैंडा जैसे संकटग्रस्त प्राणियों के संरक्षण संबंधी कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलता है। बिहार में तरुमित्र, प्रतिवेश तथा प्रयास नामक गैर सरकारी संगठन भी इस दिशा में सराहनीय

0: एवं उनके वास स्थानों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान या विहार तथा वन्यजीव अभयारण्य या शरण स्थल स्थापित किए गए हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 92 उद्यान तथा 500 वन्यजीव अभयारण्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य प्राणियों, वनस्पतियों तथा ऐतिहासिक वस्तुओं को उसके मूल स्वरूप में सुरक्षित रखने के कानूनी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्राणी की किसी प्रजाति को मारना दंडनीय अपराध होता है। हिरण, नीलगाय एवं अन्य प्राणी के लिए हजारीबाग, बाघ, हाथी जैसे प्राणी के लिए डाल्टनगंज स्थित बेतला, उत्तरांचल राज्य के नैनीताल स्थित कार्बेट, बाघ, तेंदुआ जैसे वन्य प्राणी के लिए मध्य प्रदेश के मांडला स्थित कान्हा, विशेषकर बाघ के लिए पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन, बाघ, चीतल, सांभर जैसे प्राणी हेतु मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित शिवपुरी, हाथी एवं अन्य प्राणी के लिए असम स्थित मानस, बाघ के लिए राजस्थान स्थित रणथंभौर, पक्षी विहार के रूप में प्रसिद्ध बिहार राज्य के दरभंगा स्थित कुशेश्वर स्थान तथा बेगूसराय जिला स्थित कांवर क्षेत्र, ये सभी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जहां वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं उनके सहज प्राकृतिक विकास का वातावरण देने का प्रयास किया जाता है। जंतु अभयारण्य प्रशासकीय आदेश से सुरक्षित ऐसे क्षेत्र को जंतु अभयारण्य कहा जाता है जहां वन्य प्राणी अपने प्राकृतिक वास स्थानों में सुरक्षित रहा करते हैं। ऐसे अभयारण्य में लुप्त होने के कगार पर पहुंचे प्राणी की प्राकृतिक अवस्था में जनसंख्या वृद्धि के प्रयास किए जाते हैं। असम स्थित काजीरंगा, तमिलनाडु स्थित अनामलाई, गुजरात स्थित गिरवन, कर्नाटक स्थित बांदीपुर, तमिलनाडु के नीलगिरी स्थित मुदुमलाई, उड़ीसा स्थित चिल्का झील, राजस्थान के भरतपुर शरण स्थल देश के ऐसे मुख्य शरण स्थल हैं जहां संकटापन्न पशु पक्षी के संरक्षण का ध्यान रखा जाता है। वन, वन्य प्राणी, पर्यावरण, मानव सभी अंतर संबंधित हैं। इन सब के बीच संतुलन का होना परम आवश्यक है। अतः समाज में इन सब के प्रति जागृति पैदा करने का प्रयास होना चाहिए। विश्व स्तर पर 26 नवंबर पर्यावरण संरक्षण दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस जैसे कई दिवस मनाए जाते हैं जो हमें प्रकृति, पृथ्वी और पर्यावरण के प्रति जिम्मेवारी का बोध कराते हैं। ऐसे अवसरों पर विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा प्राकृतिक संतुलन की दिशा में कारगर कदम उठाने की चेतना जागृत करने की जरूरत है। कुल भूभाग के अपेक्षित 33% की जगह मात्र 19.39% भूभाग में ही स्थित वन जैसी प्राकृतिक संपदा के विनाश, विवेकहीन दोहन तथा कुप्रबंधन से हम वर्तमान समय में संकट झेल ही रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए भी समस्या एवं संकट पैदा कर रहे हैं। विज्ञान और तकनीकी के सहारे हम चाहे जितनी उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएं, पर प्रकृति के प्रतिशोध से नहीं बच सकते। उत्तराखंड की विनाश लीला इसका ज्वलंत उदाहरण है। प्रकृति का विनाश करके हम अपने भविष्य का विनाश कर रहे हैं। वन एवं वन्य प्राणी का संरक्षण करके ही हम अपने आधुनिक वैज्ञानिक विकास को आधार दे सकते हैं, स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं।
1: बिल्कुल लखलू भाई, वनों की हम लोग रक्षा करेंगे तभी वन्य प्राणियों की भी रक्षा हो सकेगी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेशों को।
2: रानी बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बक्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बक्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

0: पूर्वानुमान उन्हें प्राप्त हो।
1: तो चलो जल्दी जल्दी मौसम सूचना सुना दिए।
0: बिल्कुल,
1: तो मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 9 से 13 मई के दौरान जिला में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चले आरु हल्का से मध्यम वर्षा के अनुमान छे आरु ओलावृष्टि के भी अनुमान छे कुछ कुछ जगहों पर। ज्यादा से ज्यादा तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड आरु कम से कम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना छे। सापेक्ष आर्द्रता भोर में 70 से 75% जबकि दोपहरिया में 30 से 35% रहे के संभावना छे। पूर्वानुमान के अवधि में 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा हवा चले के संभावना छे।
0: बिल्कुल, और वहीं पर कुछ मूंग की फसलों के लिए सलाह है अगलू भाई कि मूंग एवं उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफ़ेद मक्खी व थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। बचाव हेतु मेलाथियॉन 50 EC या डाइमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव वर्षा ना होने की स्थिति में करें।
1: बागवानी वास्ते सलाह है कि आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के वास्ते फ्रूट फ्लाई ट्रैप स्थापित करो। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमोन ट्रैप लगा कर फ्रूट फ्लाई मक्खी के प्रबंधित कर लो जा सके छो। है ट्रैपो के निचला शाखा पर 4 से 6 फीट के ऊंचाई पर बांधना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखना छे। ट्रैप का कभी भी सीधा सूर्य किरण में नहीं रखना छे। ट्रैप का आम के बहुत घना शाखा के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप बाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए जहाँ की एक बांधल गलो छे। ट्रैप बांधे के अवस्था फल पके से 60 दिन से पहले करना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर के सुगंध बदलता रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, और वहीं तोरी फसल के लिए भी सलाह है कि फल मक्खी लत्तड़ वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी, खीरा फसल को क्षति पहुंचाते हैं और ये पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियॉन 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव वर्षा ना होने की स्थिति में करें। और वहीं
1: हम
0: अपने कार्यक्रम में कुछ गीत संगीत के माध्यम से भी अपने श्रोताओं को आइए आनंदित करते हैं एक पूर्वी गीत के माध्यम से।

0: बिल्कुल, गीत के कलाकार सुलेखा रमैया को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और देखो लाखो भाई कि अभी के जे समय छे वो खेती में छे अलग अलग प्रयोग करे के समय छे।
0: बिल्कुल,
1: प्रयोग से मतलब होले कि खाली जे छे पारंपरिक खेती नहीं करो, वैज्ञानिक ढंग से खेती करो और वैनो फसल के भी खेती करो जेकरा से कि दो पैसा हाथों में आवा, ठीक ना। और एकरा में अभी औषधीय और सुगंधित पौधा के अगर वैज्ञानिक तरीका से खेती करलो जाए तो किसान भाई का बहुत जे छे ओकरा में फायदा होते।
0: बिल्कुल,
1: तो केना करना चाहिए औषधीय और सुगंधित पौधा के वैज्ञानिक खेती एकरा पर विस्तार से जानने चाहिए पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से वार्ता कार्य के डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह।
2: बिहार की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूपेण कृषि आधारित है जो संभावनाओं से भरी है। राज्य की विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी एवं विविध टिकाऊ कृषि प्रणाली के विकास की विस्तृत संभावनाएं भी हैं। बिहार में बढ़ती जनसंख्या एवं संकीर्ण होते जंगलों के कारण प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जड़ी बूटियों का अभाव होने लगा है, परंतु कृषि प्रधान प्रदेश के नाते औषधीय एवं सुगंध पादप उत्पादों की गुणवत्ता युक्त कच्चे माल की आपूर्ति हेतु प्रदेश में इसके कृषिकरण के विस्तार की अनुकूलताएँ मौजूद हैं। औषधीय एवं सुगंध पौधों की कृषि से बहुत तेरे लाभ हो सकते हैं, जैसे मानक गुणवत्ता युक्त उत्पादों के लिए कच्चे ताजे व सही माल की सतत उपलब्धता उन्नत प्रजातियों को उगाकर की जा सकती है। इसकी खेती द्वारा बंजर एवं अनुपयुक्त भूमि का उपयोग होता है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु वैकल्पिक निरंतर आय का स्रोत प्रदान करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि औषधीय एवं सुगंध पौधों की वैज्ञानिक खेती औषधि उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री निर्माण उद्योग तथा अन्य उद्योगों में इसकी बढ़ती हुई मांग, जबकि जंगलों द्वारा की जाने वाली आपूर्ति क्रमशः घट रही है के चलते लाभ अर्जन का जरिया बन सकती है। व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई प्रजातियों की कृषि प्रणाली विकसित हो चुकी है। वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों से किए जा रहे सतत शोध के द्वारा नई प्रजातियों के उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि को सुलभ बनाया जा सकता है। इस प्रकार बिहार में सफलतापूर्वक उगाए जाने वाले औषधि एवं सुगंध पौधों के बारे में मैं बतलाना चाहता हूँ। असिंचित, कम उपजाऊ, क्षारीय या अम्लीय मृदाओं में उपयुक्त औषधि एवं सुगंध पौधे जैसे अश्वगंधा, सदाबहार, सतावर, सर्पगंधा, कालीहारी, कवाँच, भुई आंवला, कालमेघ, इसबगोल, गुड़मार, ग्लोई, पुनर्नवा आदि औषधीय पौधे तथा सुगंध पौधे जैसे पामारोजा, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, खस, मसकदाना, तुलसी आदि की खेती हम कर सकते हैं। कृषि और उद्यानिकी में उपयुक्त औषधि एवं सुगंध पौधे जैसे सर्पगंधा, कालमेघ, पिपली, वन प्याज, कवाँच, गिलोय, रत्ती जिसे गुंजा भी कहते हैं, काली मुसली, सफ़ेद मुसली, वच, कलिहारी और सुगंध पौधों में पचौली की खेती हम कृषि उद्यानिकी के साथ कर सकते हैं। बिहार की फसल प्रणाली में उपयुक्त औषधि एवं सुगंध पौधे में जो हम खेती का जरिया के बारे में संक्षिप्त विवरण देना चाहते हैं, जैसे सर्पगंधा जिसे रावोल्फिया सर्पेंटाइना भी कहते हैं, इसका जड़ का उपयोग, बहुत सारे उपयोग होते हैं इसमें। इसके जड़ में रिजर पाइन, अजमलिन, अजमलेसिन, सर्पेंटिन ये सब अल्कलाइड पाए जाते हैं, जिसका उपयोग बहुत हाइपरटेंशन आदि बीमारी में इसका इस्तेमाल होता है। और आप जानें कि ये फसल जो होता है 18 से 20 महीने का होता है और बहुवर्षीय फसल है और इनकी रोपाई जो है जून से दिसंबर तक में की जाती है। बीज से इसका बिछड़ा तैयार करके इसकी हम रोपाई भी कर सकते हैं या डायरेक्ट बिजाई भी कर करके हम इसका उत्पादन ले सकते हैं। औसत उत्पादन इसमें 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है और यह जो है प्रतिवर्ष आपका 20 से 30 कुंटल जड़ इसमें उपलब्ध हो जाता है पहले साल में, और इस तरह से इसका 5 साल 7 साल तक हम इसका उत्पादन ले सकते हैं। अश्वगंधा जिसे वैज्ञानिक नाम बिथेनिया सोमनीफेरा होता है, इसका भी जड़ का ही इस्तेमाल होता है और इसमें बिथेनिन नामक एल्कलाइड होता है जो बहुत सारे बीमारियों को शुद्ध ठीक करने में इसका इस्तेमाल होता है। यह फसल 5 से 6 महीने का है और यह अगस्त से फरवरी के बीच में इसे हम बुआई करके बिछड़ा तैयार करते हैं और इसी बीच रुपाई कर सकते हैं। और इसमें जो जड़ का उत्पादन क्षमता है ये 5 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है और प्रति हेक्टेयर इसमें हम 30 से 40 हज़ार रुपया इसमें इनकम प्राप्त कर सकते हैं। कालमेघ, ये जिसे एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा, जिसको बिहार में हम लोग कालमेघ को दूसरे नाम से चिराता नाम से बोलते हैं, इसका हम पंचांग इस्तेमाल करते हैं, यानी पांचों अंग, जड़, पत्ता, तना, फूल और फल सारे इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें जो है एंड्रोग्राफी लीड और नियोग्रो गोफिडिल नामक एल्कोलाइड होता है, जो बहुत पुराने से पुराने ज्वर में इसका इस्तेमाल होता है, ब्लड प्योरीफायर जिसको रक्त शोधक भी कहते हैं, इसमें इस्तेमाल होता है। यह फसल 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है और यह जून से सितंबर के बीच में इसकी बिजाई की जाती है और औसत उत्पादन 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है, जिसमें आप यदि लाभ की बात करें तो इसमें फर्स्ट ईयर पहले साल में 30 से 50 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर, दूसरे साल में इसी तरह से 20 से 25% तक मुनाफा बढ़ते चला जाता है। सतावर की खेती हम लोगों से अनभिज्ञ नहीं है, ये एस्पेरगस रेसिमोसस नामक ये पौधा होता है जो बहुत वर्षीय फसल है। इसके कंद रूपी जो जड़ होते हैं इनका इस्तेमाल बहुत सारे रोगों में इसका किया जाता है। इसमें साइपोजेनिन और ग्लाइकोसाइड्स इसमें उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से मोटापा कम करने में या महिलाओं में दूध की मात्रा बढ़ाने में, जानवर का भी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह फसल 12 से 18 महीने का होता है, जिसका हम अगस्त से फरवरी तक बिजाई और रोपाई करते हैं और इसमें औसत उत्पादन 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर, जिससे कि प्रति हेक्टेयर में 70 से 75 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें मुनाफा हो सकता है। कलिहारी एक बहुत ही अच्छा फसल होता है, जो जिसको ग्लोरियोसा सुपरबा भी कहते हैं, इसका भी कंद और बीज दोनों का इस्तेमाल होता है। इसमें कोल्चिसिन नामक पदार्थ रसायन पाया जाता है। यह फसल 6 से 7 महीने का होता है, जून से सितंबर के बीच में इसकी बीज बोई जाती है और इसका कंद का उत्पादन 20 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर, या फिर आप बीज यदि उत्पादन करना चाहते हैं तो 2 से 3.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें उत्पादन मिल जाता है और प्रति हेक्टेयर लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया।
0: और भी बातों की कल हम लोग चर्चा करेंगे इसी कार्यक्रम में। आज के लिए सबको लाखों का नमस्कार।
1: सभ्य का अकलों के भी नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा में कई सड़कों का किया शिलान्यास, ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। धनबाद में पुलिस अपराधी गठजोड़ और विदेशी कनेक्शन की जांच एनआईए से कराने की मांग। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में कल से राज्य स्तरीय 2 दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन। कृषि मंत्री शिल्पी नेहातिर की भी होंगी शामिल। राज्य संग्रहालय में इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में देश भर के कलाकारों ने किया अपने हुनर का प्रदर्शन। कलाकारों को बेहतर मंच देने का प्रयास। और झारखंड स्टेट सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में रांची की टीम ने पूर्वी सिंहभूम को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना को 9400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आधुनिक ढांचागत संरचना के विकास पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर अग्रसर है और राज्यों के विकास पर बल दिया जा रहा है।
1: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत धोरीचक से कुमारडीहा तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने बास्किता पथ और बेनिदास भुस्का तक बनने वाली सड़क की भी आधारशिला रखी। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री ने इस दौरान जन समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में पुलिस अपराधी गठजोड़, संगठित वसूली नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय अपराध संचालन तंत्र और संभावित विदेशी कनेक्शन की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। श्री मरांडी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हाल ही में धनबाद में एक कुख्यात अपराधी द्वारा विदेश से सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग दिनों में जारी वीडियो ने पूरे राज्य की प्रशासनिक विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्री मरांडी ने इस मामले को लेकर धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार को तत्काल प्रभाव के साथ पद से हटाने की मांग भी की है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना गिरिडीह जिले के गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले के तोलडी के रहने वाले आमिर हसन को भी इस योजना का लाभ मिला है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है।
2: एक महीने से मेरा पेट में दर्द था, वो पेंडिस हुआ था, जो पैसे के ना कारण से हमने अपना इलाज नहीं कराया, लेकिन आयुष्मान भारत के द्वारा सरकार ने ये जो दिया तो इसी के लिए हमने अपना ऑपरेशन करवाया और इसलिए हम भारत सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
0: राजधानी रांची के काके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कल से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहातिर की शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के पहले दिन जिलावार आकस्मिक योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 12 मई को खरीफ पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूल में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। हजारीबाग जिले में आज हुई 2-2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना गोरहर थाना क्षेत्र में हुई, जिसमें सब्जी लदे एक अनियंत्रित वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वाहन चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना गोरहर गांव के समीप हुई, जिसमें 4 वाहनों की एक दूसरे से टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@yayanewsandalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@yayanews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल यायर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा की वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने आज असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और राज्य में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने हिमंता बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया।
3: शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से आगे चलकर अगले 5 वर्षों के लिए असम की जनता को भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार समर्पित भाव से मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करेगी और हिमंत बिस्व शर्मा जी उसको धरती पर असम की जनता के लिए पूरी ताकत से लगाएंगे।
0: श्री शर्मा 12 मई को असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहेंगे। गढ़वा में पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। गढ़वा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 देशी कट्टा, कारतूस, मोबाइल और 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। ये अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी क्रम में अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। खूंटी पुलिस ने जिले के रनिया थाना क्षेत्र में आज छापेमारी कर लगभग 8 लाख रुपये मूल्य का डोरा जब्त किया है। तोरपा SDPO क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने बताया कि गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक मालवाहक वाहन को जब्त किया है और फरार तस्करों की तलाश जारी है।
4: ये रानिया और कमडरा बॉर्डर में करीब 3-4 बजे एक ट्रक निकल रही थी तो थाना प्रभारी और अन्य की सूचना से एक ट्रक पकड़ाया है। उसमें डोडा और कुछ भूसी है जो गाय के लिए दिया जाता है उसे ले जा रहा था। अभी एग्जैक्ट तो नहीं जान रहे हैं, करीब 50 तो होगा।
0: रांची स्थित राज्य संग्रहालय सभागार में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में देश भर आए कलाकारों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की आयोजक मोनिका डी ने बताया कि इस डांस फेस्टिवल में देश के 18 प्रदेशों के 300 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि ये नृत्य कार्यशाला कलाकारों को एक बेहतर मंच देने की कोशिश है।
5: मैं IADF का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कलाकारों को मंच प्रदान कर सकूं। कलाकारों के लिए मंच की बहुत आवश्यकता होती है। ऑल ओवर द इंडिया यहाँ कलाकार है, अनफॉर्चुनेटली बाहर से भी कलाकार थे। यहाँ चेन्नई, बेंगलुरु, जलपाईगुड़ी, कोलकाता, जमशेदपुर, रांची, झारखंड, सभी जगह से हमारे यहाँ कलाकार है।
0: झारखंड स्टेट सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में रांची की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पूर्वी सिंहभूम में आयोजित इस चैंपियनशिप में रांची की टीम ने मेजबान टीम को 4 के मुकाबले 5 अंकों से पराजित कर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। भारतीय महिला की रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। चीन के शंघाई में आयोजित दूसरे चरण में आज झारखंड की दीपिका कुमारी और अंकिता

0: भगत तथा कुमकुम मोहद की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद गरज के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 16 मई तक बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में राज्य के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने के और वज्रपात की भी आशंका है। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा में कई सड़कों का किला शिलान्यास, ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, धनबाद में पुलिस अपराधी गठजोड़ और विदेशी कनेक्शन की जांच एनआईए से कराने की मांग। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय काके में कल से राज्य स्तरीय 2 दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन। कृषि मंत्री शिल्पिनी हातिर की भी होंगी शामिल। राज्य संग्रहालय में इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में देश भर के कलाकारों ने किया अपने हुनर का प्रदर्शन। कलाकारों को बेहतर मंच देने का प्रयास। और झारखंड स्टेट सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में रांची की टीम ने पूर्वी सिंहभूम को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायिका वीणा देवी की प्रस्तुति। आरंभ में सुनिए एक देवी गीत।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं एक झूमर।

इसी के साथ कार्यक्रम लोकगीत अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे थे आज कार्यक्रम में गायिका वीणा देवी की प्रस्तुति। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। राज्य में बड़े पैमाने पर पुलिस महकमे में फेरबदल, कई आईएएस ऑफिसर का भी तबादला। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 10 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द संभव, मंत्री निशांत कुमार और दीपक प्रकाश परिषद के सदस्य बनाए जा सकते हैं। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने आज बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कोई भी सरकार तभी सफल हो सकती है जब समाज खुद राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है।
1: समाज, राजनीति और सरकारों से भी अधिक शक्तिशाली होता है और कोई भी सरकार तभी सफल हो सकती है जब समाज स्वयं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाता है। अब जैसे हमारा स्वच्छ भारत अभियान है, ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये लोगों के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन चुका है। अब ये समाज की शक्ति से ही आगे बढ़ रहा है। जब समाज सक्रिय हो जाता है तब देश की सबसे बड़ी चुनौतियों का भी सामूहिक समाधान निकाला जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज कानून व्यवस्था पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार भी मौजूद थे। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 10 सीटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 28 जून को खाली हो रही इन सीटों

के लिए इस महीने के अंत तक चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। एनडीए से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश का परिषद सदस्य बनना तय माना जा रहा है। जदयू से जिन नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उसमें गुलाम गौस, भीष्म सहनी, कुमुद वर्मा और भगवान सिंह कुशवाहा शामिल हैं। वहीं राजद से मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। भाजपा से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और संजय मेहूक की सीट खाली हो रही है, जबकि कांग्रेस से समीर कुमार सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सम्राट सरकार ने पुलिस और प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सुधांशु कुमार को एडीजी विधि व्यवस्था और विकास वैभव को मगध क्षेत्र का आईजी बनाया गया है। वहीं नैयर हसनैन खान को आर्थिक अपराध इकाई से हटाकर विशेष सशस्त्र पुलिस बल की जिम्मेदारी दी गई है। अधिसूचना के अनुसार तकनीकी सेवाएं एवं संचार के एडीजी निर्मल कुमार आजाद को पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के एडीजी डॉक्टर अमित कुमार जैन अब आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी होंगे। चर्चित आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो से हटाकर एडीजी तकनीकी सेवाएं एवं संचार बनाया गया है। इधर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर को वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। आनंद किशोर फिलहाल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। एचआर श्रीनिवास को समाज कल्याण विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। संतोष कुमार मल्ल को जल संसाधन विभाग से हटाकर आपदा प्रबंधन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के तौर पर काम कर रहे कुमार रवि को स्वास्थ्य विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। लोकेश कुमार सिंह को पर्यटन विभाग का सचिव बनाया गया है। अजय यादव को ऊर्जा विभाग और संजय कुमार सिंह को वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है। प्रणव कुमार को भवन निर्माण विभाग का नया सचिव बनाया गया है, जबकि चंद्रशेखर सिंह अब जल संसाधन विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। बिहार पुलिस में 15,000 से अधिक पदों पर विशेष सहायक पुलिस सैप की अनुबंध पर नियुक्ति की जाएगी। इसकी प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय ने जवानों की भर्ती के लिए पटना जिले के दानापुर कैंट स्थित सेवा रोजगार कल्याण संगठन को नोडल इकाई बनाया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने आज सुबह राज्य के पहले गैर द्रविड़ पार्टी के नेता के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इधर असम में भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत बिश्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। इधर सारण के हरिहरनाथ मंदिर में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। आयोजन में भक्ति संगीत, स्तुति गान और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय

0: प्राप्त होंगे।
1: बिहार में पर्यावरण एक समस्या बन रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हम लोग प्रोत्साहित करने जा रहे हैं और ये इसको प्रोत्साहित करने के क्रम में हम लोग समूचे बिहार में चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रयास शुरू कर रहे हैं।
0: खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्र वर्सी ने कहा है कि राज्य में सुशासन का राज कायम करना सरकार की प्राथमिकता है। श्री चंद्र वर्सी ने मुजफ्फरपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। राज्य में पुलों की सुरक्षा और उनके रख रखाव में अनियमितता के मामले में इंजीनियर और उससे संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि पुलों की गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल करने वाली संस्थाओं को पुलों का सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया है। एम्स पटना में आज नवजात शिशु देखभाल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से स्वास्थ्यकर्मियों, सरकारी अधिकारियों और नवजात शिशु विशेषज्ञों ने भाग लिया। राष्ट्रीय नवजात विज्ञान फोरम की ओर से आयोजित इस शिविर में एक ही दिन में 18,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को नवजात पुनर्जीवन तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक सह कुलपति डॉक्टर राजू अग्रवाल ने इस प्रशिक्षण को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे स्वास्थ्यकर्मी हर परिस्थिति में प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए तैयार रहेंगे। कार्यक्रम में यूनिसेफ बिहार की चीफ ऑफ फील्ड ऑफिसर मोनिका नीलसन, सांसद डॉक्टर संजय अग्रवाल और एम्स पटना के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनूप कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में आंधी बारिश की स्थिति बनी हुई है। आज सुबह राजधानी पटना, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान सीमांचल के क्षेत्रों सहित प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन का पूर्वानुमान जारी किया है।
2: दिनांक 11 मई राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: मौसम में परिवर्तन से राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया जी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कैमूर, सारण, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा और मुंगेर में न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई। अरवल जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र के NH 139 पर दो वाहनों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सिवान के पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने कहा है कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के सभी थानाध्यक्षों और अन्य पुलिस अधिकारियों की बैठक में श्री झा ने हत्या, आर्म्स एक्ट और संगीन मामलों में तेजी से चार्जशीट दाखिल कर अपराधियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया। पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर निगम ने झीलिया मोहल्ले में 1,82,00,000 रुपये की लागत से 3 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को पूरा करने की पहल शुरू की है। जहानाबाद जिला ने 7 निश्चय और 1 और 2 की योजनाओं के कार्यक्रम में क्रियान्वयन में पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार की ओर से अप्रैल 2026 के लिए जारी रैंकिंग रिपोर्ट में जहानाबाद ने यह उपलब्धि दर्ज की है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने मधुबनी के हरलाखी प्रखंड के विश्वामित्र स्थान और कल्याणेश्वर महादेव मंदिर के विकास कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिया है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि दोनों स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के विकास से जिले में पर्यटन गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा। गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद पूर्व रेलवे ने देवघर और सरायगढ़ के बीच 31 मई तक अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में यात्रा के दौरान बांका, बाराहाट, भागलपुर, सुल्तानगंज, रतनपुर और मुंगेर स्टेशनों पर रुकेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सशक्तिकरण और आंतरिक सुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। राज्य में बड़े पैमाने पर पुलिस महकमे में फेरबदल, कई आईएएस ऑफिसर का भी तबादला। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 10 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द संभव। मंत्री निशांत कुमार और दीपक प्रकाश परिषद के सदस्य बनाए जा सकते हैं।

0: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
1: रोहतास जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। यह प्रक्रिया 2 मई से शुरू होकर 31 मई 2026 तक चलेगी। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने बताया कि मकान सूचीकरण कार्य के तहत परगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इससे पूर्व स्वगणना में जिलावासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूछे गए सवालों के जवाब देकर जनगणना में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने स्वगणना में भाग नहीं लिया उन्हें भी मकान सूचीकरण के दौरान प्रगणक जनगणना में शामिल करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जिले में आंधी तूफान और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले दिनों आई तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गई और बिजली के खंभे भी उखड़ गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और कुछ जगहों पर बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण कई स्थानों पर जलजमाव की स्थिति देखने को मिली, जिससे लोग परेशान दिखे। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश की स्थिति बने रहने की आशंका है। जिले के तीनों व्यवहार न्यायालयों में वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सासाराम व्यवहार न्यायालय में उपस्थित न्यायाधीशों और अधिकारियों द्वारा लोक अदालत का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर जिला जज अनुज कुमार जैन, एसपी रोशन कुमार सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी मौजूद रहे। लोक अदालत में विभिन्न मामलों का आपसी सहमति के आधार पर त्वरित निष्पादन किया गया। शिक्षा विभाग की पहल पर रोहतास जिले के मॉडल स्कूल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। सासाराम स्थित शेर सासूरी इंटर स्तरीय स्कूल में स्मार्ट क्लास, साइंस लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे छात्रों को डिजिटल और प्रैक्टिकल सुविधा का लाभ मिल रहा है। इस मॉडल स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने बताया कि बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।
2: शुरुआत हुई है मॉडल स्कूल का, अभी तो चिन्हित हुए हैं और एक सेक्शन पढ़ाई हो रही है। विस्तृत कार्य योजना विभाग द्वारा बनाई गई है और बिल्कुल ये अलग टाइप का होगा, बिल्कुल सभी विद्यालय से नाम ही मॉडल है, तो कहने का मतलब कि आदर्श, हर इंडिकेटर पर आदर्श होंगे और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जिला स्तर पर भी हम लोगों की पूरी कोशिश है कि ये विद्यालय बिल्कुल अलग टाइप के विद्यालय हो, जहाँ जाने पर लोगों को ये लगे कि सरकारी विद्यालय भी प्राइवेट विद्यालय के तर्ज पर बने हैं और प्राइवेट विद्यालय से अच्छी शिक्षा दी जा रही है।
1: महिला सशक्तिकरण की दिशा में सहकारी बैंक ने सकारात्मक प्रयास किया है। बीते दिनों जिले के करगहर मोड़ के समीप स्थित सहकारी बैंक की नई पिंक शाखा का उद्घाटन किया गया। पिंक शाखा में सभी अधिकारी और कर्मचारी के तौर पर महिलाएं कार्यरत हैं, जिससे यह महिलाओं द्वारा संचालित प्रदेश की पहली सहकारी बैंक शाखा बन गई है। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिले के विभिन्न पंचायतों में 19 मई से सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने बताया कि हर महीने के 2 मंगलवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए मई और जून माह का विस्तृत शेड्यूल जिला प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके तहत 19 मई, 2 जून और 16 जून को जिले के 18 पंचायतों में वरीय अधिकारियों की देखरेख में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में राजस्व अंचल, प्रखंड, पुलिस सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जिला मुख्यालय सासाराम स्थित सदर अस्पताल में चल रही एक सकारात्मक पहल मरीजों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इसके तहत मरीजों को इलाज और दवाओं के साथ साथ दीदी की रसोई के माध्यम से निःशुल्क पौष्टिक नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस व्यवस्था से मरीजों को स्वच्छ

0: संतुलित और पौष्टिक आहार मिल रहा है। इसका सबसे अधिक लाभ आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को हो रहा है, जिन्हें अब इलाज के साथ साथ भोजन की भी चिंता नहीं करनी पड़ रही है। बीते दिनों समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में सासाराम और डेहरी क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर मास्टर प्लान 2045 के ड्राफ्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उदिता सिंह ने की, जिसमें जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभाग के अधिकारी शामिल हुए। ड्राफ्ट में शहर को आधुनिक, सुव्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाने पर विशेष जोर दिया गया। सासाराम और डेहरी को ट्विन सिटी के रूप में विकसित करने की अवधारणा पर भी चर्चा हुई। बीते दिनों संसद में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो सका। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया। इसको लेकर रोहतास में एमएलसी निवेदिता सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिले में धिकार यात्रा निकालकर विपक्षी पार्टियों के खिलाफ प्रदर्शन किया।
1: अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता चंदन कुमार।

0: मीडियम
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राजीव कुमार झा की प्रस्तुति। आरंभ में सुनिए सूरदास का लिखा भजन।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार राजीव कुमार झा की प्रस्तुति। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म आशिकी का ये लोकप्रिय गीत। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, संगीत है नदीम और श्रवण का, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त महताब। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म जान का ये लोकप्रिय गीत। इस गीत को गाया है उदित नारायण, साधना सरगम और साथियों ने। आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे हैं, आनंद मिलिंद का है संगीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म दीवाना का गीत। इस गीत को गाया है कुमार सानू और साधना सरगम ने। नदीम श्रवण का संगीत है, समीर ने इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का गीत। नदीम श्रवण का संगीत है, समीर ने इसके बोल लिखे हैं, आवाज़ें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म बरसात का ये गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं अनवर सागर ने, नदीम और श्रवण का संगीत है, आवाज है कुमार सानू और साथियों की।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म हमारा दिल आपके पास है का शीर्षक गीत। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म हेलो ब्रदर से। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। संगीत है हिमेश रेशमिया का। इसके बोल लिखे हैं सुधाकर शर्मा ने।

इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: नागरिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके

0: साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: मिस्टर मोदी सेड टुडे इंडिया इज एडवांसिंग ऑन रिफॉर्म्स एक्सप्रेस एंड ऑल्सो बिल्डिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। मिस्टर मोदी सेड ही विल लाइक टू अश्योर एवरी फैमिली इन तेलंगाना दैट सेंटर विल कंटिन्यू टू वर्क विद ग्रेटर स्पीड टू रियलाइज योर ड्रीम्स।
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, it is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.
2: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा

0: AIR app. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं अब्दुल वाहिद।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पहला गीत फिल्म जमाने को दिखाना है से। इस गीत को गाया है शैलेंद्र सिंह ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अमित कुमार और रजनी शर्मा की आवाज़ में बालिका वधु फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे हैं और संगीत है राहुल देव बर्मन का।
1: लगते हैं
2: क्या

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में सुनिए अगला गीत फिल्म अभिमान से।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म अभिमान का गीत। सचिन देव बर्मन का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी ने इसके बोल लिखे थे, आवाज़ थी लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म आशा का ये लोकप्रिय गीत, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म कालिया का गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म कर्ज का ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने बोल लिखे हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: The advanced training followed under Vidwan Sri N.S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade Veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. E. Mani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of Veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
1: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
0: In tonight's broadcast, विद्वान डी श्रीनिवास is accompanied on मृदंगम by श्री यशवंत हम्पी होली and on घटम by श्री एम चंद्रकांत।
1: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
0: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आदि ताल।

0: अब आप रामस्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कंपोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदिताल त्रिस्र गति।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास कंक्लूड्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ सदाशिव ब्रह्मेंद्र इन द राग आहिर भैरवी सेट टू आदिताल।

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on Mridangam by Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya.

0: सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहा है। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।